FM 103 MHz पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक शमत 1948 के श्रावण मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 अगस्त सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति

0: आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्त पानी के पास स्थित मां कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का 4th युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का ये पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्र मौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का मौका मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और पुरस्कार प्रदान किए और उनके प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों की भागीदारी वाली खेल प्रतियोगिता की सफल मेजबानी दिल्ली सरकार के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आए सुनते हैं खेती की बातें। मीठे पानी में झींगा पालन, प्रतिमा वर्मा से।
2: तमाम किसान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें झींगा पालन की। झींगा एक पौष्टिक आहार के रूप में उपयोग में आने वाला जलीय प्राणी है। किसान भाइयों, भारत में मछली पालन काफी तेजी से प्रचलित हो रहा है। ऐसे में झींगा मछली पालन के व्यवसाय के प्रति किसानों का रुझान काफी तेजी से बढ़ रहा है। झींगा पालन को आम तौर पर तटीय क्षेत्रों में पालना सबसे बेहतर माना जाता था, लेकिन अब तकनीकी सहायता के चलते किसान खेतों में बनाए गए तालाबों में भी झींगा पालन कर सकते हैं। झींगा मछली पालन से किसान 1 हेक्टेयर क्षेत्र में बने तालाब से 4 से 5 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, झींगा का पालन अकेले अथवा अन्य मछलियों जैसे रेहू, कतला के साथ किया जा सकता है। चूंकि झींगा नीचे स्तर पर रहने वाला प्राणी है, अतः इसके तालाब में कॉमन कार्प या मृगल का संचयन कम मात्रा में करना चाहिए। मटियाही या दोमट मिट्टी वाले 1 एकड़ या इससे छोटे तालाब झींगा पालने के लिए उपयुक्त है। ग्रामीण भाइयों, तालाब की तैयारी की अगर हम बात करें तो झींगा के बीज संचयन करने के पूर्व तालाब की सफाई करवा लेनी चाहिए, ताकि उसमें किसी प्रकार की खाऊ मछली या हानिकारक कीड़े नहीं रहें। तत्पश्चात मिश्रित मत्स्य पालन के पूर्व जिस प्रकार तालाब की तैयारी की जाती है, उसी प्रकार से तालाब

तैयारी कर लेनी चाहिए। उक्त मछली को छिपने के लिए बांस, झाड़, पुराने टायर वगैरह तालाब में डालना चाहिए। ग्रामीण भाइयों, मत्स्य बीज संचयन की केवल झींगा पालन तकनीक में 20,000 झींगा के बीज प्रति एकड़ के दर से संचयन किया जा सकता है, जबकि अन्य मछलियों के साथ इसका 50% यानी 10,000 झींगा बीज का संचयन प्रति एकड़ किया जा सकता है। झींगा बीज को तालाब में छोड़ने से पहले इसके पैकेट को जिस तालाब में संचयन करना है उसमें कुछ देर रख दिया जाता है ताकि पैकेट के पानी और तालाब के पानी का तापमान एक हो जाए। उसके बाद ही संचयन हेतु बीज पानी में छोड़ा जाता है। जी हाँ किसान भाइयों, जिस जगह पर झींगा बीज को संचयन हेतु छोड़ा जाता है उसी स्थान पर प्रथम 15 दिनों तक उन्हें भोजन के रूप में सूजी, मैदा, अंडा को एक साथ मिलाकर गोला बनाकर दिया जाता है। उक्त भोजन सुबह और शाम के समय एक ही स्थान पर प्रतिदिन दिया जाता है। 15 दिनों के बाद नवजात झींगा मछली सामान्यतः अन्य मछलियों को दिया जाता है, वही इनका भी भोजन होता है। झींगा पालन में इन्हें ऊपर से पूरक आहार का दिया जाना अति आवश्यक है, अन्यथा भोजन के अभाव में ये आस पास में ही कमजोर झींगा को अपना भोजन बना लेती है। झींगा की वृद्धि की जाँच के लिए समय समय पर जाल चलाकर वृद्धि की जाँच करनी चाहिए। जब झींगा पूर्ण रूप से बड़ा हो जाए तो समय समय पर इसकी निकासी पर बेचा जा सकता है। बीच में बड़े झींगा को निकालते रहना चाहिए जिससे छोटे झींगा को बढ़ाने का अवसर मिलता रहे। यह प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है। ग्रामीण भाइयों, खुले बाजार में इसका मूल्य इसके वजन के अनुसार लगभग 300 रुपए से 400 रुपए प्रति किलो प्राप्त हो जाता है। जी हाँ, झींगा मछली औषधीय गुणों से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं। थायराइड और झींगा रोगियों के लिए झींगा बहुत ही फायदेमंद होता है। झींगा मछली विटामिन डी से भरपूर होने के कारण इसका उपयोग त्वचा संबंधी रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। वास्तव में किसान भाइयों, झींगा पालन एक लाभदायक व्यवसाय है। कार्यक्रम में ये हुई बातें मीठे पानी में झींगा पालन की। इसी के साथ कार्यक्रम से हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें में मीठे पानी में झींगा पालन। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।
1: नंबर 227 227।

मुनियाज्ञवल्क्य ने महाराज जनक की पत्नी रानी सुनैना को ये भविष्यवाणी सुना दी थी कि श्री राम अपने वनवास की अवधि में देवताओं का कार्य करके अवधपुरी वापस लौटकर अचल राज्य करेंगे। अतः सुनैना ने महाराज दशरथ के रनिवास में महारानी कौशल्या तथा अन्य रानियों से मिलकर उन्हें हर प्रकार से धीरज बंधाया और फिर अपने डेरे वापस लौट आईं। कौशल्या से उन्होंने कहा, मुनि का वचन व्यर्थ नहीं हो सकता। माता सुनैना के साथ पुत्री सीता भी अपने प्रिय कुटुंबियों से मिलने डेरे आईं। उनका तापस वेश देखकर सभी शोकमग्न हो गए। पुत्री को राजा जनक ने छाती से लगा लिया। पिता के हृदय में प्रेम का सागर उमड़ रहा था, किंतु उनका विवेक मोह के सागर में डूबते डूबते बच गया। पुत्री को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष गर्व और संतोष हुआ। उनकी पुत्री ने अपने आचरण से दोनों कुल पवित्र कर दिए थे।

कबीर दास जी कहते हैं, जो भी झुककर किसी को नमन करता है, प्रणाम करता है, वह दूसरों के लिए कम, अपने लिए अधिक लाभदायी है। जिस प्रकार तराजू का वही पड़ला नीचे झुकता है जो भारी होता है। कबीरा नवे सो आपको, पर को नवे न कोय, घाली तराजू तौलिए, नवे सो भारी होए। इसी तरह फल से लदे हुए वृक्ष झुक जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे व्यक्ति ज्ञान पद प्रतिष्ठा की ओर अग्रसर होता है, वैसे वैसे उसके भीतर का अभिमान स्वार्थ शमन होने लगता है। वह विनम्र दयालु परोपकारी हो जाता है, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर उसका ज्ञान पद प्रतिष्ठा का कोई अर्थ नहीं। विनम्रता व्यक्ति का आभूषण है। इसके माध्यम से हमारा व्यक्तित्व खूबसूरत बनता है, क्योंकि विनम्र होकर ही हम पात्रता अर्जित कर पाते हैं। विनम्र होकर हम दूसरों से जुड़ पाते हैं, उनके दर्द को महसूस कर पाते हैं। विनम्र व्यक्ति सम्मान भी पाते हैं और लोकप्रिय भी होते हैं। विनम्रता सहृदयता को दर्शाता है। यह वह कला है, गुण है, जिससे इंसान अपने आप पर नियंत्रण पाता है और दूसरों पर भी। अगर व्यक्ति के अंदर नम्रता नहीं है तो वह कितना भी धन दौलत अर्जित कर ले, लेकिन लोगों के दिलों में जगह नहीं पा सकता है। लोगों के हृदय में जगह पाने के लिए व्यवहार कुशल, विनम्र और संयमित होना चाहिए। उसकी वाणी संयमित होनी चाहिए, विवेकशील होना चाहिए। छोटी सी उपलब्धि पर इतराना, अहंकारी होना, दूसरों को कमतर समझना व्यक्ति की अज्ञानता के परिचायक हैं। ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशवान व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरणा देते हैं, और उनकी सहजता दूसरों को भी विनम्र बना देती है। बड़े बड़े महापुरुषों, संतों, विद्वानों के जीवन के कई प्रसंग हैं जो उनकी सहजता, विनम्रता से अभिभूत करते हैं। एक समय की बात है, संत परमहंस से मिलने के लिए कलकत्ते के एक प्रसिद्ध डॉक्टर आए। वो उनसे मिलने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक माली फूल तोड़ रहा है। उन्होंने उससे

कहा कि मुझे सुंदर सुंदर फूल दे दीजिए, परमहंस जी को देना है। उस व्यक्ति ने बहुत ही सुंदर फूल उनको दिए। बाद में जब सत्संग में वो डॉक्टर साहब पहुँचे तो वहाँ पर परमहंस जी को देखकर हतप्रभ रह गए, क्योंकि वह माली कोई और नहीं, संत परमहंस जी थे। वो बहुत ही शर्मिंदा हुए, उनसे क्षमा मांगी और अपनी गलती के लिए पछतावा किया। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वह विनम्र होता है, इसलिए हमें भी विनम्र होना चाहिए। मानव का सबसे बड़ा गुण मानवता है, विनम्रता है। विनम्र मनुष्य दूसरों के दर्द को महसूस कर सकता है। विनयशीलता, सदाचार ही उसे झुकने और सहने की शक्ति देते हैं। फलों से लदे वृक्षों की भांति वह जग को देता ही देता है, और यही गुण उसके व्यक्तित्व के कद को ऊंचा करते हैं। उसकी ऊंचाई में स्थिरता होती है। वह अधजल गगरी की तरह छलकता नहीं है, क्योंकि वह सकारात्मक, सहनशील, स्थिर भावनाओं, विचारों का मालिक होता है। इसलिए अपने जीवन को सरल, सहज, विनम्र बनाना चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन निर्मला तिवारी से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफ एम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सुनते हैं आराधना भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे तृप्ति शक्या की आवाज़ में आराधना भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आए सुनते हैं स्वचर्चा, जिसमें आप सुनेंगे भेंटवार्ता हृदय रोग कारण एवं उपचार। भेंटवार्ता कारण डॉक्टर अजय कुमार रांची से, और इनसे बातचीत करेंगे श्री संजीव कुमार।

जिंदगी पर हम थोड़ी सी नज़र डालें तो हम ये देखेंगे कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी भी तरह से किसी भी बीमारी से वो ग्रसित दिखता है। हमारा जीवन शैली भी काफ़ी अव्यवस्थित हो गया है, हमारे खान पान का तरीका बदल गया है और हमारे उठने बैठने के तरीके में भी बहुत ही बदलाव दिखता है। तो ऐसे अव्यवस्थित जीवन शैली में बहुत सारी बीमारियाँ आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है और आपको इसका पता भी नहीं लगता है। एक ऐसी ही बीमारी है हृदय रोग, या जिसे हम दिल की बीमारी कहते हैं, उससे आप पीड़ित हो जाते हैं और फिर समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इसी संबंध में आज हम चर्चा करेंगे कि हृदय रोग होने का कारण क्या है और इसका होम्योपैथिक पद्धति द्वारा आप किस प्रकार उपचार कर सकते हैं। बातचीत करने के लिए आज हम

0: हमारे इस स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आमंत्रित हैं होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार
1: जी। नमस्कार
0: अजय कुमार जी, स्वागत है। सबसे पहले हम जानें कि किस प्रकार हमारा दिल धड़कता है।
1: यह हमारी बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, हार्ट हम लोग कहते हैं। हमारे शरीर में ये रक्त संचार इसके थ्रू होता है। पहले हम ये समझते हैं कि ये हार्ट काम कैसे करता है। ये हमारे शरीर में जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको शरीर से वापस लंग्स तक भेजता है। लंग्स में यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता है और उस ऑक्सीजनेशन के बाद में ये फिर दोबारा हार्ट पे जाता है और हार्ट में जाने के बाद ये फिर पंप करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे शरीर में पहुँचाता है।
0: तो जो प्रमुख बीमारी है दिल की, वो कौन कौन सी है, लक्षण क्या है इसके, ताकि समय रहते हम इसका उपचार कर सकें।
1: आज के समय में हार्ट अटैक पूरे वर्ल्ड में नंबर वन कॉज है डेथ का। हर 5 में से 1 मृत्यु का कारण हार्ट अटैक ही है, जो एक गंभीर विषय आज के लिए बना पड़ा है। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जैसे हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है, वैसे ही हार्ट को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है काम करने के लिए। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कोरोनरी आर्टरी उसे प्रोवाइड करता है। इसी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होने के कारण हार्ट काम करना बंद कर देता है या पार्शियली हार्ट काम करने बंद कर देता है। इसी को हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं या फिर इस्केमिक आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। इसमें जैसे लक्षण में आएंगे चेस्ट पेन, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, पाल्पिटेशंस, सिनकोप्स, पेडल एडिमा, इस तरह के लक्षण आएंगे। थोड़ा सा इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ये चेस्ट पेन, आम धारणा बनी हुई है कि ये जो हार्ट अटैक में जो दर्द होता है वो लेफ़्ट साइडेड होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये लेफ़्ट साइडेड ना होके ये सेंट्रल चेस्ट पेन होता है। ये डिफ्यूज़ इन नेचर होता है, यानी कोई एक पर्टिकुलर जगह में नहीं होता। ऐसा लगता है कि पूरी छाती में ये दर्द भारीपन हो रहा है। इसका दर्द किस तरह का होता है, इसमें भारी वजन, ऐसा लगता है कि छाती पे कोई भारी वजन रखा हुआ है या फिर कोई बेल्ट से ज़ोर से कस दिया है छाती को, इस तरह का पेन को हम लोग एंजाइना भी बोलते हैं। ये कब होता है, ये तब होता है जब हम लोग कोई एग्जर्शन करते हैं, यानी जब हम लोग कोई मेहनत वाला काम करते हैं।
0: तनाव से हम जब गुजरते हैं तो ये लक्षण भी दिखाई पड़ने लग जाता है।
1: तनाव से भी हम लोग गुजरते हैं। एग्जर्शन मतलब जैसे कि हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं, थोड़ा देर लंबा चलते हैं या कोई भारी वजन उठाते हैं, और इसमें इस तरह का पेन होना चालू हो जाता है, और वो भी कुछ देर के लिए होता है। जो कि हम लोग रेस्ट करते हैं तो रेस्ट करने के बाद में ये आराम आ जाता है। इस तरह का दर्द को हम लोग एंजाइना बोलते हैं। ये चेस्ट पेन है, ये कार्डियक ओरिजिन का होता है। ये चेस्ट पेन 2-3 केसेस में नहीं होता है। जो पेशेंट डायबिटीज़ के रोगी होते हैं उसमें ये चेस्ट पेन नहीं होता। जो पेशेंट बुज़ुर्ग होते हैं, काफ़ी उम्र वाले होते हैं, उनको ये नहीं होता, और ये फीमेल पेशेंट को भी जनरली ये चेस्ट पेन नहीं होता है। कई बार लोग सीने में दर्द का भी बताते हैं, जो कि लोकल होता है, एक छोटे से जगह पर होता है। बोलते हैं कि चुभन जैसा दर्द हुआ। ये एक्चुअली में हार्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं होता, ये मस्कुलोस्केलेटल पेन होता है। हार्ट अटैक का कोई ये संबंध नहीं है इससे। एक लक्षण हुआ शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसे हम कैसे समझेंगे कि ये कार्डियक ओरिजिन का है? जब सोने के समय 2-3 मिनट तक सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, दम फूलने लगता है, मुश्किल से 1-2 मिनट के लिए दम फूलता है। सेम इसी तरह से पाल्पिटेशंस में भी होता है, दिल की धड़कन भी तेज होने लगती है लेटते समय या फिर किसी तरह का हेवी काम करते समय। बहुत पसीना भी आने लगता है, स्वेटिंग भी आने लगता है। तो ये सारे लक्षण मिलके सजेस्ट करते हैं कि ये कार्डियक ओरिजिन का है, यानी ये एंजाइना हार्ट अटैक का संबंधित है। इसके लिए हम लोग को तुरंत जाके इमरजेंसी में डॉक्टर से मिलना चाहिए।
0: इस तरह के जो लक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं तो आप चिकित्सक की सलाह लें। और डॉक्टर साहब, हम सावधानियां क्या रखें और खान पान में हम किन किन चीज़ों से दूरियां बनाएं ताकि ये बीमारी नहीं हो और हम स्वस्थ रहें?
1: इसमें जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, किन लोगों को ज़्यादा तकलीफ देता है, ये जैसे जो स्मोकिंग करते हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हाई शुगर है, जो बहुत मेंटल स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ओवरवेट है, या जेनेटिक्स यानी जीन्स में ही हार्ट की गड़बड़ी आई हुई है, ये उन लोगों को काफ़ी तकलीफ देता है। और इसमें हमें कंट्रोल करना जरूरी है। इसमें हम लोग जो कंट्रोल करते हैं

0: वो लाइफस्टाइल में सुधार करने से है, यानी जो स्मोकिंग करते हैं उनसे ये आग्रह किया जाता है कि अब आप स्मोकिंग ना करें। जो ओवरवेट होते हैं उनको प्रॉपर एक्सरसाइज, वजन कम करने के लिए हम लोग सलाह देते हैं। डाइट में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो फाइबर्स हमारे खाने में ज़्यादा हो उसका हम लोग प्रयोग करें, एंटीऑक्सीडेंट्स खाने में ज़्यादा हो उसका प्रयोग करें। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे जैसे फल, जैसे सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट अंगूर में होता है, काला वाला अंगूर में होता है, अमरूद में होता है, तो इस तरह के फलों का प्रयोग करें, जूस पिएं, फाइबर्स ज़्यादा खाएं। जैसे अब सेब खा रहे हैं तो उसका छिलका उतार के ना खाएं, छिलका सहित खाएं, इससे फाइबर्स भी हमारे शरीर को मिलेगा जो कि हार्ट को हेल्प करेगा। ओट्स, जिसे हम लोग हिंदी में जई बोलते हैं, जई का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये भी बहुत हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा, अगर हम लोग चाय पीते हैं तो ग्रीन टी पिएं, और अर्जुन का एक छाल आता है, अर्जुन के छाल को उबाल के उसको भी चाय जैसा हम लोग पी सकते हैं। तो ये तो सावधानी, ये जो चीज़ है कि हम लोग क्या अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं, क्या अच्छे खाने खा सकते हैं, हेल्दी रूटीन मेंटेन कर सकते हैं, हेल्दी डाइट मेंटेन कर सकते हैं। अब हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए इसको दूर रखने के लिए, या जो भी पेशेंट जिनका हार्ट कमज़ोर है वो कोशिश करें कि एनिमल फैट ना खाएं। एनिमल मीट जैसे मटन हुआ, चिकन हुआ, फिश हुआ, एग योल्क हुआ, यानी अंडे के पीला वाला भाग, उसको ना खाएं। अब जैसे दूध भी अगर पीते हैं तो वो दूध में स्किम्ड मिल्क तो ही पिए तो ज़्यादा अच्छा है, यानी चर्बी रहित दूध अगर हम लोग पिए तो वो ज़्यादा अच्छा है। कई लोग ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं तो ड्राई फ्रूट्स में भी तेल होता है, तो ये तेल भी दिक्कत है। तो इस ड्राई फ्रूट्स को हम लोग अगर रात में छोड़ दें और सुबह उठ के खाएं, इसका तेल भी हम लोग को उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लास्टली, तेल, आजकल हम लोग तेल बहुत ज़्यादा खाना चालू कर दिए हैं, हर दिन के हर आहार में हम लोग का खाने में तेल होता है, तो इसको जितना कम से कम किया जा सके, तला भुना ऑयली फ्राइड फूड हम लोग ना खाएं तो वो ज़्यादा अच्छा बात। इसको हम लोग होम्योपैथिक उपचार किस तरह से कर सकते हैं, तो दो तीन दवाइयाँ हैं जो कि अगर आपका हार्ट कमज़ोर है, अगर आपको पता है कि आपका हार्ट कमज़ोर है या हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आया हुआ है, तो दो तीन दवा हैं जो हार्ट के मसल्स को, हार्ट के वॉल्व्स को, हार्ट के सर्कुलेशन को यानी वेसल्स को भी डायलेट करके, तो ये रखता है। जैसे कि अर्जुना है, ये अर्जुना आयुर्वेदा में भी होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता हृदय रोग कारण उपचार, भेंटवार्ता का थे डॉक्टर अजय कुमार और इनसे बातचीत कर रहे थे श्री संजीव कुमार लाल। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र, जहां से आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार अब से कुछ ही पलों में।
2: ये दवाइयां
3: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् यथा भारतं विकसित भारत दिशि अग्रेसरति तथा देशस्य युवानः शारीरिक रूपेण सुदृढाः, मानसिक रूपेण सबलाः, आत्मविश्वासेन च परिपूर्णाः भवितुमर्हन्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशा मुक्त युवाभियानस्य दृश्य श्रव्य अन्तर्जालीय माध्यमेन शुभारम्भावसरे भाषमाणः प्रधानमंत्री अवदत् यत् युवानः सर्वदा मादकद्रव्येभ्यः दूरं तिष्ठेयुः, अथ स्वस्थ जीवन चर्यां च अंगीकुर्युः। असौ एतदपि अवदत् यत् अस्य अभियानस्य शुभारम्भेण मादक द्रव्य दुरुपयोगस्य विरुद्धं शतसप्ताहकात्मकस्य राष्ट्रव्यापिनः जनभागीदारी इत्यस्य अभियानस्य आरम्भः जातः।
4: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से

0: भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो, यही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: अस्मिन् कार्यक्रमे देशस्य 28,000 स्थानेभ्यः 1 कोट्यधिकाः युवानः भागं गृहीतवन्तः। अत्र माय भारत इत्येतस्य राष्ट्रिय सेवा योजनायाः च स्वयंसेवकाः, महाविद्यालय विद्यालय विश्वविद्यालयानां प्रतिनिधयः, युवकमण्डलानां अशासकीय संघटनानां च तथा आध्यात्मिक संस्थानां सदस्याश्च भागं गृहीतवन्तः। केन्द्रीय युव कार्य क्रीडा मंत्री डॉ मनसुख मांडविया अवदत् यत् मादक द्रव्य मुक्त भारतस्य स्वप्नं केवलं जनसहभागितया यूनां नेतृत्वेन च पूर्णा भवितुमर्हति। विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशा मुक्त युवाभियानस्य राष्ट्रिय शुभारंभानन्तरं असौ फरीदाबाद स्थिते अमृत चिकित्सालये आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे एतदवदत्। डॉक्टर मांडविया एतत् शतसप्ताहकात्मकम् अभियानं यूनः राष्ट्र निर्माणे प्रवर्तयितुं राष्ट्रव्यापी जनान्दोलनम् इति वर्णितवान्। बिहार गुजरात मध्य प्रदेशानां च त्रयाणां विधानसभा क्षेत्राणां उपनिर्वाचनानां कृते अद्य मतगणनायै सर्वाः व्यवस्थाः कृताः सन्ति। बिहारस्य बांकीपुरे, गुजरातस्य मंजलपुरे, मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने च मतदानं गतमासस्य 30 दिनांके जातम्। अद्य प्रातः 8 मतानां गणना आरभ्यते। प्रथमं पोस्टलिति मतपत्राणां गणना भविष्यति। तदनन्तरं प्रातः 8:30 मतदानयन्त्रेषु अभिलेखितानां मतानां गणना भविष्यति। निर्वाचनायोगेन त्रिषु राज्येषु सुगम गणनां सुनिश्चेतुं दृढ़ सुरक्षाव्यवस्था कृतास्ति। मध्यप्रदेशे दतिया विधानसभा क्षेत्रस्य गणना प्रशासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालये भविष्यति, यत्र 20 गणना पट्टिकाः स्थापिताः सन्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य ओडिशा राज्यस्य त्रिदिवसीयायां यात्रायां भविष्यति। यात्रावधौ राष्ट्रपतिः गंजम जनपदस्य कटक भुवनेश्वर ब्रह्मपुर तप्तापानी स्थलेषु शैक्षणिक सांस्कृतिक आधिकारिक कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति। अद्य राष्ट्रपतिः कटक नगरे जगद्गुरु कृपालु विश्वविद्यालयस्य उद्घाटनं करिष्यति। 11 दिनात्मकानां स्पर्धानां समापनानन्तरं ह्यः ग्लास्गो नगरे भव्य समारोहेण राष्ट्रमण्डल क्रीडा सम्पन्ना। भारतमेकोनचत्वारिंशत् पदकैः सह पदकतालिकायां 4th अधिगतवत्। एतेषु 13 स्वर्णपदकानि, 17 रजतपदकानि, 9 कांस्यपदकानि च सम्मिलितानि सन्ति। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
0: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्तपानी के पास स्थित मां कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और

के बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में यह बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों समेत 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का 4th युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का ये पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 39 पदक जीते हैं और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा है। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 मेगाहर्ट्ज पे। आइए आपको बता दें, प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन समय में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा अब से कुछ ही पलों में यानी कि 7:15 पर आप सुनेंगे पलाश लोकगीतों का कार्यक्रम जिरगा बगतम साथियों की आवाज़ में। सुगम संगीत का समय होगा 7:45 पर। 8 बजे से आप सुनेंगे दिल्ली से समाचार प्रभात। मॉर्निंग न्यूज का समय होगा दिल्ली से 8:15 पर। 8:30 में हम चलेंगे रांची, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 8:45 पर आप सुनेंगे गीत गुंजन। ज्वार पलामू का समय होगा 9 बजे। 9:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 10 बजे का समय होगा दिल्ली से हिंदी में समाचार का। 10:05 पर आप सुनेंगे दिल्ली से अंग्रेजी में समाचार। विविध भारती का समय होगा 10:10 पर मुंबई से। 11 बजे रंग तरंग, 12 बजे यादव की महफिल। दोपहर के 1 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 1:05 पर। 1:10 पर आप सुनेंगे रांची से प्रादेशिक समाचार। 1:20 पर आप सुनेंगे विविध भारती में सुरीला सफर। 2 बजे का समय होगा अंग्रेजी में समाचार का। 2:15 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दोपहर की सभा में। 2:30 पर आप सुनेंगे मुंबई से विविध भारती में सदाबहार नगमे। 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार रांची से। 3 बजे आप सुनेंगे मुंबई से विविध भारती में सखी सहेली।

4 बजे का समय होगा प्रादेशिक समाचार का। 4:02 पर आप सुनेंगे मुंबई से विविध भारती में सेहतनामा। 5 बजे का समय होगा रांची से प्रादेशिक समाचार का। 5:02 पर आप सुनेंगे मुंबई से विविध भारती में छाया गीत। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

शाम 5 बजकर 35 मिनट पर आप सुनेंगे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन। प्रादेशिक समाचार का समय होगा 6 बजे। 6 बजकर 2 मिनट पर आप सुनेंगे खेती बाड़ी। ग्रामीण सभा का समय होगा 6 बजकर 30 मिनट पर। 7 बजे का समय होगा प्रादेशिक समाचार का रांची से। तथा 7 बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे रांची से जिले में आजकल प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद का समय होगा 7 बजकर 15 मिनट पर। 7 बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे एक रंग कार्यक्रम के तहत फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। कल्याणी कार्यक्रम के तहत भेंट वार्ता आप सुनेंगे 7 बजकर 45 मिनट पर, जिसमें आप सुनेंगे छाती में पानी भर जाना कारण एवं उपचार। भेंट वार्ता करेंगे डॉक्टर तेजवीर सिंह रांची से। 8 बजे का समय होगा दिल्ली से संसद समीक्षा का। 8 बजकर 15 मिनट पर सुनेंगे चित्रपट संगीत हिंदी में समाचार का समय होगा दिल्ली से 8 बजकर 45 मिनट पर। 9 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से अंग्रेजी में समाचार। उर्दू में समाचार का समय होगा 9 बजकर 15 मिनट पर। 9 बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे विविध भारती में आज के फनकार। 10 बजे का समय होगा संसद में प्रश्नकाल का। 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली से। 11 बजकर 5 मिनट पर आप सुनेंगे दिल्ली से अंग्रेजी में समाचार। और हम अपने सभा का समापन करेंगे रात्रि के 11 बजकर 10 मिनट पर। ये थी हमारी आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम झिरगा भगतम साथियों की आवाज में।

বাজে বড়ি মজা লাগে দাদা ঢোল হে দাদা ঢোল নাগেরা বাজে।

अभी आप सुन रहे थे पल्लास लोकगीतों का कार्यक्रम। अब आइए सुनते हैं गुलाम अली की आवाज में स्वर सरिता।

अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली की आवाज़ में स्वर सरिता। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, चलते दिल्ली के केंद्र, जहां सब सुनेंगे समाचार प्रभात अब से कुछ ही पलों में।

0: बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
3: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपानी जाएंगी, जहां वो मां कांधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंध स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रुकेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक किए गए हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निर्धारित स्थलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आजकल के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
2: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा

0: होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर दो विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर एक आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। यह विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पाल की जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा, जबकि शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचेगी। यहां शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए शाम 7 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया।

0: समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरिरंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कई गुना ज्यादा, तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नभर टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है, जबकि जनसत्ता ने अमेरिका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया है।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमले रोकें बशर्ते शीघ्र हो करार। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि के समाचार को शीर्षक दिया है, इस बार हमारे 54% गोल्ड बॉक्सिंग में आए, कुल मेडल में से 69% सिर्फ 3 खेलों में जीते। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, हादसों के हाईवे पत्र सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सवाल करता है कि जब वैकल्पिक ईंधन और वाहनों की प्रदूषण जांच सरकार की प्राथमिकता है तो ऐसा ही अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्यों नहीं चलाया जाता। पत्र का कहना है कि बीते गुरुवार को लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। पुलवामा जिले में एक आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया, कहा विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week-long Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, says Viksit Bharat requires physically healthy, mentally robust and highly confident younger generation. Counting of votes begins for by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Meeting of heads of national statistical offices of BRICS countries starts in Lucknow today. US President Donald Trump says new talks with Iran to take place today. 14 people killed in suicide attack during peace rally in Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa. And Ahmedabad formally receives the Commonwealth Games hosting rights for 2030 at the Glasgow closing ceremony. Prime Minister Narendra Modi has launched the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan through video conferencing in New Delhi yesterday. In his address, the Prime Minister said that achieving Viksit Bharat fundamentally requires a physically healthy, mentally robust and highly confident younger generation, completely free from self-destructive habits.
3: Viksit Bharat Sankalp Abhiyan ke liye Nasha Mukt Yuva, is movement ka naam hi iske sankalp ko spasht karta hai. Kyunki aaj jab desh ne Viksit Bharat ka lakshya tay kiya hai, to iske liye avashyak hai desh ka युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो, यही इस अभियान का उद्देश्य है।
2: Outlining the campaign's ambitious 100-week roadmap, Mr. Modi detailed how every upcoming Sunday will feature dedicated activities spanning art, culture, sports and meditation to continually engage new participants. He said that coming 100 Sundays will absolutely become 100 strong steps in the direction of a completely drug-free India.
3: आने वाले

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
2: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
3: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
2: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, जेपीएससी विवाद और झारखंड की स्थिति से कराया अवगत। अमृत भारत योजना में राजखरसावां स्टेशन का होगा आधुनिकीकरण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में दी जानकारी। झारखंड के 57 अन्य स्टेशनों का होगा पुनर्विकास। जामताड़ा मुठभेड़ में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा ढेर, पुलिस हिरासत में मारा गया दूसरा बड़ा अपराधी। सावन की पहली सोमवारी आज बाबा नगरी में उमड़ा आस्था का सैलाब, आज 2 लाख कांवरियों के जलाभिषेक का अनुमान। और मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट किया जारी, तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य की वर्तमान स्थिति और विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल ने झारखंड लोक सेवा आयोग की नियुक्ति परीक्षा मामले में सीआईडी की जांच की जानकारी भी दी। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र संगठनों के आंदोलन से गृह मंत्री को अवगत कराया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजखरसावां रेलवे स्टेशन का लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देशभर में इस योजना के तहत 1340 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिनमें झारखंड के 57 स्टेशन भी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने बोकारो जिले के 4 क्षेत्र को बड़ी सौगात देते हुए आईटीआई मोड़ से जोधाडीह मोड़ तक फ्लाईओवर निर्माण को मंजूरी दी है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने बताया कि इस परियोजना के पूरा होने से चास और बोकारो स्टील सिटी के बीच यातायात व्यवस्था सुगम होगी तथा जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।
5: बोकारो जिला प्रशासन का एक उद्देश्य ये था कि रेट हो रहे हैं जो जाम लग रहे हैं, इन सब चीजों को दूर करना बहुत जरूरी था। और आप देखेंगे कि इनको प्रस्ताव

0: बनाकर हम लोगों ने दिया। जिला सुरक्षा समिति का जो प्रस्ताव है उसको करना सभी डिपार्टमेंट के लिए मैंडेटरी है। मुझे बहुत खुशी है कि इस पर एक्शन लिया जा रहा है।
1: जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन आज भी जारी है। कल रांची में आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला। छात्रों ने सरकार से पारदर्शी जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग दोहराई।
2: जिस तरह से बीएससी में धांधली हो रही है, सीजीएल में धांधली हो रही है, जेएनएलसी में धांधली हो रही है, जेल में धांधली हो रही है, इन तमाम मांगों को लेकर सीबीआई जांच करवाने की बात है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। 26 सालों से हम लोगों को पूर्वक बनाकर रखा गया है, धोखा दिया जा रहा है। कोई भी सरकार हो, अब हम लोग रुकने वाले नहीं है और झुकने वाले नहीं है, लड़ेंगे और जीतेंगे।
1: आयकर विभाग का निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के कई ठिकानों पर 4 दिन तक चला सर्वे पूरा हो गया है। विभाग के अनुसार सर्वे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है। जांच में कथित तौर पर अस्तित्वहीन कंपनियों से खरीद और अन्य वित्तीय अनियमितताओं के भी साक्ष्य मिले हैं। आयकर विभाग ने बताया कि कंपनी 200 करोड़ रुपए के नकद खर्च का संतोषजनक विवरण प्रस्तुत नहीं कर सकी। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे ने 2 विशेष परीक्षा ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। रांची से परीक्षा स्पेशल 3 से 22 अगस्त के बीच 15-15 फेरों के लिए संचालित की जाएगी। ये ट्रेनें झारखंड, बिहार और ओडिशा के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरेंगी। रेलवे के अनुसार राउरकेला रामगढ़ कैंट राउरकेला परीक्षा स्पेशल 17 से 22 अगस्त तक निर्धारित तिथियों में चलेंगी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की कल देर रात जामताड़ा जिले में पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार उसे साहिबगंज मंडल कारा से धनबाद जेल स्थानांतरित किया जा रहा था। रास्ते में पुलिस वाहन का टायर पंचर होने के बाद दूसरी गाड़ी में शिफ्टिंग के दौरान उसने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी का हथियार छीनकर फायरिंग करने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया। साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक अमित सिंह और जामताड़ा के पुलिस अधीक्षक शंभू सिंह ने घटना की पुष्टि की है। जमशेदपुर के परसुडीह कैनाल से मिले महिला के शव मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि शादी के दबाव से परेशान होकर आरोपी ने महिला की हत्या कर शव कैनाल में फेंक दिया था।
3: एक अज्ञात महिला का शव प्राप्त हुआ। अनुसंधान में ही ये पता चला कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है दासमत बस्के। अनुसंधान में जो सामने आ रहा है वो ये है कि इनका कुछ रिलेशन था, ये पहले भी मिलते जुलते रहे थे। महिला द्वारा उस पर शादी का दबाव बनाया गया, इस तरीके की बातें अभी तक सामने निकल गया।
2: सावन की पहली सोमवारी को आज राज्य भर के शिवालयों में श्रद्धालु जलार्पण के लिए उमड़े। पहली सोमवारी पर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। रात 1 बजे ही श्रद्धालुओं की कतार नंदन पहाड़ तक पहुंच गई थी। मंदिर प्रबंधन के अनुसार

0: आज लगभग 2 लाख कांवरियों के जलाभिषेक का अनुमान है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: झारखंड के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में आज पहली सोमवारी के साथ सावनी मेला 2026 का आगाज हो गया है। सुबह ठीक 3:05 पर पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ जलाभिषेक के लिए उमड़ पड़ी है। बोलबम हर हर महादेव के जयकारों से पूरा देवघर गूंज रहा है। मंदिर परिसर और कांवरियां पथ पर लंबी कतारें देखी जा रही है। पहली सोमवारी को करीब 2 लाख कांवरियों के जलाभिषेक कराने का अनुमान है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की गई है। भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। सीसीटीवी एवं ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। आशीष कुमार अंबस, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
0: वहीं रांची के पहाड़ी मंदिर सहित अन्य शिवालयों में सुबह से विशेष पूजा और जलाभिषेक जारी है। प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है। राज्य के कई हिस्सों में आज से अगले 5 दिनों तक जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। बोकारो जिले के चास प्रखंड स्थित कुंबाटांड गांव में धान रोपाई के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से 3 युवतियां घायल हो गईं। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को बोकारो सदर अस्पताल पहुंचाया गया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेल 2026 का रंगारंग समारोह के साथ समापन हो गया। समापन समारोह में राष्ट्रमंडल ध्वज भारत को सौंपा गया, जिसके साथ ही अहमदाबाद में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों की औपचारिक शुरुआत हुई। इस अवसर पर नीरज चोपड़ा और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा मौजूद रहीं। भारत ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी समृद्ध विरासत की झलक भी पेश की। और अखबारों की सुर्खियां, राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के मुठभेड़ में मारे जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण की सुर्खी है, कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा मुठभेड़ में ढेर। प्रभात खबर की सुर्खी है, गृहमंत्री से मिले राज्यपाल, दी जेपीएससी प्रकरण की जानकारी। हिंदुस्तान की लीड है, पहले सोमवारी आज देवघर में उमड़े भक्त। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात, जेपीएससी विवाद और झारखंड की स्थिति से कराया अवगत। अमृत भारत योजना में राजखरसावां स्टेशन का होगा आधुनिकीकरण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में दी जानकारी, झारखंड के 57 अन्य स्टेशनों का होगा पुनर्विकास। जामताड़ा मुठभेड़ में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा ढेर, पुलिस हिरासत में मारा गया दूसरा बड़ा अपराधी। सावन की पहली सोमवारी आज बाबा नगरी में उमड़ा आस्था का सैलाब, आज 2 लाख कांवरियों के जलाभिषेक का अनुमान। और मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट किया जारी, तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आए सुनते हैं गीत गुंजन, पुराने फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम।

गीत गुंजन सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए हम आपको सुनवाते हैं फिल्म सनम तेरी कसम का ये गाना आशा भोसले की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म अलग अलग का ये गाना गीत आनंद बख्शी के थे और संगीत आरडी बर्मन का। श्रोताओं आप सुन रहे हैं गीत गुंजन। कार्यक्रम के अंत में ही सुनवाते हैं फिल्म आखिर कौन का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीत इंदिवर के और संगीत राजेश रोशन का।

0: और इसी गीत के साथ हमें गीत गुंजन से आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे गीत गुंजन, पुराने फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

जोहार फिल्मों सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यारा भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत में हम बातें करते हैं आज के सुविचार की। आज के सुविचार हमारे इस प्रकार से हैं, कहते हैं शिक्षा वो चाबी है जो बंद दरवाजों को खोलती है, शिक्षा वो रोशनी है जो अज्ञानता को अंधेरे में मिटाती है, शिक्षा से हमें मिलता है आत्मविश्वास, सम्मान और सही दिशा। शिक्षा बिना इंसान अधूरा है, तो हमको शिक्षा अपनाना चाहिए और हम दूसरे को भी इनकी रोशनी पहुंचाएं, क्योंकि शिक्षा ही असली धन है। तो इसी सुविचार के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम जोहार पलामू, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं मौसम का मिजाज। तो आज का अधिकतम तापमान है 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री। हम बातें और भी करेंगे, मगर सुनते ही प्यारा सा गाना।

Bar Palamu. Johar Palamu. Johar Palamu.

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम जोहार पलामू। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बातें करते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति किस प्रकार से सचेत रहेंगे। अभी बरसात के दिनों में हमें सेहत रहने के लिए काफ़ी ध्यान देना होता है और ऐसे में हमेशा हमें उबला या साफ पानी पीना चाहिए। ऐसे दिनों में ताज़ा और घर का बना गर्म खाना खाना चाहिए, जिससे हम अपने आप को स्वस्थ रह सकें। हमेशा अपने साथ छाता या रेनकोट रखें। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना हमें है, जैसे हमेशा पानी उबला हुआ और ठंडा करके पिए ताकि पेट की बीमारियों से हम बच सकते हैं। बाहर का तला भुना खुला खाने से बचे, हमेशा घर का हल्का और ताज़ा खाना खाना चाहिए। जामुन से पपीता जैसे फल धोकर खाएं, लेकिन कटे हुए या खुले में रखे फल कभी ना खाएं। भीगने से बचे, बारिश में ज़्यादा देर भीगने से बचना चाहिए। अगर भीग जाए तो तुरंत सूखे कपड़े पहन लें। घर के आसपास पानी जमा ना होने दें ताकि मच्छर पैदा ना हो। मलेरिया या डेंगू जैसे बीमारियों से हमें बचना चाहिए। हाथों को हमेशा स्वच्छ रखें। कुछ भी खाने से पहले हाथ को साबुन से ज़रूर धोएं। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम बरसात के दिनों का आनंद ले सकते हैं। हम बातें और भी करेंगे, मगर सुनते हैं।

0: इसी गीत के साथ जो हार पलामू से हमें आगे दीजिए, फिर मिलेंगे, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे जोहार पलामू, प्रस्तुति स्वर था पिंकी कुमारी का।
1: पलामू।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है।
2: वो लिखते हैं, रेडियो उद्घोषक और श्रोता का रिश्ता आवाज से शुरू होकर विश्वास, आत्मीयता और दिलों के जुड़ाव तक पहुंचता है। इसी आत्मीयता को हम उमंग कार्यक्रम में देख सकते हैं। यही जुड़ाव बना रहे।
1: जी हाँ श्रोताओं, यही जुड़ाव बना रहे, हमारी भी यही इच्छा है। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी सुनवाई जाती है। इसी कड़ी में श्रोता संवाद में सर अजीत जी और प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी से मनोदर्पण विषय पर बातचीत सुनी और पसंद आई।
1: आगे आपने लिखा है, कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी सराहनीय लगी। इस जानकारी को सुनकर विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावक निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। श्रोता संवाद में मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण जानकारी सुनवाने के लिए हम प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी एवं सर अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
2: एक निवेदन भी करते हैं कि ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित करें। किसी कारणवश ये कार्यक्रम श्रोता सुनने से वंचित रह गए हों तो वो भी इस कार्यक्रम को सुन सकें और कार्यक्रम सुनकर लाभ भी उठा सकें। एक बार पुनः आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और आदित्य जंघेल के साथ साथ अंजलि जंघेल जी का। आप लिखते हैं कि रेडियो की पहचान उसकी आवाज नहीं बल्कि श्रोताओं के दिलों से उनका जुड़ाव है। और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव लिखते हैं,
1: नियत स्टेशन से अगर हम उमंग कार्यक्रम नहीं भी सुन पाते हैं तो किसी न किसी स्टेशन से जरूर सुन लेते हैं
2: जी,
1: क्योंकि ये आसपास के किसी न किसी स्टेशन से अलग अलग समयों में प्रसारित होता रहता है।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
1: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान क्या है?
2: इसका उत्तर है साथियों, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार।
1: अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, श्री महादेव देसाई महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे। वे महान देशभक्त और गांधी जी के अनुयायी थे।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था श्रोताओं की बिजली बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे?
2: इसका उत्तर है लगभग 10,000 बार
1: जी। और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है?
2: अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या IAS के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा।
1: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अपनी किस पुस्तक में APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है?
2: साथियों, पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार उनके शिक्षक ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
1: तो श्रोताओं, ये थे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करके सुनिए।
2: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक भी डाउनलोड कर सकते हैं।
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, जैसा कि आप जानते हैं, और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। श्रोताओ, संदेश जरूर भेजिएगा।
2: जी, आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है मेरी माँ।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है। ये पाठ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की जेल डायरी का एक अंश है, जिसमें उन्होंने अपने चरित्र निर्माण में अपनी माताजी की भूमिका को सराहा है।
1: मेरी माँ।

0: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
1: राम प्रसाद बिस्मिल के मुख से निकली इन पंक्तियों से भला कौन परिचित नहीं होगा। ये वो गीत है जिसे लगभग पूरा भारत गाता था।
2: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
1: इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों की रग रग में क्रांति की ज्वाला भर दी थी। इस गीत को गाते गाते न जाने कितने स्वाधीनता सेनानी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए।
3: उनका नाम था राम प्रसाद, लेकिन बिस्मिल के उपनाम से वो बहुत प्रसिद्ध हुए। इसी उपनाम से उन्होंने बहुत सी देशभक्ति की कविताएं और गजलें लिखी। बिस्मिल का अर्थ होता है बेचैन या घायल। राम प्रसाद बिस्मिल एक लेखक, कवि और क्रांतिकारी थे जिनका जीवन हमेशा देश के असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
1: वो कहते थे,
0: मेरा रिश्ता क्रांति और कलम दोनों से है।
3: बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक गांव में मुरलीधर और मूलमती के यहां हुआ था। वो बचपन से ही बहुत नटखट प्रवृत्ति के थे। उनका मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा लगता था। उन्हें तैराकी, कुश्ती जैसे खेल बहुत पसंद थे।
1: अपने बचपन और शिक्षा के बारे में बताते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरे निज दिनों की छटा में लिखा है।
0: जब मैं कोई 7 वर्ष का हुआ तो पिताजी ने स्वयं ही मुझे हिंदी अक्षरों का बोध कराया और फिर एक मौलवी साहब के मकतब में उर्दू पढ़ने के लिए मुझे भेज दिया गया। वहां से मैंने 4th जमात पास की।
3: समय का पहिया चलता गया। उनके पिताजी पर स्वाधीनता संग्राम का बहुत प्रभाव था और शायद इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे, लेकिन उनकी माता के हस्तक्षेप के कारण उन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए मिशन स्कूल भेज दिया गया।
1: बिस्मिल के जीवन में यदि हम गहराई से झांकें, तो पता चलता है कि वो अपनी माता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने जीवन में अपनी माता की भूमिका को बहुत अहम माना है। वो मानते हैं कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी माता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो लिखते हैं,
0: 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वे नितांत अशिक्षित ग्रामीण कन्या के समान थी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष के बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उनमें खुद ही पैदा हुआ। मोहल्ले की सखी सहेली जो भी घर पर आया करती थी, उनमें जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों के बाद वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी।
3: साथियों, उन दिनों समाज द्वारा स्त्री शिक्षा पर बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिस्मिल की माताजी आज भी सब महिलाओं और कन्याओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और आदर्श हैं।
0: मां तो मां होती है बस। ऐसे मेरी माता मेरे धर्म कार्यों और शिक्षादि में बड़ी सहायता करती थी। वे प्रातः 4 बजे ही मुझे जगा दिया करती थी। मैं नित्य प्रति नियम पूर्वक हवन किया करता था और यहीं से मेरी रुचि अध्यात्म और सत्य निष्ठा के प्रति बढ़ी। सच कहता हूं, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो शायद मैं भी साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता और सत्य के प्रति मेरा इतना अधिक अनुराग न होता।
1: अपनी सत्य निष्ठा के बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है।
0: एक बार पिताजी

0: दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो मुझसे करा ले। आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया, ये तो धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मामला खारिज हो जाएगा, लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव ना हुआ और ना ही मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में मैं हमेशा सत्य का आचरण करता था और चाहे कुछ हो जाए मैं सत्य बात कह देता था।
1: तो ऐसी थी सत्यवादिता राम प्रसाद बिस्मिल की, और इस शिक्षा की नींव डाली थी उनकी माता जी ने।
2: पराधीन भारत में अपनी पीढ़ी के कई युवाओं की तरह राम प्रसाद बिस्मिल भी अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से परेशान थे। माता की शिक्षा, श्रेष्ठ गुरुजनों की प्रेरणा और अनेकानेक देश प्रेम और अध्यात्म से ओतप्रोत साहित्य के अध्ययन ने उनके मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर दी थी।
1: उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपना जीवन देश की आजादी की लड़ाई में समर्पित करने का फैसला कर लिया। आठवीं कक्षा तक अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल बहुत कम उम्र में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए थे।
2: नौ अगस्त 1925 को हुए काकोरी रेल कांड में वो अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। जेल में ही उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से छिपकर उसके अंशों को जेल से बाहर भेजते रहे।
1: उनकी आत्मकथा का शीर्षक था मेरे निज जीवन की छटा। आत्मकथा को उनके मित्रों ने प्रकाशित करवा दिया।
2: गोरखपुर जेल में लिखी गई आत्मकथा में उन्होंने अपनी माता को बड़े ही मार्मिक शब्दों में संबोधित किया है।
0: जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला, इस जन्म में तो क्या, मैं अनेक जन्मों में भी प्रयत्न करूं तो तुमसे पूर्ण नहीं हो सकता। मां, तुम्हारी ही दया से तो मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी मां, पर मुझे विश्वास है तुम ये सब समझ कर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया और तुम्हारी कोख कलंकित ना की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा तुम्हारा बेटा। मां, जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो उसके किसी पन्ने पर तुम्हारा नाम भी उज्जवल अक्षरों में लिखा जाएगा।
1: काकोरी रेल कांड में उन पर मुकदमा चला और उनके साथ तीन और क्रांतिकारी साथियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई।
3: कहते हैं अलविदा हम अब इस

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरी माँ, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम राग शंकरा।
1: इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध राग शंकरा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके स्वर विस्तार, आरोह अवरोह, गायन समय और स्वर मालिका के बारे में भी बताया गया है।

राग शंकरा। राग शंकरा की उत्पत्ति बिलावल थाट से हुई है। इसके आरोह में ऋषभ और मध्यम अर्थात रे और म तथा अवरोह में केवल मध्यम यानी म वर्जित स्वर है। परंतु राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए ऋषभ अर्थात रे का प्रयोग कर्ण स्वर के रूप में किया जाता है। आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वर प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व शाड़व है। इसका वादी स्वर गंधार यानी ग है और संवादी स्वर निषाद अर्थात नी है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग शंकरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए

अब प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग शंकरा की स्वर मालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना। बोल है हम आशा का दीप जलाएं। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: इस राग की बंदिश को आइए एक बार फिर से सुनते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र जहां से आप सुनेंगे हिंदी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं न कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों के लिए मतगणना जारी है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती की जाएगी। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। गुजरात में मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल बढ़त बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय दल के प्रदर्शन पर गर्व व्यक्त किया और भारत द्वारा 13 स्वर्ण पदकों सहित 39 पदक जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने सभी पदक विजेताओं को उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिस्पर्धाओं के दौरान भारत के प्रतिभाशाली एथलीटों ने असाधारण कौशल, दृढ़ संकल्प और समर्पण का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मौसी है, मौसा मौसी आए, मामा आए, वगैरह वगैरह। मैंने कहा समझ रही हूँ, इसे इसकी कुछ बड़े बुजुर्ग कैरेक्टर भी तो आने चाहिए ना। फिर मैंने एक दादी माँ डाली, एक नानी, एक बाप डाला
1: भाई
0: का,
1: डाला।
0: एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। तो ऐसे लोग डलते गए। फिर मैंने एक दिन गुल से कहा गुस्से से कि मुझे लगता है मैं बनिया बन गई हूँ और पुड़िया बांध के ये कर रही हूँ। लेकिन बहुत अच्छी कहानी बन गई। और स्पर्श के बाद तो ये अनुभव बहुत ही अनोखा था कि जो हम मांगे मतलब किसी हद तक तो वो एकदम पेश हो जाता था,
1: अच्छे प्रोड्यूसर की
0: अच्छे
1: निशानी।
0: प्रोड्यूसर, क्योंकि वो चाहता था अच्छी फिल्म बने। अब यहाँ ऐसे लगा कि नहीं, एक ही टीम में है हम लोग। और फिर फिल्म बन गई और बहुत अच्छे कलाकार मिले, फारूक, और
1: बिल्कुल
0: वहाँ भी गुल बहुत ही मतलब ही वॉज अ पक्का प्रोफेशनल। ही न्यू एग्जैक्टली हाउ टू सेव मनी, बट ही नेवर डिड द फिल्म और एनीवन एनी हार्म। फिल्म को मार के उसने नहीं कुछ कहा। उन्होंने एक्टर्स भी चुने, अब दीप्ति नई नई आ रही थी, बट ही सॉ कि यस इस लड़की में बहुत टैलेंट है, हाँ उसको लिया। और नेचुरली एट दैट टाइम दीप्ति वॉज डाइंग टू मेक अ गुड फिल्म। हाँ, सेम विथ फारूक, सेम विथ
1: रवि।
0: रवि ने तो कुछ भी नहीं किया था, मेरे कहने पर रवि को ले लिया, सिर्फ मेरे कहने पर। मैंने कहा नहीं नहीं इसको तो लेने, कुछ दो तीन लोगों के लिए मैं अड़ गई थी। एक वो रवि बासवानी था और दूसरी लीला मिश्रा थी। तो
1: क्या
0: मैंने
1: बात
0: कहा
1: है।
0: ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, दादी अम्मा मुझे कोई, तुम चाहे जो भी कहे उनका तुम किराया दोगे। तो वह हंस के कहता है हाँ ओके बाबा, ले लिया उसको। क्योंकि बाकियों को तो कह, रवि को बेचारे को 3,000 पूरी फिल्म का उसका मेहनत आना,
1: राकेश बेदी,
0: वो नहीं मुझे मालूम, क्योंकि वो गुल ने लाया था राकेश को। लेकिन उसने
1: फारूक कहां से किस तरह कास्ट हुए थे?
0: फारूक ने गमन की थी ना,
1: जी,
0: गमन
1: मुजफ्फर अली के।
0: मुजफ्फर की, और फिर देखा था उधर उधर। फारूक अच्छा एक्टर तो था ही, थिएटर करता था, तो गुल ने वो जरूर देखा होगा जाके, चुपचाप उनके प्लेस देखे हुए, इधर देखा होगा उधर, वो तो बहुत करता था। फिर व्हेन ही वाज कन्विंस्ड कि यस ही इज अ वेरी कल्चर्ड एंड अ वेरी गुड आर्टिस्ट, तो उनसे बात की और फारूक भी मान गए खुशी खुशी। और फारूक के साथ भी मेरी बड़ा अच्छा दोस्ताना हुआ, बहुत प्यारा आदमी था, बहुत ही नेक और प्यारा इंसान,
1: दो फिल्में और
0: बहुत
1: वो
0: बहुत
1: आगे
0: अच्छा
1: बात
0: आदमी।
1: करेंगे कि कैसे कथा में
0: हाँ
1: नसीर और
0: या
1: फारूक आपसे लड़ाई
0: या
1: करते थे कि कैसे रोल दिए, है ना, वो आगे बात करेंगे।
0: हाँ
1: गाना सुनते हैं।

0: जाफरी का किरदार कहां से आया और ये पूरी फिल्म में आप ये देखिए कि कितना महत्वपूर्ण पक्ष बन गया।
1: हाँ, सईद का ना
0: जी
1: बहुत बहुत ही अच्छा, क्योंकि वो था ही उस लायक ही, वाज अ ट्रिमेंडस एक्टर विद अ मेजर पर्सनालिटी, बिग पर्सनालिटी, एंड ही वाज वेरी सिंसियर टुवर्ड्स हिज रोल, टुवर्ड्स हिज मिशन. और वो भी अब गुल की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने सईद को पकड़ा कि वो वेस्ट एंड से लंदन में करते थे थिएटर और फिल्में बीबीसी के लिए इधर उधर, और वो अब चाहते थे यहाँ बॉलीवुड में आजमाना कि क्या कुछ बन सकता है क्या. वो देखने आए थे सईद, और गुल ने बराबर अपना जाल फांसा
0: वाह
1: और सईद को पकड़ा लिया. और अब अच्छा प्रोड्यूसर तो था ही गुल, मतलब नाम उनका अच्छा था, तब तक स्पर्श के बदौलत मेरा भी थोड़ा सा नाम हुआ था. तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू बी इन द फिल्म, एंड तब तक वो एक कैरेक्टर बन गया था पान वाले का. हाँ, उसने कहा फिर मुझे सईद ने, भाई वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा. मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके? जैसे अरे वहां के पान वाले देखेंगे. हाँ, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह. तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक मिल
0: एक और
1: गया,
0: आ
1: एक और आ गया. तो
0: गया।
1: मैंने कहा चलो चलते हैं फिर मैं उनके साथ, और फिर हम दोनों दिन भर वो देखता रहे, हर ठेले में जाके उनके साथ बैठना, उनके साथ गुफ्तगू करना, उनकी बातें सुनना, उनके कुछ कुछ लफ्ज भी वो लिखते थे, पुरानी दिल्ली वाले जो जुबान थी ना दिल्ली की वो भी उन्होंने उठाई, और कमाल का ये किया. और फिर अपने नाम पे वो बहुत ही वो थे स्ट्रिक्ट कि नाम अच्छा चाहिए मेरे रोल को. तो फिर हमने फुफन और याकूब और
0: अच्छा
1: लच्छन और ये वो, हाँ, कहते ना घंटी नहीं बजी, नहीं नहीं घंटी नहीं बजी. और फिर हमने कहा कि जाओ अब तुम अपने आप ही ढूंढ लो, अब हमारे नाम खत्म हो गए. तो एक दिन सुबह सुबह मुझे फोन आया, काफी सुबह की. मैंने कहा हेलो आदाब, मैं ललन मियां बोल रहा हूँ. तो वो नाम मिल गया. तो क्या रोल किया सईद ने. हाँ, बहुत बहुत ही मजा आ गया, एंड द होल थिंग वाज वंडरफुल. लीला मिश्रा भी क्या
0: क्या शानदार।
1: कमाल की एक्ट्रेस है, वंडरफुल
0: बिल्कुल
1: पर्सन,
0: बिल्कुल
1: बहुत बहुत.
0: सही जी। जब चश्मे बदूर की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। मुझे लगता है पहले शूटिंग लोकेशंस की बात करते हैं। जितनी खूबसूरती से दिल्ली आपने दिखाया है और वो पूरा माहौल आपने जिंदा किया है, वो लोकेशंस कैसे ढूंढी थी और उससे जुड़ी कुछ
1: वो
0: दिलचस्प
1: ढूंढना
0: बातें?
1: क्या था यूनुस, वो तो सामने आ खड़ी होती थी कि
0: अच्छा
1: अरे हमें ये इधर नहीं देखा,
0: हाँ
1: हमको शूट करो. क्योंकि चाहे आम सड़क हो कोई दिल्ली की, या चाहे पुराना बाजार हो, पुरानी दिल्ली का कोई माहौल हो, या कोई खूबसूरत सा बाग हो, गार्डन हो, चाहे लोधी गार्डन हो, चाहे तालकटोरा गार्डन हो, चाहे जो भी, और इतने खूबसूरत सब नजारे होते थे कि क्या ले क्या नहीं, कैमरा पगला जाता था सचमुच. इसलिए वो कोई मुसीबत ही नहीं हुई. और एक तो खंडहर, दिल्ली के जो पुराने टूटे फूटे फोर्ट्स वगैरह, वो क्या मतलब बात, बहुत ही वो थी, दुकानें छोटी छोटी. और फिर बरसातियां, वो बरसाती भी अपने आप में बड़ी प्यारी चीज होती थी, है
0: जी
1: ना.
0: जी
1: तो वो भी हमें बहुत सुंदर बरसाती मिली, और घर भी इतने अच्छे मिले. फॉर दैट आई मस्ट गिव क्रेडिट टू रवि बासवानी, क्योंकि रवि तो पक्का दिल्ली का बंदा था, दिल्ली में
0: जी
1: रहने वाला, और उसके पीआर बोलो तो इतना अफाट जाल था, विस्तृत जाल था उसके दोस्ताने का. तो एक से बढ़कर एक रवि ने लोकेशंस लाए. नसीर का घर जो था वो, दैट वाज प्रोफेसर आर्याज लिटिल बंगलो विथ ब्यूटीफुल गार्डन ऑल अराउंड इट, एंड अ वेरी क्यूट लिटिल हाउस इन बिटवीन, जो लगे बिल्कुल कि हाँ ये प्रोफेसर का घर होगा, सुंदर
0: बिल्कुल।
1: सा
0: और
1: छोटा
0: वो
1: सा,
0: जिस तरह से
1: हाँ
0: वो किचन
1: बड़ा
0: चाय बनाते हैं।
1: टेस्टफुली किया हुआ. फिर शबाना का मतलब कविता का जो होता है फ्लैट बरसाती पे ऊपर, हाँ अगेन टेरेस है चारों ओर, उस पे छोटे छोटे पौधे लगे हुए, उसका इकबाना उस पे लगाया हुआ, तो वो भी एक बहुत खूबसूरत सा मिल गया. दोस्तों का था वो एक घर. और तीसरा रहा वो मंजुल, जो कविता की दोस्त होती है, उनका घर एक शानदार है, जो संकन लिविंग रूम है उसका. वो तो बहरहाल एक खुद आर्किटेक्ट थे, बड़े जाने माने मशहूर दिल्ली के, उनका अपना घर था जो
0: वाह
1: उन्होंने हमें शूटिंग के लिए दे दिया. तो ऐसे एक एक होकर वो लोकेशंस बहुत सुंदर बने, और इसलिए दिल्ली जो दिखी चश्मे बदूर में वो निहायत खूबसूरत दिल्ली थी. बड़ा प्यारा हसीन सा शहर। किसी ने मुझे कहा कि तुमने तो ये एड फिल्म बनाई सही दिल्ली के लिए। मैंने कहा नहीं, ये मेरा लव लेटर था दिल्ली को।
0: क्या प्यारी बात है, वाह। एक चीज ये है कि जो कमर्शियल सिनेमा है उसके प्रति प्यार की एक निशानी चश्मे बद्दूर में आती है, और वो आती है जब वो ड्रीम सीक्वेंस जैसा है जहां पर एक के बाद एक गाने आते रहते हैं।
1: हाँ,
0: जो आपने पूरा का पूरा पैरोडी बनाई,
1: मजाक उड़ाता है यार, रवि जो गाते हैं, रवि और दीप्ति मिलके
0: जी। हाँ, वो कमाल है जिसमें एक के बाद एक गाने आते हैं, कभी परवीन बाबी का गाना आ जाता है तो कभी पुराने गाने चले आते हैं,
1: कभी जीना तमान का आता है
0: जी,
1: हाँ?
0: जी,
1: कभी देवानंद का, और वो
0: क्या कमाल, देवानंद वाला तो अद्भुत
1: किया भी उसने, वो ढीली ढाली चाल उसकी
0: जी,
1: और कभी दिल चाहे या माथा यारा मैं,
0: मैंने तो हाँ कह दी,
1: वो भी दीप्ति और रवि ने गाया, जो वह बहुत मजे मजे,
0: शीशा हो या दिल उसमें तो जो दीप्ति लगी है
1: वो बहुत अच्छा किया रहा है उसने, बहुत सुंदर किया रीना रॉय का, बहुत खूबसूरत, तो वो करने में मजा भी बहुत आ गया, बहुत
0: जी। ये फिल्मी गानों से आपका प्यार भी दिखाता है।
1: एक बात बताऊं, वो जो उसमें ये था ना, आ जा
0: तीसरी मंजिल,
1: तीसरी मंजिल वाला गाना, तो वो दीप्ति से वो करवा रहे थे, और दीप्ति ने थोड़ा सा इस सिलसिले में परेशान किया, अगर कहीं पूरे मेरे दीप्ति के साथ जो ताल्लुकात हुए हैं उसमें अगर कहीं हमारी थोड़ी सी नोकझोंक हुई तो उसमें, वो चाहती नहीं थी वो गाना गाए और ये करे इस तरह, कुछ वीक पहने वगैरह, पता नहीं क्या उसके बीच बीच में कभी भूत सवार होता था, कभी कम ही लेकिन कभी कभी होता था। तो फिर गुल ने तब के डांस मास्टर जो इंडस्ट्री के बड़े माने हुए विजय ऑस्कर करके दोनों थे, तो उसमें से ऑस्कर को रखा उन्होंने, और ऑस्कर का ये काम था कि दीप्ति से
0: डांस करवा ले,
1: डांस करवा तो वो एक सन एंड सैंड में कमरा बुक किया था गुल ने, और वहां हमारा दिन भर चलता था, तब VHS का जमाना था
0: जी।
1: हाँ, तो VHS एक मंगवाया मशीन, और VHS कैसेट थी जिसमें ये तीसरी मंजिल वाला गाना बार बार हमने इतनी बार वो सुनाया। उसमें डांसर्स भी हैं, एक तो आशा पारिक नाचती है और उनके साथ एक फाइल होती है दाएं बाएं, हाँ, आठ आठ लोगों के, आठ मर्द इधर आठ मर्द उधर, और नाचने वाले सब, तो वो हम बार बार देखते थे, और मैं ऑस्कर को बहुत बार समझाती थी क्या चाहिए, मुझे लगता है कि ये मेरी बुरी आदत है, हालांकि तब किसी दोस्त ने या कलाकार ने कभी नहीं मुझे कहा, लेकिन अब बच्चे कहते हैं मुझे कि तुम वही एक बात इतनी बार बताती हो कि आदमी तंग आ जाता है, ये मुझे अभी वो कहते हैं, तो उस हिसाब से मैं बार बार बेचारे ऑस्कर को बताती रही कि ऑस्कर ये ऐसा चाहिए, देखा ना ये कैसे ये आठ जने नाच रहे हैं, ये देखा ना ये, तो ऑस्कर ऐसा मुझे चाहिए वगैरह, और वो बड़ा प्यारा बड़ा पोलाइट आदमी, हाँ हाँ सही, ये सब कुछ सही, हाँ जी जी बिल्कुल यस यस सही, श्योर श्योर सही कहता रहे। फिर एक दिन मुझे लगता है ऑस्कर का भी दिल भरा है, उब गया वो भी उसने फिर वो रोका VHS मशीन, ने कहा सही ये आठ जनों की लाइन देख रहे हैं ना, जो मर्द नाच रहे हैं दाएं तरफ, मैंने कहा हाँ, उसमें से तीसरा आदमी देखो पहचानती हो, वो मैं हूँ मैंने कहा क्या, हाँ मेरे करियर की शुरुआत इस गाने से हुई है, और तुम क्या मुझे बार बार बता रही हो ये करो वो करो वो करो, मैं चुप, फिर मैंने कहा जो करो मैं नहीं कुछ कहने वाली, तो इतनी मजे की बात होती है।
0: वाह वाह वाह क्या बात है। इस फिल्म में मंगेश देसाई का एक बहुत बड़ा योगदान है, उसका जिक्र हम करना चाहेंगे।
1: ये जब फिल्म पूरी हो गई, और तब आपको तो मालूम है कि ट्रैक्स बनते हैं, आखिरकार जब बिल्कुल फिल्म बनने को आती है, मतलब जैसे ढक्कन उतारना होता है और भाप को निकलने देना होता है, तो ये सारे ट्रैक्स फिर एक ट्रैक पे जुड़े जाते हैं, तो हम राजकमल में पहुंचे, क्योंकि तब से जो बादशाह था रीमिक्सिंग का या साउंड री रिकॉर्डिंग का बादशाह था मंगेश देसाई
0: जी।
1: मतलब इतने वो मशहूर थे कि हर कोई हर जना चाहे कि मंगेश देसाई का सिक्का हमारे फिल्म पे लगना चाहिए री रिकॉर्डिंग, और यहाँ तक कि सत्यजीत रे भी कोलकाते से उनका टाइम लेते थे, उनका शेड्यूल देख के उनका टाइम बुक करके वो खुद अपनी फिल्में लेके पहुंच जाते थे बंबई राजकमल में। हाँ
0: जी जी,
1: इतना मंगेश जी का नाम था। तो अब स्पर्श में जाहिर है विद द काइंड ऑफ मनी दैट बासु वाज गिविंग अस एंड द काइंड ऑफ कटिंग कॉर्नर्स वी वर डूइंग, तो ये सवाल ही नहीं था, हमारा ट्रैक इतना भद्दा था कि मैं क्या बताऊं। मतलब एक जगह तो अब कहने में कोई बात नहीं है, लेकिन तब मैं कभी नहीं कहा ये, किसी को नहीं बताया कि कहीं कहीं जगहों पर पायलट ट्रैक भी हमने इस्तेमाल किया है, विच इज अनहर्ड ऑफ, ये कभी कोई नहीं करता फिल्म वाला जो किसी नाम का फिल्म वाला हो वो कभी नहीं चाहेगा कि पायलट ट्रैक मतलब भद्दा होता है, वो सिर्फ गाइडेंस के लिए होता है और फिर वो डबिंग किया जाता है, लेकिन डबिंग के लिए पैसे ही नहीं थे। तो एक दो जगह बिल्कुल हमने कि अब क्या करें, अब रहने दो पायलट ट्रैक, नहीं पता चलेगा करके हमने दो तीन जगह स्पर्श में पायलट ट्रैक रखा। तो किसी ने कहा इनके पास जाओ, मंगेश देसाई के पास। तो मैंने कहा पिटाई करवानी है। मंगेश देसाई तो उनका गुस्सा बहुत मशहूर था कि वो अगर बद्दा काम उनके पास ले जाओ ना तो वो ऐसे रीलों के डब्बे फेंकते थे बाहर से एकदम पूरा रील का रील बाहर। तो शर्म नहीं आती कैसे काम के लेके आए हो मेरे पास। मैंने कहा वो मंगेश जी रील तो नहीं मुझे भी बाहर फेंक देंगे। तो मैंने कहा उनके पास मैं कैसे किस मुंह से जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तो नहीं गए। फिर हमने जैसा तैसा किया, हमें भी बहुत अच्छे मिले। फिर बॉम्बे लैब में तब थे खन्ना साहब कर
0: जी जी
1: वेरी वेरी नाइस कॉडिस, तो उन्होंने काम किया। एनीवे फिर चश्मे बद्दूर तो गुल ने कहा कि जरूर मंगेश जी के पास जाना चाहिए। उन्होंने फिर डेट वेट पकड़ के हम लोग मिलने गए। तो मंगेश ने मुझे देखा, कहते फिल्म लेके आई है, पहली फिल्म लेके कैसे नहीं आई। तो फिर मैंने बिल्कुल कह दिया उनको साफ साफ, मैंने कहा मंगेश जी सुना है अच्छा काम नहीं हो तो आप बाहर रीले फेंकते। तो मैंने हमारा इतना भद्दा था साउंड का सारा पूरा सिलसिला कि मैंने हिम्मत ही नहीं की आपके सामने आने की। अच्छा ठीक ठीक चलो तो फिर बैठ जाओ, दोपहर से काम शुरू करते हैं। और फिर काम शुरू हो गया हमारा। और क्या बताऊं कि ऐसा मेल जो मतलब शायद ही मेरा किसी के साथ इतना मेल हुआ हो किसी व्यक्ति के साथ, किसी कलाकार के साथ, कि मतलब इट वॉज फैंटास्टिक एब्सोल्युटली। एक बताती हूँ मैं बहुत प्यारा किस्सा। वो जो चश्मे बद्दूर जिन्होंने देखे है उनको वो मालूम है कि वो जो दो दोस्त होते हैं वो लड़की के मिलने के चक्कर में बाहर पड़ते हैं। बड़ी बातें तो करते हैं कि हम यूं करेंगे वो करेंगे, और एक को तो बेचारे को वो समझती है कि ये प्लमर है और बेसिन दिखाती है बाथरूम वाली कि ये देखो चोक हो गई है, पानी नीचे नहीं जा रहा तो आप कुछ करो। और वो वहां से फिर भाग जाता है बड़ा पानी पानी होकर, शर्मिंदा होकर निकल जाता है। दिन भर फिर वो इधर उधर मटर गश्ती पार्क में दिन बताता है, क्योंकि ऐसा मुंह लेके घर कैसे जाएगा, घर मतलब कमरे में दो दोस्तों को मुंह कैसे दिखाएगा ना। तो वो फिर शाम को जाके फिर बड़ी गप्पे हाँकता है कि यों क्या त्यों क्या। हाँ, और फिल्म में एक असली किस्सा है जो कि वो जाता है, वो कहती है अरे आइए आइए कितनी देर आपका इंतजार कर रही थी। तो पहले तो खुश होता है कि हाँ मेरा इंतजार, कि ये देखो ना बाथरूम में कैसे पानी वगैरह वगैरह। और दूसरा जो किस्सा है फिर ये बताता है कि अरे फिर हमने पार्क में गए और फिर वो एक बड़ा तालाब है वो उसमें नैया एक थी और वो नैया में ये दोनों बैठ के टिपिकल फिल्मी गाना गाते हैं, इस नदी को मेरा आयना मान लो, इंदु ने बहुत सुंदर गाना लिखा। तो वो दोनों ये ड्यूएट गाते दो गाना, तो वो भी किया, मतलब वो जो उसकी फालतू की कहानी है मनगढ़ंत वो भी फिल्माई थी। तो मंगेश जी ने कहा कि सही ऐसा करते हैं, वो दोनों बार बगीचे में तो जाके बैठता है तो क्यों ना ऐसा करे कि पहली बार जब मतलब असलियत है, शर्मिंदा होता है बेचारा, तब हम बैकग्राउंड पे कौवा डालेंगे काँ, काँ, काँ। और दोबारा जब वो ये शोरो शायरी वाली और फला निमका ये बड़े प्यार मोहब्बत वाले किस्से सुनाता है तब हम कोयल डालेंगे बैकग्राउंड पे। क्यों कैसे रहा? मैंने कहा ओह गजब, मैंने कहा कैसे रहा फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया मंगेश जी क्या बात है। मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। फिर काम हमारा चालू हो गया और वाकई में उन्होंने कौवे ढूंढे फिर कोयल ढूंढी और वो साउंड ट्रैक पे आया, इतना मजे का लगा। और फिर करते करते जब हम सुन रहे थे एकदम से उन्होंने रोक दिया रिकॉर्डिंग प्लेबैक। तो मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ? कहते हैं सही हम दोनों इतने खुश हैं लेकिन शायद किसी के समझ में भी आएगा कि नहीं क्या पता। कि शायद ही किसी के जो बहुत ही समझदार कलाकार किस्म का आदमी हो उसके समझ में आए, लेकिन आम आदमी के समझ में आएगा कि नहीं क्या पता। कोई बात नहीं, तुम और मैं हम तो खुश हैं ना, इसी को कहते हैं कला का आनंद। हमने तो यह आनंद खूब लिया, कोयल कौवा ये वो, बहुत खुश रहे हम। तो दिस इज इट वर्थ इट। तो यू नो इट वॉज ब्यूटिफुल लाइक दिस। और दूसरी एक छोटी सी बात, उन्होंने कहा कि वो दोनों बंदे जो दोस्त उसके रवि एंड राकेश बेदी वो ये करते हैं बेचारे हीरो को अपने फारूक को कि वो लड़की बेकार है और वो हमारे साथ भी घूमी है क्या वो क्या, उसको बहुत ही वो करते हैं। फिर वो इतना मायूस हो जाता है सिद्धार्थ कि वो फिर उसके साथ झगड़ा करके वो उनकी बातचीत बंद हो जाती है वगैरह वगैरह, और फिर ये दोनों, क्योंकि है तो बेचारे अच्छे, वो बुरे थोड़ी ना है, तो वो उनको फिर बहुत अफसोस होता है कि अपना दोस्त बेचारा किस कदर बुरी हालत में है, तो अब क्या करे। वो दोनों बहुत मायूस है, और वो मद्रासी कैफे में है, डोसा वोसा इडली कुछ खा रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, और रेडियो पे गाना चल रहा है।

0: तो मंगेश जी ने कहा कि ये रेडियो पे गाना तो हम लगा रहे हैं उस सीन को, लेकिन इसमें अनाउंसमेंट भी होगी तो क्या मजा आएगा, है
1: वाह वाह
0: वो ये होता है ना कि आपकी पसंद वाला।
1: जी
0: मैंने कहा हाँ वेरी गुड आइडिया, ये जरूर जरूर। कहते फिर तुम ऐसे करो कि अच्छी डबर को बुलाओ और उससे अपन
1: अनाउंसमेंट
0: डबिंग
1: करवाइए।
0: अनाउंसमेंट करवा लेंगे। वो बोलो वो खास तरीका होता है उनका। मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है, मैंने रेडियो में काम किया है मुझे मालूम है। वो ओके फिर दोपहर के बाद करेंगे, लंच के बाद। फिर लंच हो गया, मैंने कहा अच्छा आई तुम्हारी डबर? मैंने कहा हाँ आई, कहाँ है? तो मैंने कहा नहीं वो मंगेशी मैं खुद ही करके देखती हूँ। तो उनका चेहरा इतना सा हो गया और मैं साफ साफ पढ़ पाई कि ये डायरेक्टर लोग ना समझते हैं कि सब कुछ वो कर सकते हैं, ये वो ये सब उनके जरूर दिमाग से गुजर गया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं क्या है वो एक तरीका होता है, उसका एक खास ये होता है वगैरह वगैरह। मैंने कहा नहीं मंगेश जी ऐसा करें कि आप देख लो, नहीं है तो बिल्कुल आप कह दो कि ये नहीं बात बनी नहीं, और फिर मैं कल सबसे पहले बुलाती हूँ, डोंट वरी। मैं बिल्कुल ये नहीं करूंगी कि नहीं नहीं मुझे ही ले लो। अच्छा चलो, फिर बड़ा बेमन से फिर मुझे स्टूडियो में धकेला उन्होंने, फिर मैं हेडफोन लगाए किया और फिर मैंने वो पढ़ा और बड़े नटखट ढंग से पढ़ा, बल्कि बीच में गलत भी किया और माफ कीजिए वगैरह ये भी कह के आगे गई, यू नो।
1: जी
0: और फिर वो सारा झुमरी तलैया वर ये सब
1: सब
0: सब
1: नाम
0: डाला
1: लिए।
0: और पूरी तरह मतलब उस अंदाज से। अब वहां इतना टाइम जो गुजारा था आकाशवाणी में तो यूं ही तो थोड़ी ना गुजारा था, तो वो मैंने सारा पूरा किया, फर्स्ट टेक ओके हो गया। और फिर वो भारी भक्कम दरवाजा खोल के मैं जैसे बाहर आई, दरवाजे में मंगेश जी, उन्होंने दोनों हाथ जोड़े, कहते हैं मोहतरमा तुम तो कमाल की चीज निकली, कहते हैं वाह वाह क्या बहुत खूब।
1: क्या बात है। लेकिन ये एक तरह से ट्रिब्यूट टू विविध भारती हो
0: बिल्कुल,
1: गया।
0: अब विविध भारती पे जो मुलाकात दे रही हूँ तो कुछ बात तो करनी चाहिए ना, और जो वो अच्छी बातें याद है वो तो जरूर शेयर करनी चाहिए,
1: जी
0: है नहीं?
1: बिल्कुल। इस फिल्म का संगीत भी बहुत मायने रखता है,
0: हाँ बहुत बहुत
1: चश्मे
0: सुंदर है
1: बतूर
0: ना,
1: जी।
0: बहुत संगीत और गीत भी। हाँ गीत मतलब देखो ये मैं हमेशा कहती हूँ कि राइटर डायरेक्टर एंड म्यूजिक डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट, इनका अगर आपस में खूबसूरत मेल हो जाए तो क्या बात है। जैसे अब इंदु जी को मैंने कहा कि इंदु ऐसा है को वो बताती है कि मैं फला जगह संगीत क्लास के लिए जाती हूँ,
1: जी
0: और वो उसका बराबर जहन में उसको एब्सॉर्ब करता है
1: जी
0: और वो वहां पहुंच जाता है। और मैंने कहा वो अपने सुंदर मोटरसाइकिल है उसकी एक काली सी,
1: हाँ
0: तो गाना कुछ ऐसा करो कि जो उसमें मजा आ जाए कि तो वो साथ जुड़ जाए। तो फिर काली घोड़ी द्वार खड़ी, और
1: वाह
0: काली घोड़ी मतलब उसकी मोटरसाइकिल, और वो काली घोड़ी पे गोरा सैया चमके,
1: क्या
0: क्या
1: शानदार लाइन है।
0: और वो इतना, और चकित भई सगरी नगरी, तो वो बस स्टॉप पे लोग सब ऐसे ऐसे देखते कि अरे ये कहाँ गई
1: हाँ
0: वगैरह, मतलब पूरा वो बैठ गया इतना। मतलब ये होता है जब मेल होना लिरिसिस्ट, फिर
1: जी
0: राजकमल का म्यूजिक, और
1: हाँ
0: फिर गाने वाले, और
1: हाँ
0: फिर मेरे एक्टर और मैं।
1: कमाल, ये गाना सुनते हैं।
0: जी क्या बात।

0: घोड़े दौड़ पड़े, काले घोड़े दौड़ पड़े, काले घोड़े दौड़ पड़े।
1: इस जैसा गाना जो पटकथा के अंदर इतना ज्यादा एम्बेड हो गया।
2: हाँ।
1: ये जो बात आपने बताई कि मोटरसाइकिल और वो और इंदु जी ने जिस तरह से उस कहानी में उस गाने को पिरोया, एक कालजयी गाना बन गया। राजकमल जी को भी बड़ा श्रेय जाता है इतने बढ़िया गाने बनाने का।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: राजकमल जी ने अपना श्रेष्ठ काम किया इस फिल्म में
2: मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, इसमें कोई शक नहीं। और वो भी कितना अच्छा और कितना नेक गाना है, कहाँ से आए बदरा, इतना दुख भरा, इतना ये। और वो तो टीचर तो गाए चले जाते हैं क्योंकि उनको क्या लेना देना, लेकिन ये रो पड़ती है गाते गाते
1: जी, तो आंसू बह रहे हैं उसके। हाँ, और पूरा एक माहौल आप बनाते हैं उसमें।
2: और उसके भी अंतरे जो है म्यूजिकल बीच के है प्रीलूड्स, उसमें फिर इसको दिखाया है कि ये भी उदास बेचारा दीवाना जैसे घूम रहा है सिद्धार्थ, तो वो गाने का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल हो गया। आई लव यूजिंग सॉन्ग्स टू टेक द स्टोरी फॉरवर्ड।
1: बिल्कुल, ये तो कथा में भी आता है। हाँ, उसकी बात आगे करेंगे। बल्कि एक बहुत ही तेज तर्रार गाना इस फिल्म में था और वो था प्यार लगावत। वो तो एकदम अलग शैली का गाना है।
2: हाँ, वो भी अगेन वही बात है कि जब म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर इनका आपस में मेल हो और समझौता हो और एक दूसरे को समझे और एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करे दोनों, तो क्या होता है ये गाना साबित करता है। क्योंकि मैंने फिर ये कहा राजकमल को कि ये तीनों जने गाना गाते हैं मोटरसाइकिल पे घूमते। हाँ, तीनों मुस्टंडे, तीनों अवलिया हैं, अपने अपने अलग ढंग के आदमी। मैंने कहा वो क्यों एक जैसा ही गाएं?
1: बिल्कुल।
2: हाँ, वो अपना अपना गाने दो ना उनको। तो राजकमल ने कहा मतलब क्या? मैंने कहा ये कुछ और गा रहा है, वो कुछ और गा रहा है, वो कुछ, मतलब उनका सुर भी और होगा, उनके लफ्ज भी और होंगे। कहते नहीं नहीं ये तो बड़ा झमेला नहीं हो जाएगा? मैंने कहा कोशिश करके देखते हैं। और कोशिश की उन्होंने और क्या कमाल की। वो जो है ना प्यार लगावट प्रणय मोहब्बत,
1: हाँ,
2: वो तीनों अलग अलग अपना गाते हैं।
1: बिल्कुल,
2: हाँ?
1: बिल्कुल।
2: और इतना वो मजे का लगता है। दैट्स व्हाई वो जो आज भी लोग कहते हैं कि वो फिल्म आज भी फ्रेश है, ताजगी है उसमें, ये ऐसे गानों की वजह से तो है।
1: बिल्कुल। तो ये गाना इस अच्छा, इंटरव्यू में प्यार लगावट
2: भी सुनोगे? ओके।

0: मैं एक चीज पर और ध्यान खींचना चाहता हूं और वो है ओपनिंग सीक्वेंस ऑफ चश्मे बद्दूर। जिस तरह से फिल्म ओपन होती है
1: हाँ,
0: वो बड़ा शानदार बना है।
1: नामावली
0: जी, नामावली, जिसमें
1: टाइटल्स।
0: वो
1: हाँ
0: एनिमेशन वगैरह है।
1: हो,
0: जी
1: वो उसका पूरा पूरा क्रेडिट आप राम मोहन को दे दो। राम मोहन एंड ही डिड कथा एंड ही डिड चश्मे बद्दूर दोनों।
0: हाँ, और
1: हाँ
0: कथा में वो चूहा बिल्ली।
1: हाँ यस, टाइगर और ये वो। और कथा
0: हाँ
1: में भी तो जैसा हमारा निर्माता का जब आता है तो सुरेश जिंदल को आप देखा है कभी? ये बाल उनके बिल्कुल लगे जैसा लायन है सींग। हाँ, तो वैसे उन्होंने सींग बनाया उसके लिए, तो वो बिल्कुल लगे ये
0: लाइन है।
1: बराबर सुरेश जिंदल है। और डायरेक्टर के लिए उन्होंने बिल्ली मतलब मैं और वो नाखून ऐसे करके जाती है, तो मतलब इतना। और दीप्ति के लिए खूबसूरत सी गिलहरी और कान में उसके वो फूल,
0: फूल।
1: दासवंदी का फूल। और विनी के लिए, विनी का इंट्रोडक्शन था फिल्म में, तो एक अंडा ऐसा फूटता है और अंदर से छोटा सा चूजा बाहर निकलता है, चू चू चू चू चू चू, नया परिचय विनी परंस पे। और सैनी हमारा गुस्से वाला कैमरामैन, वो टाइगर आता है शेर हा करके कैमरा लेके, ऐसे बहुत बहुत मजे के ये। और बीच बीच में जाहिर है कि कछुआ और खरगोश, इनकी रेस तो फिर चलती रहती है, चलती रहती है।
0: बिल्कुल।
1: तो
0: तो उसमें सारे अलग
1: भी
0: अलग
1: क्या, और
0: एनिमेशंस।
1: चश्मे बद्दूर में तो और भी कमाल किया कि उन्होंने एक्चुअल फोटोग्राफ्स इस्तेमाल किए। गांधी जी, बर्ट्रेंड रसेल वगैरह ऐसे लोग लेके, मतलब एक तरह की ये हिमाकत ही हुई ना ऐसे लोगों को लेके उन्होंने इतना खुश मिजाज बनाया पूरा टाइटल किस्सा कि क्या बताओ
0: उसमें फिर आपका हाथ आता है जिसमें नेल पॉलिश लगी है लाल रंग की।
1: जी बिल्कुल।
0: तो वो सुंदर है, लेखक निर्देशक है ना, इस तरह से पूरा फिर आपका नाम आता है। सुंदर, मतलब वो ओपनिंग भी कमाल की थी। वीरेंद्र सैनी का जिक्र हमेशा बहुत जगह आया बातचीत में और वो आपके तकरीबन स्थायी कैमरामैन रहे।
1: हो, उन्होंने स्पर्श और चश्मे बदूर और कथा सैनी ने की, फिर दिशा के साथ वो नहीं आए। बट सैनी अच्छे कैमरामैन भी थे, दोस्त भी बहुत अच्छे थे, एंड ही वाज वन पर्सन हु वुड कॉल अ स्पेड अ स्पेड। और कभी भी उन्होंने मुझे अच्छा लगे इसलिए कुछ नहीं कहा
0: कोई
1: कि
0: टकराव होता
1: बहुत बार, बहुत बहुत
0: था?
1: बार, दिन में एक दो बार तो जरूर होता था। लेकिन बहुत सही आदमी था, बहुत काम से लगाव वाला आदमी था, और बहुत मतलब बड़े अच्छे दिन गुजारे हमने, बहुत आर्टिस्टिक ढंग के काम किए और बहुत अच्छा रहा वो सब पूरा माहौल, और उसमें सैनी का बहुत हाथ था।
0: जी।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले।

रंग तिरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले हरिओम शरण की आवाज में ये भजन आपको सुनवाते हैं।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय
3: अलका याग्निक और हरिहरन की आवाजों में तुम आए, इस एल्बम का गाना जावेद अख्तर के बोल राजू सिंह का संगीत।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत है जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आँखों की आँखों में इशारा हो गया।
3: पंकज उधास की आवाज़, शब्दकार मोहम्मद अलवी, संगीत पंकज उधास का, एल्बम मुस्कान।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाजें RS हरियाणवी रतन के बोल हैं। संगीत अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन का एल्बम।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। वसुंधरा दास की आवाज में समीर का लिखा हुआ गाना, संजीव दर्शन का संगीत, एल्बम तलाश।

काले वस्त्र पर मिलने के सवाल, मिलने की जब रिक्वेस्ट की, डेट मांगी कि लेट्स मीट समवेयर, सवाले वस्त्र पर उनको उदू, उदू है आपका राइवल जो है, कंपटीटर, हर फिल्म में एक जो विलन होता है वो उदू होता है, दुश्मन को भी कहते हैं उदू, सवाले वस्त्र पर उनको उदू का खौफ है इतना।

जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल आपने सुनी, शायर अमीर मिनाई, संगीत जगजीत सिंह का, एल्बम खामोशी। और अब अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गाना, हसरत जयपुरी के बोल, दिलीप वर्मन का संगीत, एल्बम रात।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

रंग तरंग कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए कमाल खान की आवाज, संगीत भी इन्हीं का है, बोल महबूब के और एल्बम कल रात।

पहला नशा इस एल्बम का गाना सुनिधि की आवाज में, नक्शला एलपुरी के बोल, संगीत है ललित का। ये है आज के रंग तरंग कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज 3 दिवसीय ओडिशा यात्रा का कार्यक्रम है। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल और दतिया सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है, जहां 20 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज भी बाधित रही। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की। विपक्ष के सदस्यों ने फिर नीट पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया। विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
1: सदन चर्चा संवाद के लिए, अपने विचार अभिव्यक्ति रखने के लिए, अपने मत रखने के लिए अगर असहमति है तो भी सदन के अंदर अपने मत विचार से अभिव्यक्त की जाती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करें। नियोजित तरीके से सदन बाधित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सहारोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया है। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम की धुन के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में

0: भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीतकार शकील बदायूनी के लिखे हुए गाने। पहला जो गीत है ये 14वीं का चांद फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज, संगीत रवि का।

अंतराल के बाद हम उपस्थित हुए हैं यादों की महफिल इस कार्यक्रम के बाकी गानों को लेकर। लीजिए अब सुनिए गृहस्थी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजें, शकील बदायूं के बोल, संगीत है रवि का।

0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा। सखी सहेली?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे।
2: सखी सहेली
3: गीतकार शकील बदायूनी के लिखे हुए गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। फूल और पत्थर इस फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, संगीत है रवि का।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत है जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए उड़न खटोला फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीत नौशाद का।
1: चले आज तुम जहां से

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
3: गीतकार शकील बदायूनी के लिखे गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में, संघर्ष फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में।

बिन बादल बरसात, ये उस फिल्म का नाम है जिसका गीत अब आप सुनेंगे हेमंत कुमार की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल, संगीत हेमंत कुमार का।

गीतकार शकील बदायूनी के लिखे गाने आप सुन रहे हैं यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीत रवि का।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आज का यादों की महफिल ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की
1: समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट पेपर लीक को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर गतिरोध के कारण आज बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। श्री राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी और हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर लोकसभा की कार्यवाही भी बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। लोकसभा अध्यक्ष ने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर किए जा रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की और सदन की कार्यवाही जारी रखने का आग्रह किया, लेकिन गतिरोध जारी रहने पर सदन को पहले 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
2: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखा भाई रबारी और मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। कर्नाटक में आज शाम लोकभवन में 20 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। डीके शिवकुमार ने 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके अलावा 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। आज 20 मंत्रियों के शामिल होने पर मंत्रिमंडल की अधिकतम क्षमता 34 हो जाएगी। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में संयुक्त राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। संसद के दोनों सदनों ने भी आज राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में उत्कलमणि पंडित गोप बंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। गोप बंधु दास ओडिशा के एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ओडिया दैनिक द समाज की भी स्थापना की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Both houses of parliament have been adjourned till 2 p.m. amid opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protests over the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment at 12 noon, Minister of Statistics and Programme Implementation Rao Inderjeet Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. The bill seeks to provide for a comprehensive statutory framework to the Indian Statistical Institute to excel as a globally recognized centre in statistical sciences and allied fields. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Bankers Books Evidence Bill 2026. It aims to provide for law relating to evidence with respect to bankers' books and align it with contemporary digital banking practices. The opposition members came to the well demanding Union Home Minister Amit Shah's reply over the alleged police action during students' protest over the NEET issue. The presiding officer urged the members to go back to their seats. As the pandemonium continued, the Lok Sabha was adjourned till 2 p.m. The Rajya Sabha has also been adjourned till 2 p.m. over the same issue. When the upper house assembled at 11 a.m., Chairman C.P. Radhakrishnan congratulated Team India for its outstanding performance at the Commonwealth Games held at Glasgow.
4: India secured an impressive fourth position in the Commonwealth Games medal tally, winning 39 medals overall. Scripted history by registering their best ever performance at the Commonwealth Para Games. The remarkable achievement has brought immense pride and honor to the nation and bear testimony to the growing excellence of Indian sportspersons.
3: Union Minister Sanjay Seth and an MP from Jharkhand has alleged serious irregularities in the recruitment process for the Jharkhand Public Service Commission examination, claiming that deserving candidates were denied selection while candidates with significantly lower marks were selected. Talking to Akashvani News, he criticized the Jharkhand government and said no state government representative had met the protesting students despite the ongoing situation. The counting of votes for the by-elections in three assembly constituencies is underway. In Bihar's Bankipur Assembly constituency, Jan Suraj Party candidate Prashant Kishore is leading by 21,941 votes. In Gujarat's Manjalpur Assembly constituency, BJP candidate Satyendra Bhai Patel is leading by 37,542 votes. In Madhya Pradesh's Datia Assembly constituency, Congress Party candidate Ghanshyam Singh is leading by 1,786 votes. Polling for the three assembly constituencies was held on the 30th of last month. A Delhi court today acquitted former Wrestling Federation of India chief Brijbhushan Sharan Singh and co-accused Vinod Tomar in a sexual harassment case filed by women wrestlers. Additional Chief Judicial Magistrate Ashwini Pawar acquitted ex-BJP MP Brijbhushan and Vinod Tomar and former Wrestling Federation of India Assistant Secretary in the case. The court had reserved the order for today after completion of the final arguments in the case lodged by six women wrestlers. In Odisha, the flood situation is steadily improving with water receding in all major rivers and their tributaries, including the Mahanadi. The Hirakud Dam authorities have reduced flood water discharge after a decline in reservoir inflow. Pakistani Armed Forces' brutal attack on peaceful protesters continues in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Violent clashes were reported between protesters and security forces, with the Human Rights Council of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir alleging a significant rise in casualties. According to the Human Rights Group, over 80 people were killed in the firing on protesters by security forces. Negotiations between the United States and Iran are scheduled to take place today through intermediaries. Speaking to reporters on board Air Force One, U.S. President Donald Trump confirmed that discussion channels were active. He revealed that diplomatic engagements involving Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar and Iran led him to halt what was originally planned as a massive attack. President Trump further indicated that an agreement could be reached regarding the management of the Strait of Hormuz. And to that we end this news bulletin.

0: का आंदोलन और तेज छात्रों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन अनशन, सीबीआई जांच की मांग पर अड़े। जेपीएससी अनियमितता मामले में सीआईडी का कई ठिकानों पर छापा, पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से चौथी बार हो रही पूछताछ। पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी आस्था, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं। झारखंड पर्यटन को नई सौगात, दलमा में इको रेस्ट हाउस शुरू, पर्यटकों के लिए दलमा में खुला नया इको रेस्ट हाउस। और शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर रामगढ़ के लुकैयाटांड में होगा श्रद्धांजलि कार्यक्रम, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे गुरुजी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण। और अब समाचार विस्तार से। जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का सत्याग्रह आंदोलन आज 10वें दिन भी जारी है। रांची के मोराबादी स्थित धरनास्थल पर छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। सीबीआई जांच की मांग कर रहे आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं दिया जाता, तब तक सत्याग्रह और भूख हड़ताल जारी रहेगी। जेपीएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में झारखंड सीआईडी और रांची पुलिस ने राज्य के कई जिलों में छापेमारी की है। रांची, धनबाद, हजारीबाग, पलामू और बिहार के कुछ स्थानों पर कोचिंग संस्थानों और आरोपियों के ठिकानों पर कार्रवाई की गई। जांच एजेंसियों ने यह कार्रवाई मामले में गिरफ्तार अभय तिवारी से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर की। रांची के नामकुम और धुरवा सहित कई इलाकों में देर रात तक तलाशी अभियान चला। पुलिस मामले से जुड़े दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाने में लगी है तथा जांच जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कथित अनियमितता के मामले में आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते आज चौथी बार सीआईडी के समक्ष पेश हुए। जांच एजेंसी अन्य आरोपियों से पूछताछ और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर उनसे सवाल कर रही है। सीआईडी का कहना है कि साक्ष्यों के सत्यापन के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने पर भाजपा अड़ी हुई है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सीआईडी जांच पर सवाल खड़े किए हैं।
1: छात्र लगातार लंबे समय से बारिश में, धूप में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन राहुल बाबा और प्रियंका दीदी की नजरें इधर नहीं जा रही। इसे कहते हैं दोगलापन की राजनीति। नीट के मुद्दे पे ये मुखर थे, लेकिन इनके राज में जब पेपर लीक हुआ तो ये मौन साध लिया। पर भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से छात्रों के साथ खड़ी है। एक वृहत आंदोलन की हम शुरुआत करेंगे।
0: वहीं कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है, मामले में गिरफ्तारी भी हुई है।
2: जेपीएससी के मामले में सरकार ने पूरी तरह पारदर्शिता के साथ कार्रवाई, और सीआईडी सरकार का अंग नहीं है, राज्य का अंग है। प्रतिपक्ष के नेता हैं बाबूलाल जी, जब उनको राज्य के जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है तो इस राज्य की जनता को मोदी जी की जांच एजेंसी सीबीआई पर कैसे भरोसा हो। हमने गिरफ्तारी भी सुनिश्चित, हमने एजेंसियों पर कार्रवाई भी की है।
0: सावन माह की पहली सोमवारी पर रांची सहित झारखंड के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। रांची के पहाड़ी मंदिर, देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम, कोडरमा के झरना कुंड धाम और खलारी कोयलांचल समेत कई शिव मंदिरों में सुबह से ही जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। चतरा जिले में बिरसा प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा बीमा योजना के तहत करीब 2% किसानों ने ही फसल बीमा कराया है। जिला सहकारिता पदाधिकारी लोकनाथ महतो ने बताया कि सरकार ने बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना निकटतम प्रज्ञा केंद्र पर जाकर फसल बीमा कराएं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। ऐप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आने वाले पर्यटकों के लिए मकूला कोचा में अत्याधुनिक

0: इको रेस्ट हाउस का उद्घाटन किया गया। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने बताया कि पर्यटन दलमा वाइल्ड लाइफ और झारखंड पर्यटन विकास निगम की वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग करा सकेंगे। राज्य सरकार करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से दलमा क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है।
1: वन विभाग जो है सरकार के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट के प्रमोट करता है, उसके लिए अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ आने वाले पर्यटक है। अलावे इसको विभिन्न जगहों पर निगम के डेवलपमेंट के लिए नैयोनिया में ग्लास ब्रिज की बात चल रही है, ससरातू में ग्लास ब्रिज की बात चल रही है, आने वाले समय में योजनाएं पाइपलाइन में।
0: लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्तावित परिसीमन तथा आदिवासी राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर 30 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता महाजुटान रैली आयोजित की जाएगी। आदिवासी नेता और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने बताया कि इसे लेकर 6 से 18 अगस्त तक राज्यव्यापी जन जागरण अभियान चलाया जाएगा।
2: 30 अगस्त को आदिवासी एकता महाजुटान रैली है। 4 तारीख के बाद में पूरे झारखंड का दौरा करेंगे। परिसीमन के बारे में लगातार हम लोग कई मीटिंग वगैरह कर रहे हैं। परिसीमन का विरोधी हम नहीं है, बल्कि ये संवैधानिक चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आदिवासियों का सीट घटे नहीं, आदिवासियों का सीट बढ़े।
0: झारखंड पुलिस के अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी ने बोकारो जिले से लापता 3 लोगों की तलाश के लिए राज्य भर में ह्यू एंड क्राई नोटिस जारी किया है। सीआईडी ने सभी जोनल आईजी, रेंज डीआईजी और जिला पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नोटिस के बाद देश भर की पुलिस को भी तीनों की तलाश में सहयोग करने को कहा गया है। शेयर बाजार आज सुबह के सेशन में घरेलू इक्विटी इंडेक्स में लगभग 0.8% की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 654 अंक चढ़कर 78,748 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 211 अंक बढ़कर 24,595 पर आ गया। सराफा बाजार राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,700 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपए प्रति किलो है। रामगढ़ के निमरा और लुकैयाटांड में शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। झारखंड आंदोलन के पुरोधा दिवंगत शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि कल उनके पैतृक गांव रामगढ़ के निमरा लुकैयाटांड में मनाई जाएगी। इस अवसर पर भव्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई मंत्री और नेता शामिल होंगे और लुकैयाटांड स्थित सोना सोबरन स्कूल के प्रांगण में स्थापित गुरुजी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ग्रामीणों ने तैयारियों की जानकारी दी।
3: 4 अगस्त को हमारे गार्जियन विश्वम गुरु जी का प्रथम पुण्यतिथि मनाने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जिले भर नहीं पूरे राज्य भर पूरे भारत वर्ष का एक तमाम यहाँ पे लोग लुकैयाटांड में पहुंचेंगे।
0: थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 14 से 16 अगस्त तक आयोजित होने वाली थाईलैंड ओपन कराटे चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के ट्राइबल एंड माइनॉरिटी डेवलपमेंट कमीशन के चेयरमैन रेंशी सुनील किस्पोट्टा 12 अगस्त को थाईलैंड रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय कराटे खिलाड़ियों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बढ़ती भागीदारी देश के लिए गौरव की बात है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेपीएससी परीक्षा मामले में छात्रों का आंदोलन और तेज, छात्रों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन अनशन, सीबीआई जांच की मांग पर अड़े। जेपीएससी अनियमितता मामले में सीआईडी का कई ठिकानों पर छापा, पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से चौथी बार हो रही पूछताछ। पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी आस्था, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं। झारखंड पर्यटन को नई सौगात, दलमा में इको रेस्ट हाउस शुरू, पर्यटकों के लिए दलमा में खुला नया इको रेस्ट हाउस और शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर रामगढ़ के लुकैयाटांड में होगा श्रद्धांजलि कार्यक्रम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे गुरुजी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

प्रेम पर्वत फिल्म का ये गाना आपने सुना, जानिसार अख्तर का लिखा हुआ ये गाना है। एक हमारे साथी की बात है कि एक अकेला इस शहर में, जो गीत हमने कुछ देर पहले आपको सुनवाया था, इसके बारे में लिखा है कि गीतकार गुलजार ने शहरी अकेलेपन को बेहद सारे लेकिन दिल को चीर देने वाले शब्दों में ढाला है। इन उम्र से लंबी सड़कों को हमने तो ठहरते देखा नहीं, जैसी पंक्तियां शहर की रफ्तार और इंसान की बेबसी को बेहतरीन तरीके से बयां करती है। जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है, महानगरों के उस मानसिक तनाव और खालीपन को दिखाता है। एक साथी ये लिखते हैं कि हमारा तो सफर ऐसे ही विविध भारती के संग कटता रहता है, काफी अच्छा लगता है सुनते हुए विविध भारती, दिन निकल जाता है। एक साथी ने ये भी लिखा है कि जिंदगी उतार चढ़ाव से भरा हुआ, बहुत बार परिस्थितियां डगमगाती है, खासकर जब लोगों का नहीं भगवान के भरोसे पर रहता है, पर कुछ ऐसी होनी होती है कि जिससे विश्वास मजबूत ही हुआ है। कठिन समय में भगवान पर विश्वास और अधिक मजबूत होता चला जाता है। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है, देखिए अब वो जो हम पढ़ रहे थे वो मैं दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए कुछ देर बाद और आपके जो कमेंट्स हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। दूरिया फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं, अनुराधा पौडवाल और भूपिंदर सिंह की इसमें आवाजें हैं, सुदर्शन फाकीर के बोल हैं, संगीत जयदेव का। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये गाना है। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि एक नई सुबह देखने को मिली। अपने मन की व्यथा को पूरे मन से समर्पित करते हैं और आत्मविश्वास से भर उठता है मन और शांति का एहसास होता है। सुख में भी ईश्वर को याद करना बहुत जरूरी होता है। एक हमारे साथी की ये बात, जो प्रेम पर्वत फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया था उसके बारे में लिखा है कि बहुत मधुर, दिल को स्पर्श करने वाली देशी धुन पर आधारित प्रेम पर्वत का गीत मानो प्रकृति के घेरे में खड़े होकर सुन रहे हैं, मेरे सर्वकालिक पसंदीदा गानों में से एक है। और एक साथी लिख रहे हैं कि संगीतकार जयदेव का संगीत शोर नहीं बल्कि आत्मा की धीमी सी धुन था। उन्होंने कम फिल्मों में संगीत दिया लेकिन जो भी रचनाएं दी वे समय के साथ और भी अमर होती चली गई। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी कि ईश्वर पर मेरा अटूट विश्वास है, जब भी मुश्किल में होती हूँ तो सहारा ज़रूर देते हैं, हर मुश्किल से वही तो हमें बाहर निकालते हैं। और बाकी जो साथी हैं हमारे, उन्होंने ये बात लिखी है कि आज सावन का पहला सोमवार है तो हम ईश्वर की आराधना में लगे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद आपका। और अब मुझे जीने दो इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, सही लुधियानवी के बोल। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

वहीदा रहमान और सुनील दत्त पर फिल्माया गया ये गाना। हमारे एक साथी की बात है कि जिंदगी मेरे घर आना ये केवल एक गीत नहीं बल्कि जीवन का स्नेहिल निमंत्रण है। ये याद दिलाता है कि खुशियां अक्सर दस्तक देती है। इस गीत की हर लाइन इतनी प्यारी है कि इस गीत को पूरा सुने बिना तक कान वहीं पर लगे रहते हैं। और हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि धीर गंभीर स्वर में खूबसूरत अंदाज में गाया हुआ दूरियां फिल्म का जो गाना है ये बहुत ही अर्थपूर्ण गाना है। और एक साथी ने ये बात लिखी कि दूरियां फिल्म का ये जो गाना है ये मेरी लिस्ट में भी शामिल था और उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया है। और एक साथी की ये बात है कि प्रसिद्ध संगीतकार जयदेव जी की जयंती है। जयदेव जी के संगीत में दैनिक जीवन में आने वाले विभिन्न पायदानों परिस्थितियों को संगीत में ढाला है। उनके गीत हमें से हमें सुकून मिलता है। उनके गीत कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। जब हमें इश्क सताता है तो हंस लेता हूं। चले आ रहे हैं किनारे किनारे ये उनके जो गीत हैं उनकी कुछ कुछ लाइनें उन्होंने लिखी है। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे मैं एक शाम चुरा लूं गर बुरा ना लगे। मंजू जी हमें तो मुंबई आकर ऐसा ही लगा बिल्कुल भी हमें अजनबी नहीं लगा। जी हाँ ये दूसरे शहर से जब मुंबई आए तो मुंबई के बारे में इन्होंने बात लिखी। और एक साथी ने यह बात लिखी कि आज की इबारत में सुकून और आश्वासन की ये जो बातें हैं ये हमें बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद आपका। चलिए अगला गाना सुनवाते हैं। रेशमा और शेरा इस फिल्म का ये गाना है और लता मंगेशकर की इसमें आवाज है। वहीदा रहमान और सुनील दत्त पर फिल्माया गया ये गाना। गाना काफी लंबा है शायद हम ये गाना आपको पूरा तो नहीं सुनवा पाएंगे लेकिन जितना भी हम सुनवा पाएंगे आप सुनिए।

रेशमा और शेरा इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, वहीदा रहमान सुनील दत्त पर फिल्माया गया। एक हमारी जो साथी हैं वो लिख रही हैं कि लिखते हैं कि जयदेव जी के गानों में शर्मा बंधुओं का एक भजन नुमा जो गाना है, जैसे सूरज की गर्मी में तपते हुए मन को मिल जाए तरुवर की छाया। इस गाने में इतनी कशिश है कि कोई भी व्यक्ति 3 मिनट के लिए रुक कर इसे सुनता ही है। जयदेव जी ने सरल लेकिन आकर्षक धुन बनाई है और सभी की तरह मुझे भी ये गाना बहुत पसंद है और आज के कार्यक्रम में ये जो गाना है ये बजने वाला है। जी हाँ, अगला गीत है ये और भजन नुमा गीत आप ज़रूर सुनेंगे। एक हमारे साथी की बात है कि अपना स्थान कभी नहीं भूलता। मेरी बेटी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए मुंबई आई, फिर वहाँ ही उसकी जॉब भी लग गई, फिर शादी भी मुंबई में हो गई, लेकिन अभी भी उसका मन नहीं लगता। मुंबई की भागम भाग वाली लाइफ और फ्लैट वाली लाइफ में वो बहुत मायूस रहती है। हमारे यहाँ पंजाब में बड़े घर और ज़्यादा भागम भाग नहीं है तो यहाँ उसे पसंद आता है। जी हाँ, ये तो सही बात है कि पूरा जीवन या फिर यूं कहें कि शुरुआती जीवन जहां हमने बिताया है वही जगह और वही कल्चर, वही बातें हमें बड़ी पसंद आती है। तो आप कोशिश करें अपनी बेटी को या तो एडजस्ट करने के लिए या फिर से पंजाब लाने के लिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। और एक बात हमारे साथी की ये है कि आज के जो गाने हैं वो शांति से सुनने लायक है और वही मैं कर रहा हूँ, इसलिए एकदम शांति से सुरीला सफ़र ये कार्यक्रम मैं सुन रहा हूँ। और एक साथी की ये बात कि मुझे जीने दो फिल्म का जो गाना आपने सुनाया वो मेरी लिस्ट का 5वां गीत था जो आपने शामिल कर लिया है, बहुत धन्यवाद आपका। जी आपका भी धन्यवाद कि आप ये बातें लिखते हैं हमें और इनकी जानकारी देते हैं। चलिए, परिणय फिल्म से ये रचना शर्मा बंधु की आवाज़ें हैं।

0: ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरा।
1: एक साथी की ये बात है कि जयदेव जी चले गए, लेकिन उनके सुर आज भी हवा में घुली उस प्रार्थना की तरह है जो हर सुनने वाले के दिल को एक अनकही शांति से भर देते हैं। उन्होंने कभी भी लोकप्रियता की चमक के पीछे अपने संगीत की आत्मा को नहीं खोया। उनके लिए हर धुन एक साधना थी, हर गीत एक प्रार्थना और हर स्वर ईश्वर को समर्पित एक दीपक। इसके लिए उनके गीत आज भी समय की धूल से अछूते हैं और हर पीढ़ी के मन में उसी ताजगी और पवित्रता के साथ गूंजते हैं। और एक साथी की ये बात है, रेशमा और शेरा फिल्म का जो गीत हमने आपको सुनवाया था उसके बारे में लिखा है कि जयदेव जी का संगीत में क्लासिक टच इसमें साफ झलकता है और लता जी की आवाज़ का तो क्या ही कहना, और मेरे लिस्ट का ये छठा गीत था जो शामिल हो गया। और लिखा है कि बाल कवि बैरागी की रचना, जयदेव जी का संगीत, लता जी की मधुर आवाज़ और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया गाना, ये बड़ा ही एक अद्भुत एक संयोग है। और एक हमारे साथी की ये बात है कि मुझे मेरी स्कूल की जो प्रेयर थी यानी कि प्रार्थना बहुत अच्छी लगती थी, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, और इस तरह ये जो प्रार्थना थी ये हमें बड़ी ही प्रिय लगी। और एक साथी लिख रहे हैं कि अपनी निरंतर नई विषय वस्तु पर संचालन के कारण सुरीला सफर कार्यक्रम सबसे आकर्षक लगने वाला कार्यक्रम है और VBS का सबसे सफल लोकप्रिय कार्यक्रम अब ये बन गया है, नजर ना लगे इसकी गरिमा बरकरार रहे। और एक साथी लिख रहे हैं, जयदेव जी का संगीत मनमोहक हृदय स्पर्शी होता है, संभावित चयन का जो ये गीत है ये आपने शामिल किया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, दो बूंद पानी इस फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। दो आवाजें, मुख्य आवाजें इसमें हैं, वो किसकी है ये आप हमें बताइए, सिमी गरेवाल और मधु चंदा पर फिल्माया गया ये गाना।

मीनू पुरुषोत्तम, परवीन सुल्ताना और साथियों की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि ये जो इबारत है ये केवल ईश्वर

प्रार्थना का वर्णन नहीं करती बल्कि मनुष्य के भीतर बसे उस अटूट विश्वास की कथा कहती है जो सबसे कठिन राहों में भी उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ता। अजनबी शहर, भीगी रात, उफनती धाराएं और चांदनी की कसक जीवन के उन क्षणों के प्रतीक है जब हर दिशा मौन हो जाती है। ऐसे समय में प्रार्थना शब्दों से अधिक आत्मा का संवाद बन जाती है जो भय को धैर्य और प्रतीक्षा को विश्वास में बदल देती है। यही आस्था अंततः मन को यह अनुभूति कराती है कि हर अंधेरी रात की नेति उजाला है और हर अधूरी यात्रा के अंत में एक ऐसा सवेरा प्रतीक्षा करता है जहां पीड़ा स्मृति बन जाती है और जीवन फिर से मधुर संगीत की तरह बहने लगता है। और हमारे साथियों ने ये बातें लिखी है कि परिणय का जो शर्मा बंधु का गाना भी है, भजन भी है और निर्गुण भी है, वाकई सुनते ही मानसिक ऊर्जा जागृत हो जाती है। संशय मन को शक्ति और सुकून देने वाली सर्वश्रेष्ठ रचना है ये। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि जैसे सूरज की गर्मी से भजन प्रफुल्लित हो गया, खूब खूब आभार, मन को बहुत ठंडक हो गई इस भजन को सुन करके। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि सूरज की गर्मी से शर्मा बंधु द्वारा गाया गया, ये एक प्रोग्राम में इनसे मिली थी और जितनी मधुर आवाज है उतना ही तेज इनके चेहरे पर भी है, ऐसी बात इन्होंने लिखी है। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। गमन फिल्म से ये अगली जो है ये रचना है, बोल इसमें शहरयार के हैं और संगीत जयदेव का है, फारूक शेख पर ये फिल्माया गया है।

दो बूंद पानी फिल्म का जो गाना सुना उसके बारे में हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि वो गीत सुनकर अपने गांव का पनघट मुझे याद आ गया। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि बचपन में इस गीत पर हमने बहुत डांस किया था। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि भक्ति की पराकाष्ठा ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण में ही निहित है, जब आत्मा अपने अहंकार को त्याग कर परमात्मा की शरण में जाती तभी उसे असीम शांति और मुक्ति का मार्ग मिलता है। चलिए अगला और अंतिम गाना, आलाप फिल्म का ये गाना यसुदास की आवाज में। पर्दे पर कौन गाता है आप बताइए।

आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का सफर बस यहीं तक। आपने कार्यक्रम को ध्यान से सुना, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें दी, इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: that organ transplants in India have risen to over 20,000 annually over the past 12 years. Ms. Anupriya Patel also said India ranks third globally in the number of organ transplants conducted after the United States and China.
1: More than 5 lakh Aadhaar verified organ donation pledges have been registered, reflecting a gradual increase in awareness in society. By pledging to donate our organs, we can give someone a new life.
0: Coal production from captive and commercial mines stood at 14.78 million tons MT in the month of July, while coal dispatches reached 17.49 MT. Ministry of Coal informed that coal production registered a 9.61% year-on-year growth compared to July last year. The ministry noted that the performance highlights continued improvements in operational efficiency, enhanced mining productivity, and more effective utilization of mining capacities across the captive and commercial coal mining sector. India's Unified Payments Interface, UPI, recorded its highest ever monthly transaction volume in July this year, with 23.66 billion transactions worth 29.88 lakh crore rupees. In a social media post, the Prime Minister's office said the performance marks a significant milestone for India's digital payments ecosystem. In Karnataka, the 20 new ministers will be sworn in at Lok Bhavan this evening. After D.K. Shivakumar took oath as Chief Minister on June the 3rd, 13 ministers were sworn in along with him earlier. With 20 ministers being inducted today, the cabinet's maximum capacity of 34 will now be reached. We have more from our correspondent.
2: The long-awaited cabinet expansion in Karnataka is being fulfilled today. Some close supporters of D.K. Shivakumar have gained from the cabinet expansion, and those of a few considered close to previous Chief Minister Siddaramaiah have been dropped. There are 13 changes in the cabinet as compared to that of Siddaramaiah's cabinet. The Congress committee has announced the name of G.S. Patil as Speaker in Assembly and Saleem Ahmed as Chairperson in Legislative Council. Lok Bhavan is decked up for the ceremony, with the supporters congregating at the venue. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
0: The student protest in Jharkhand demanding a CBI probe into the alleged irregularities in the JPSC and JSSC examinations and strict action against those responsible entered its 10th day today. Despite difficult conditions, students from across the state continue their agitation, alleging that the OMR sheets in the 14th JPSC preliminary examination were tampered with, resulting in a major scam. JLKM leader Devendranath Mahato announced the launch of an indefinite hunger strike, saying the protest would continue until a CBI inquiry is ordered into the alleged JPSC and JSSC irregularities and strict action is taken against those responsible. Meanwhile, former JPSC chairman L. Kyante, who has resigned from the post, is being questioned by the Jharkhand CID for the fourth consecutive day. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. U.S. President Donald Trump has said that negotiations with Iran, expected to take place through intermediaries, are scheduled to take place today. Speaking to reporters on board Air Force One, Trump confirmed that discussion channels were active. He revealed that diplomatic engagements involving Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar, and Iran led him to halt what was originally planned as a massive attack. President Trump further indicated that an agreement could be reached regarding the management of the Strait of Hormuz, while asserting that an accord would be established concerning the denuclearization of Iran. Iranian state media similarly indicated that discussions between Iran and Oman concerning a joint operational mechanism to govern the maritime corridor were in their final stages. The situation in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir remained tense after reports of violent clashes between protesters and security forces, with rights groups alleging a significant rise in casualties. According to data updated by the Human Rights Council of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, as of yesterday, a total of 80 fatalities have been documented. Amid the ongoing developments, the Joint Awami Action Committee has appealed to the United Nations, the Office of the UN High Commissioner for Human Rights, Amnesty International, Human Rights Watch, international media organizations and diplomatic missions to examine available footage and press for an immediate, independent and impartial investigation into the violence. At least 8 people were killed after Ukraine launched a large-scale overnight drone attack targeting military, energy and civilian infrastructure across several regions of Russia. According to Russia's Defense Ministry, its air defense systems intercepted 635 drones during the attack. Local authorities said 3 people were killed and 2 others injured in the Udmurtia region, while 3 more people lost their lives and 5 were injured in the Belgorod region. Foreign Affairs Minister of the Republic of Uzbekistan, Saidov Bakhtiyor Odilovich, called on President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan today. In a social media post, President Murmu noted that both India and Uzbekistan share deep historical, cultural and civilizational ties rooted in ancient trade routes. During their meeting, the two leaders agreed that this visit provides an opportunity to identify new areas of bilateral cooperation and deepen mutually beneficial partnership across diverse sectors. In Odisha, the flood situation is steadily improving, with water receding in all major rivers and their tributaries, including the Mahanadi. The Hirakud Dam authorities have reduced flood water discharge after a decline in reservoir inflow. Our correspondent reports that the state government has announced financial assistance for damaged houses and crop losses as restoration gathers pace.
3: The flood situation in Odisha continues to improve as water has receded in all major rivers and their tributaries, including the Mahanadi. With inflow into the Hirakud Reservoir declining, authorities have closed 3 spillway gates, reducing flood water discharge to 19 gates from 22 earlier. The state government has begun a detailed assessment of flood damage and announced financial assistance of up to 1,20,000 rupees for families whose houses were completely destroyed. Compensation has also been announced for partially damaged houses and crop loss. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: News just in, the Lok Sabha has been adjourned till 11 a.m. tomorrow. The Indian Meteorological Department has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Bihar, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim for today. Heavy rainfall is also expected tomorrow over Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Uttar Pradesh. President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi have congratulated the Indian contingent on its impressive performance at the Glasgow Commonwealth Games by bringing 39 medals. President Murmu expressed confidence that the sportspersons of the country will bring greater glory to the nation in the future international events. We have news just in, the Lok Sabha has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament proceedings disrupted following opposition protest over several issues. Counting of votes for by-elections in 3 assembly constituencies of Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh underway. Delhi court acquits former WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh in sexual harassment case filed by some women wrestlers. India achieves over 5 lakh Aadhaar verified organ donation pledges, stands third globally in number of organ transplants. US and Iran expected to hold next round of peace talks today. And Weather Department forecasts heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Bihar, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim for today. With that, we end the midday news.
4: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की बातचीत संभावित। और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखाभाई रबारी और मध्यप्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। बिहार से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
5: पिछले 30 सालों से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शुरुआती बढ़त बना ली है। प्रशांत किशोर मतगणना की शुरुआत के साथ ही प्रत्येक राउंड की गिनती में लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज कुमार हैं, जिन्हें अब तक 15,000 से ज्यादा मत मिले हैं। वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी 4,000 से अधिक मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
4: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिनमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही आज पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे फिर से आरंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद चनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
6: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
4: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के पैरा एथलीटों ने भी 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अगले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे।
6: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
4: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के

0: आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है।
1: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
0: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने 1 साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
2: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक में आज शाम 20 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: काफी निरीक्षा के बाद आज कर्नाटका में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के करीबी माने वाले विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ सदस्य जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते थे उनको बदला गया है। सिद्धरामैया और शिवकुमार के मंत्रिमंडल में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा GS पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण

0: उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरला, माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारेक्काल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि धान और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुक्कू कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। इस त्यौहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत 3रे स्थान पर। अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांतिवार्ता संभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म से सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजें, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है एसडी बर्मन का।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए ये रास्ते हैं प्यार के। इस फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है रवि का।

ये दिल किसको दूं, ये फिल्म का नाम है। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: शकील बदायूनी का लिखा और रवि का संगीत बद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम मुलजिम।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ों में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, मदन मोहन का संगीत, फिल्म का नाम शराबी।

0: ये पकड़। हाय हाय हाय, तुम हो हसी कहाँ के,
1: हम चांद आत्मा के।
0: हाय हाय गुरूर इतना,
1: हाँ हाँ गुरूर इतना,
0: उफ ये अदा है ये नया।
1: हाँ?

0: मैया
1: हाय।
2: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
3: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
2: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो, 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय,
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। अगला गाना रुस्तम सोहराब, इस फिल्म से सुरैया की आवाज कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है सज्जाद हुसैन का।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: ये है सेहरा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ें, हसरत जयपुरी की बोल, संगीत रामलाल का।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, सुशीला फिल्म का गाना, मुबारक बेगम की आवाज में, जानेसर अख्तर के बोल, संगीत सी अर्जुन का।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों को, सभी बहनों को और सखा भाइयों को, सभी श्रोताओं को नमस्कार। दीपा जी आपको भी नमस्कार।
1: हमारे सुनने वाले सभी सखियों, सहेलियों, श्रोता भाइयों को और चंचल वर्मा आपको भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
0: मैं इंतजार कर रही थी आपके हेल्दी नमस्कार का। अभी बात हेल्थ की होने वाली है तो आज जो हम रेसिपी बताने वाले हैं, क्योंकि सोमवार का दिन है और प्रादेशिक व्यंजन की चर्चा इस दिन की जाती है, तो नया महीना शुरू हुआ है और नए महीने से हम नए प्रांत को लेकर कुछ रेसिपीज लेकर आए हैं। अभी हम चल पड़े हैं पश्चिम बंगाल की ओर, तो वहां का एक हेल्दी स्नैक्स, मतलब हल्की फुल्की भूख के लिए जो खाया जाता है ना, जो आपको लगे भाई कुछ हल्का फुल्का सा ही खाना है ताकि पेट पर भार ना हो।
1: तो भाई ये जो खास तौर पे शाम का वक्त रहता है
0: जी,
1: जब हम मन कर जाता है एकदम चाय पकौड़ी या समोसे, तो उसके बदले में एक विकल्प देंगे।
0: हाँ,
1: वो भी हेल्दी।
0: बिल्कुल, और वो हेल्दी विकल्प है झालमुरी, जिसके बारे में बहुत सारे व्यंजन आने शुरू हो चुके हैं कि अलग अलग प्रांतों में क्या नाम है। हमारे श्रोता ये भी लिखकर भेज रहे हैं किस किस तरह के मसाले डालकर उसको थोड़ा सा बदलाव किया जाता है, वो भी लिखकर भेज रहे हैं, और पूरी रेसिपी उसकी जो बनाने की विधि है वो भी श्रोताओं ने हम तक पहुंचाई है।
1: यानी कि हमेशा नया कुछ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए।
0: हाँ, तो भाई आपके प्रांत में जिस तरह बनाई जाती है, लेकिन उसे नए तरीके से कैसे बनाना है आप ये भी सीख सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं जो रूटीन से हटकर हम नया सीखते हैं हर दिन में
1: जी,
0: उसके बारे में भी हमारे श्रोता हमें लिखकर जरूर बताएं। और बात जब सेहत की चली है, तो एक शिशु नवजात जब जन्म लेता है तो उसकी सेहत के लिए सबसे जरूरी चीज है माँ का दूध।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और अगस्त का जो पहला सप्ताह होता है, 1 तारीख से लेकर 8 अगस्त तक मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह। इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं।
1: और जब छोटा बच्चा होता है तो उसको सुलाया जाता है कहानी सुनाकर, लेकिन बात सिर्फ छोटों की नहीं हो रही, यहाँ तो हम सब बड़े बड़ा मन लगा के कहानी सुनते हैं, है ना।
0: तो आपका इशारा कथा सुधा की ओर है।
1: बिल्कुल।
0: तो आज अशिक्षित हृदय कथा का दूसरा भाग हमारे श्रोता सुनेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं सेहत की, यानी कि एक शिशु के स्तनपान को लेकर, जो उसके लिए बहुत जरूरी है। एक शिशु के लिए सबसे ज्यादा सेहतमंद चीज होती है माँ का दूध, और माँ का दूध शिशु को पलने के लिए, उसे बड़े होने के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्वों का एक बेमिसाल मिश्रण होता है। साथ ही इसमें बहुत बड़ी तादाद में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, तो शिशु में बीमारियों से लड़ने के लिए वो मदद करती है और एक शिशु को स्वस्थ भी रखता है माँ का दूध।
1: बिल्कुल सही कहा चंचल आपने। और जन्म देने के बाद माँ की शुरुआती दूध को कोलोस्ट्रम कहते हैं।
0: हाँ,
1: और इस दूध में जो जैसे आपने बताया रोग प्रतिकारक और पोषक तत्वों की भरमार होती है, इसलिए इसे लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। तो दो नाम अब आप लोगों ने सीख लिए, कोलेस्ट्रम और लिक्विड गोल्ड।
0: हाँ,
1: और ये इस शिशु के लिए बहुत आवश्यक है, नवजात शिशु के लिए।
0: बिल्कुल, आप नया क्या क्या सीख रही हैं इसके बारे में ही बता रही हैं।
1: बताते चलेंगे और याद दिलाते चलेंगे, देखिए आज हमने क्या क्या सीखा।
0: तो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जो शुरुआती 3 से 5 दिन तक माँ के स्तन में जो दूध आता है उसमें थोड़ा सा बदलाव होता रहता है, और ये जो दूध आता है बाद में, 3 से 5 दिन की बात कर रहे हैं शुरू के 3 दिन को छोड़कर, तो ये कोलेस्ट्रम की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा सफेद भी होता है और पतला होता है, और इस दूध में मिठास, पानी, प्रोटीन, वसा, ये तमाम तरह की चीजें होती हैं जो कि एक शिशु को बढ़ने के लिए, यानी उसके विकास के लिए सभी जरूरी चीजें होती हैं।
1: बिल्कुल, और ये कई तरह के संक्रमण जो बच्चे में खतरा हो सकता है कम करने का काम करता है और उन्हें स्वस्थ रखता है। लेकिन स्तनपान के बारे में सही ज्ञान का भी बहुत अभाव है।
0: बिल्कुल,
1: उसका कारण कई हो सकते हैं। ये भी देखा जाता है कि छोटे बच्चे पोषक को या किसी और संक्रमण का शिकार कई बार हो जाते हैं।
0: हाँ, बिल्कुल, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं
1: जी, और खास तौर पर वे महिलाएं जो पहली बार माँ बनी है और उनके पास परिवार को, उसके परिवार में कोई बड़े नहीं है या कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें समझा सके, तब भी ये जो समस्या है सामने आ जाती है। इसलिए इन दोनों इस प्रकार की जानकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध कराई जाती है।
0: तो चलिए अब ये सुन लेते हैं।

0: इतने बड़े जहां में तुझको अकेला छोड़ू कैसे, और एक माँ की भावना भी यही रहती होगी ना, जब एक नया शिशु जन्म लेता है तो माँ उसे सबसे बचा कर रखती है, उसे पूरा पोषण देना चाहती है, पूरा संरक्षण देना चाहती है। और शायद यही वजह है कि हर माँ भी चाहती है कि उसकी शुरुआत स्तनपान से हो उस बच्चे की, और वो बहुत स्वस्थ रहे। और चिकित्सक भी यही कहते हैं कि शुरुआती जो 6 महीने होते हैं उसमें बच्चे को सिर्फ माँ के दूध पर ही निर्भर रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, और जुड़ाव भी देखो वहीं से शुरू होता है।
0: हाँ।
1: जो बिल्कुल जन्म जन्म तक चलता है शायद।
0: हाँ, बिल्कुल ठीक।
1: और आगे जो हम बात कर रहे थे स्तनपान के बारे में, कि ये प्रक्रिया स्तनपान की जो प्रक्रिया है शिशु के लिए संरक्षण और संवर्धन का काम करती है। ये दूध शिशु के लिए केवल पोषण नहीं बल्कि अमृत के समान है। शिशु के लिए स्तनपान एक रक्षा सूत्र की तरह काम करता है। नवजात शिशु में रोग प्रतिरोधक शक्ति जन्म से नहीं होती बल्कि माँ के दूध से ये ताकत शक्ति बच्चों को मिलती है। माँ के दूध में लैक्टोफॉर्मिन नाम का एक तत्व होता है जो बच्चों की आंतों में लोह तत्व को बांध लेता है, जिसके कारण आंतों में रोगाणु फिर पनप नहीं पाते हैं। और माँ के दूध में सभी तरह के पोषक तत्व होते हैं, जैसे एंटीबॉडीज, हार्मोन्स और एंटीफंगल और रोग प्रतिरोधक शक्ति, और साथ में कई अलग अलग तरह के तत्व मौजूद होते हैं जो नवजात के बेहतर विकास और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए एक शिशु के लिए सर्वोत्तम ये आहार है। स्तनपान से शिशु के बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि होती है, साथ ही माँ और शिशु के लिए एक इमोशनल बॉन्ड यानी कि भावनात्मक रिश्ता भी प्रगाढ़ होता है।
0: और जैसे कि हमने पहले ही बताया कि इस दूध में वसा है, प्रोटीन है, मिठास है, सभी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग को ये लगता होगा, और कई बार जो बच्चियां हैं जो पहली बार गर्भ धारण करती हैं, माँ बनती हैं, तो उन्हें भी मन में शायद ये लगता होगा कि भाई सिर्फ दूध पीने से ही बच्चे को पूरा पोषण कैसे मिलेगा, और कई बार पानी पिलाएं या कुछ और खिलाएं ऐसी कोशिश की जाती है, लेकिन माँ का दूध अपने आप में संपूर्ण आहार होता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने चंचल। और माँ के दूध की अहमियत से लगभग सभी लोग भली भांति परिचित तो रहते हैं।

0: फिर भी देखा गया है कि कुछ महिलाओं में ये भ्रांति घर कर जाती है कि स्तनपान की वजह से उनके शरीर की सुडौलता पर विपरीत असर होगा या उनका फिगर बिगड़ जाएगा। ऐसे हाँ, सोच जो नई लड़कियां होती हैं उनके मन में आता है और इसी वजह से वे स्तनपान से परहेज करने लगती हैं। माताओं के इसी भ्रम को दूर करने के लिए, स्तनपान के प्रति जागरूकता लाने और स्तनपान के महत्व को समझने के लिए इसी उद्देश्य से इसकी शुरुआत 1991 में हुई और अगस्त के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है।
1: और दीपा, मागा दूध केवल पोषण नहीं, हम कह सकते हैं कि जीवन धारा है। जैसे आपने कहा ना कि इसे लिक्विड गोल्ड कहते हैं, तो ये जीवन धारा भी है। इससे न केवल एक शिशु बल्कि माँ के स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है और चिकित्सक भी सलाह देते हैं कि माँ को दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बच्चे को सेहत नहीं चाहिए, एक गर्भवती स्त्री जिसने 9 महीने तक उस शिशु को पेट में रखा है और बाद में बहुत सारी चीजों की जब कमियां आती हैं तो वो स्तनपान कराना ही चाहिए, जिससे उनको स्वास्थ्य में बेहतरी होती है। प्रसव के बाद बहुत सारी शिकायतें होती हैं एक स्त्री को, इससे भी मुक्ति मिल जाती है उन्हें। और ये कहते हैं कि एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक का भी काम करता है।
0: और सबसे बड़ी बात तो ये है ना चंचल कि माँ और शिशु के बीच का ये जो भावनात्मक संबंध है ये मजबूत करने का एक बहुत सुलभ साधन है।
1: तो चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले एक गाना सुन लेते।
0: चलिए।

0: इस खूबसूरत से गीत के बाद में मुझे लगता है कि अब हमें कहानी सुननी चाहिए, और एक वो कहानी जो इस समय अधूरी है। इसका पहला भाग हमारे श्रोता पहले सुन चुके हैं, आज इसका दूसरा भाग हम सुनवा रहे हैं। सुनते हैं कहानी अशिक्षित हृदय का दूसरा भाग।
1: चलिए।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा इस श्रृंखला के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी अशिक्षित का हृदय। आइए आज सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। अशिक्षित का हृदय। इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना, 55 वर्षीय मनोहर सिंह फौज की सेवा से निवृत्त होकर गांव में अब अकेला रहता है। टूटे फूटे मकान में रहने वाले मनोहर ने कुछ समय पहले खेती कराने के लिए जमीन ली थी, जिसमें उसे नुकसान हो गया और समय पर लगान न दे सकने के कारण उसे अपने घर के द्वार पर लगे नीम के वृक्ष को ठाकुर शिवपाल सिंह के पास गिरवी रखना पड़ा। समय सीमा के बाद शिवपाल सिंह उस पेड़ को कटवाने का हुक्म देता है और मनोहर उस नीम के पेड़ को अपनी जान से भी अधिक चाहता है और उसे बचाने का हर संभव प्रयास करता है। गांव का एक बालक तेजा उसकी भावना को समझता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। मनोहर पेड़ को बचाने के लिए ठाकुर से 8 दिन की और मोहलत लेता है, परंतु पैसे की व्यवस्था वो नहीं कर पाता है। आज मियाद खत्म होने वाली है, क्या मनोहर सिंह नीम का पेड़ बचा पाएगा जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है? आइए सुनते हैं आगे।
4: एक सप्ताह बीत गया, आज 8वां दिन है। मनोहर सिंह रुपयों का प्रबंध नहीं कर सका। वो समझ गया कि अब पेड़ का बचना कठिन है, पर साथ ही वो ये भी निश्चय कर चुका था कि उसके जीते जी कोई उसको काट नहीं सकता। उसने अपनी तलवार भी निकाल ली और साफ करके रख ली थी। अब वो हर समय पेड़ के नीचे ही पड़ा रहता था और तलवार सिरहाने रखी रहती थी। 8वें दिन दोपहर के समय शिवपाल सिंह ने मनोहर सिंह को बुलवाया। मनोहर सिंह तलवार बगल में दाबे अकड़ता हुआ ठाकुर साहब के सामने पहुंचा। शिवपाल सिंह और उसके आसपास बैठे हुए लोग बुढ़े की सज धज पर मुस्कुराए। शिवपाल सिंह ने कहा,
5: सुनते हो मनोहर सिंह, एक सप्ताह बीत गया, अब पेड़ हमारा हो गया, आज हम उसकी कटाई शुरू कराते हैं।
6: जी आपको अधिकार है, मुझे रुपया मिलता तो दे ही देता, और अब भी यदि मिल जाएगा तो दे दूंगा। मेरी नीयत में बेईमानी नहीं है, मैं फौज में रहा हूं, बेईमानी का नाम नहीं जानता।
5: अब हम उसे कटवा लेना?
6: ये मैं कैसे कहूं, आपका जो जी चाहे कीजिए।
4: ये कहकर मनोहर सिंह उसी प्रकार अकड़ता हुआ ठाकुर शिवपाल सिंह के सामने से चला आया और अपने पेड़ के नीचे चारपाई पर आकर बैठ गया। दोपहर ढलने पर 4-5 आदमी कुल्हाड़ियां लेकर आते दिखाई पड़े। मनोहर सिंह झट म्यान से तलवार निकालकर डट कर खड़ा हो गया और ललकार कर बोला,
6: रुको, संभल कर आगे बढ़ना, जो किसी ने भी पेड़ में कुल्हाड़ी लगाई तो उसकी और अपनी जान एक कर दूंगा।
4: मजदूर बुढ़े की ललकार सुनकर और तलवार देखकर भाग खड़े हुए। जब शिवपाल सिंह को ये बात मालूम हुई तब पहले तो वो बहुत हंसे, परंतु पीछे कुछ सोचकर उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और बोले,
0: गया।
5: इस बुड्ढे की शामत आई है। हमारा माल है, हम चाहे काटें चाहे रखें, वो कौन होता है? चलो तो मेरे साथ, देखो वो क्या करता है। क्यों मनोहर
6: जी,
5: ये क्या बात है?
6: बात केवल इतनी है कि मेरे रहते इसे कोई हाथ नहीं लगा।

0: वाले, और जब मैं असली ठाकुर होऊंगा तो इसे कटने न दूंगा।
1: देखते क्या हो, इस बुड्ढे को पकड़ लो और पेड़ काटना शुरू करो।
2: ठीक उसी समय तेजा सिंह दौड़ता हुआ आया और मनोहर सिंह को कुछ रुपए देकर बोला,
3: लो चाचा ये रुपए लो, अब तुम्हारा पेड़ बच गया।
0: कहिए ठाकुर साहब, रुपए लेना हो तो ये हाजिर हैं, और जो पेड़ कटवाना हो तो आगे बढ़िए।
1: रुपए तो अब हम ले नहीं सकते, रुपए देने की मियाद बीत गई, अब तो पेड़ कटेगा।
0: ठीक है, अब मालूम हुआ कि आप केवल मुझे दुख पहुंचाने के लिए पेड़ कटवा रहे हैं। अच्छा कटवाइए, मुझे भी देखना है आप किस तरह पेड़ कटवाते हैं।
2: इतनी ही देर में गांव भर में ये खबर फैल गई कि शिवपाल सिंह मनोहर सिंह का पेड़ कटवा रहे हैं। और मनोहर सिंह तलवार खींचे खड़ा है, किसी को पेड़ के पास जाने नहीं देता। ये खबर फैलते ही गांव भर के लोग जमा हो गए। गांव के दो चार प्रतिष्ठित आदमियों ने मनोहर सिंह से पूछा,
1: क्या बात है मनोहर सिंह?
0: मैं रुपए देता हूं, ठाकुर लेते नहीं, कहते हैं कल तक मियाद थी, अब तो पेड़ कटेगा।
1: कल तक ये रुपए दे देता तो पेड़ पर हमारा कोई अधिकार ना होता, अब हमारा उस पर पूरा अधिकार है, हम पेड़ अवश्य कटवाएंगे।
2: भीड़ में खड़े हुए लोगों के बीच में से एक व्यक्ति बोला, जब कल इसके पास रुपए नहीं थे तो आज कहां से आ गए? तभी शिवपाल सिंह का एक आदमी बोला, तेजा ने अभी लाकर दिए हैं। भीड़ में गांव वालों के साथ तेजा का पिता भी था, उसने ये सुनकर तेजा को पकड़ा और कहा,
4: क्यों रे तू नहीं रुपए चुराए थे? मैंने दोपहर को पूछा तो 3 तेरा बकने लगा था। मनोहर ये रुपया तेजा मेरी संदूक से चुरा लाया है, ये रुपए मेरे हैं।
0: तेरे हैं तो ले जा, मैंने तेरे लड़के से रुपए नहीं मांगे थे। तेजा बेटा तूने ये बुरा काम किया, चोरी की, राम राम राम, बुढ़ापे में मेरी नाक कटाने का काम किया, ये लोग समझेंगे मैंने ही चुराने के लिए तुझसे कहा होगा।
3: चाचा मैं गंगा उठाकर कह सकता हूं कि तुमने मुझसे रुपए मांगे तक नहीं, चुराने के लिए कहना तो बड़ी दूर की बात है।
1: क्यों मनोहर, अब रुपए कहां हैं? लाओ लाओ रुपए ही लाओ, मैं रुपए लेने को तैयार हूं, अब या तो रुपए दे दो या सामने से हट जाओ, झगड़ा करने से कोई लाभ नहीं होगा।
0: ठाकुर साहब इन तानों से क्या फायदा, रुपए मेरे पास नहीं है लेकिन पेड़ मैं कटने नहीं दूंगा।
1: आप लोग इस बात को देखिए और न्याय कीजिए, मियाद कल तक की थी, मैं आज भी रुपए लेने को तैयार हूं, अब मेरा अपराध नहीं है, ये बुड्ढा व्यर्थ में झगड़ा कर रहा है।
2: तेजा सिंह ये सुनते ही आगे बढ़ा और अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतार कर शिवपाल सिंह से बोला,
3: ठाकुर साहब ये अंगूठी 1 तोले की है, आपके रुपए इससे निकल आवेंगे, आप यह अंगूठी ले जाइए, इस अंगूठी पर मेरे बापू का कोई अधिकार नहीं, यह अंगूठी मुझे मेरे नानी ने दी थी।
2: सब लोग लड़के की बात सुनकर दंग हो गए। ये देखकर तेजा सिंह के पिता ने आगे बढ़कर कहा,
4: ठाकुर साहब लीजिए ये 25 रुपए और अब इस पेड़ को छोड़ दीजिए, आप अभी कह चुके हैं कि रुपए मिल जाए तो पेड़ छोड़ देंगे, अपने वचन का पालन कीजिए, पेड़ छोड़ दीजिए।
2: ठाकुर साहब के चेहरे का रंग उड़ गया, उन्हें विश्वास हो गया था कि अब मनोहर सिंह को रुपए मिलना असंभव है, इसी से उन्होंने केवल अपनी उदारता दिखाने के लिए रुपए लेना स्वीकार किया था। अब वो कुछ न कह सके, कारण कि उन्होंने 25-30 आदमियों के सामने रुपए लेना स्वीकार कर लिया था। वो रुपए लेकर चुपचाप चले गए। ठाकुर साहब के चले जाने के बाद मनोहर सिंह ने तेजा सिंह को बुलाकर छाती से लगाया और कहा,
0: तेजा बेटा इस पेड़ को तूने ही बचाया, मैं तुझी को ये पेड़ देता हूं, मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पीछे तू इस पेड़ की पूरी रक्षा कर सकेगा। भाइयों मैं तुम सबके सामने ये पेड़ तेजा सिंह को देता हूं, तेजा को छोड़कर इस

0: पर किसी का कोई अधिकार न रहेगा।
1: पर मेरे जीते जी कोई पेड़ में हाथ नहीं लगा सकता था, अपनी और उसकी जान एक कर देता। मैंने फौज में नौकरी की है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती हैं, ये बेचारे हैं क्या चीज।
2: अशिक्षित का हृदय। अभी आप सुन रहे थे इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। लेखक थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। मनोहर सिंह की भूमिका में थे जयंत पात्रीकर, ठाकुर शिवपाल सिंह जी श्याम, तेजा सिंह सोहिल पात्रीकर, तेजा सिंह के पिता दीपक केसावलेकर, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
3: अभी हम सुन रहे थे कहानी अशिक्षित का हृदय, इसका दूसरा भाग। और इस कहानी को लेकर हमारे श्रोताओं को भी इंतजार था, क्योंकि ये दूसरा भाग था। एक श्रोता का ने जो संदेश लिखकर भेजा है कि अशिक्षित का हृदय, जब मैं पहली बार इस कहानी को मैंने सुना तो मैं भावुक हो गई, और आज इसके दूसरी और अंतिम भाग का बहुत बेसब्री से इंतजार है, और ये बहुत भावुक कर देने वाली प्यारी कहानी है, तो इनका इंतजार आज पूरा हो गया।
4: बिल्कुल। और इसी तरह एक और हमारे सखी ने लिख भेजा है कि एक तो जी श्याम जी की दमदार आवाज, ऊपर से जयंत जी का बेहतरीन अभिनय, तो उन्हें कहानी बहुत ही सुंदर लगी। बेशक हमें भी कहानी बहुत अच्छी लगी, और जब कहानी सुनते हैं तो उनकी जो कहानी में जो पात्र चल रहे हैं और कहानी किस चीज के इर्द गिर्द घूम रही है, हम भी खो जाते हैं, है ना चंचल।
3: और कई बार जो चित्रण है बिल्कुल हमारे सामने होता है कि वो जो नीम का पेड़ है, जो उस का व्यक्ति का दर्द है जिसका पेड़ काटा जा रहा है, वो सब चीजें, और एक इंसान जो बहुत सख्त है तो उसका चेहरा छवि कैसी होगी, ये हम अपनी कल्पनाओं में कहीं ना कहीं एक छवि बना लेते हैं।
4: बिल्कुल।
3: और इसी तरह से स्तनपान की जब हम बात कर रहे थे, इस पर भी एक बड़ा सुंदर संदेश आया है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि एक व्यक्ति पैदा होने के बाद से ही सीखना प्रारंभ कर देता है, शिशु अवस्था में से ही वो पास में खपलता, पास रखी चीजों को छूने की पकड़ने की कोशिश करता है। ये इन्होंने सीखने को लेकर बातें लिखी हैं, जो हमारा अगला विषय
4: है वो है। और एक संदेश इसके जो स्तनपान के बारे में है, एक संदेश आया है। हमारे एक सखा लिखते हैं कि दूध को आधा भोजन भी कहा जाता है, क्योंकि शिशु के लिए तो वो सर्वोपरि है, और माँ के दूध का सेवन क्योंकि उसमें मिलने वाला पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल शुरुआत के दिनों में सर्वाधिक हुआ करता है।
3: और यही बात करते करते जब मेरी नजर गई घड़ी पर तो पता लगा कि अंतराल का वक्त हो गया है।
4: तो चलिए

विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, और अंतराल के बाद हम वापस आ गए हैं, लेकिन अब सुनते हैं एक प्यारा सा और बहुत मीठा सा गीत।

0: जाने क्या क्या बना, और इसी तरह से हम जाने क्या क्या सीखते भी हैं।
1: बिल्कुल, बचपन से लेके आज तक का कभी लिस्ट लेके बैठे ना तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी
0: कि क्या क्या
1: कि क्या
0: सीखा
1: क्या
0: है।
1: सीखा, क्या क्या चीज सीख के छोड़ दी और क्या क्या चीजों की सीखने की अभी भी इच्छाएं बाकी हैं।
0: बिल्कुल, लेकिन ये बात तय है कि नया कुछ ना कुछ सीखते रहना ही चाहिए, तो हमारे जो कहते हैं ना कि मस्तिष्क का विकास भी बढ़ते रहता है। कई बार लगता है ना कि अरे बहुत सीख लिया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको जहां से कुछ भी सीखने का मौका मिले वो सीख लीजिए, ना ये सोचना है कि अरे ये हमसे छोटा है ये हमें क्या सिखाएगा।
1: सही बात
0: कई
1: है।
0: बार छोटों से भी सीखने मिल जाता है हमें, है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: सही कहा। और कई बार ऐसा जो सोचा नहीं हो वहां से भी सीखने मिल जाता है।
0: बिल्कुल, दिमाग को चुस्त दुरुस्त अगर बनाए रखना है तो ये बहुत जरूरी है कि सीखते रहें। और बहुत सारी जो रिसर्च होती है ना इन चीजों को
1: जी
0: लेकर, वो भी ये बताती हैं कि कोई भी नई चीज या नया शौक जब हम सीखते हैं तो ये हमारी याददाश्त को भी मजबूत बनाने के लिए बहुत मददगार होता है, और इसके बहुत सारे फायदे भी हमें हो सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम अपने रोज के कामों की सूची बनाएं तो पाएंगे कि उसमें कुछ नया नहीं है, बल्कि हम रोजाना एक जैसा काम करके ही अपना दिन व्यतीत करते रहते हैं। दरअसल अपनी जो बिजी शेड्यूल है, यानी व्यस्तता है या भाग दौड़ भरी जीवन शैली है, इसके चलते कई नई चीजें सीखने के लिए समय निकालना कुछ हद तक एक चुनौतीपूर्ण काम भी हो जाता है। चंचल,
0: ये तो
1: है
0: आप
1: ना।
0: बहुत सही कह रही हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एक अपना कंफर्ट जोन बना लेते हैं कि भाई हमें इतना ही करना है, यही करना है, और उसे छोड़कर कुछ भी नई चीज वो आजमाना ही नहीं चाहते, नया सीखना भी नहीं चाहते, और नए सीखने वो क्या करते हैं, टाल देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन नया सीखने के बारे में क्या फायदे होते हैं ये जब उनको पता लगेगा तो उनको भी लगेगा कि भाई जो रूटीन की चीजें हैं उनसे बंध कर हम अपने दिमाग या शरीर को थोड़ा सा नुकसान तो पहुंचा रहे हैं। इसीलिए टाल मटोल जब वो जानेंगे ना फायदे, तो टाल मटोल करना छोड़ेंगे और नया सीखने की मुमकिन कोशिश भी जरूर करेंगे।
1: बिल्कुल, टाल मटोल से याद आया कि हम ये जानते हैं कि ये सारी बातें, लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है कि हमने हाल ही में एक नया सीखने का मजा कब उठाया था। अगर ये सोचें, और बहुत पहले या फिर कभी नहीं, या ये भी कुछ हद तक संभव है कि हम ये भूल भी चुके हों कि कुछ नया सीखने का हमने आनंद लिया, या इसका
0: हाँ
1: आनंद होता क्या है,
0: बिल्कुल
1: ये भी
0: बिल्कुल,
1: कभी कभी हम भूल जाते हैं। और सच मानिए, ये अनुभव हमारे यानी बड़ों के लिए भी ठीक वैसा ही होगा जैसे किसी बच्चे को किसी एक चॉकलेट के स्टोर पे, दुकान पे ले जाएं जहाँ पे
0: हाँ
1: इस तरह की कैंडीज वगैरह खूब मिलती हैं, या कोई पसंदीदा खिलौने को पा करके जैसे उसे खुशी मिलती है ना, शायद वैसी खुशी वैसा आनंद हम बड़े हम लोगों को भी आए।
0: और दीपा विज्ञान भी यही कहता है कि जब कोई नया अनुभव हमारे दिमाग को ऐसी खुराक देता है तो वो चीज़ हमारे मूड को बहुत बेहतर बनाती है और तनाव को भी दूर करती है, यानी कि तनाव छू मंतर। और नया सीखकर हम संपूर्णता और गर्व भी महसूस करते हैं। साथ ही दूसरा काम जो कोई नहीं

0: सकता वो भी हमें आ जाता है और हमारा आत्मविश्वास, हमारे निर्णय लेने की क्षमता, इन चीजों में भी विकास होता है।
1: बिल्कुल, और जब नया सीखते हैं तो देखो खुशी की एक बात ही अलग होती है। वो दिन सारा दिन एकदम ऊर्जा में हमारा बीतता है, और जब हम ये नया सीखने की शुरुआत करेंगे तो पहले से ज्यादा समय मिलेगा हमें। सुनने में अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये सही है। दरअसल में हम जब अपने रूटीन से हटकर कुछ करते हैं और अपनी रोजाना या जो अपना जो साप्ताहिक सारणी होती है ना, एक वीकली टाइम टेबल कह लीजिए उसे, उसमें कुछ नया जोड़ते हैं तो होता यह है कि हम अपना पूरा जो शेड्यूल है वो बदल देते हैं और उसी समय में से थोड़ा समय इसके लिए हम निकाल लेते हैं।
0: बिल्कुल, जहां एक बार लगता है ना कि नहीं हमें तो समय ही नहीं मिलता, हम कहां से समय निकालें, लेकिन वो चीज जब हमें रुचि देने लगती है और मजा आने लगता है उसमें, तो हमारा जो पूरा शेड्यूल है या टाइम टेबल है उसे हम बदल देते हैं और फिर वही उस चीज के लिए वक्त मिल जाता है। तो क्या इरादा है, गाना सुन के आगे बढ़े?
1: बिल्कुल, उसी का वक्त हो रहा है।

0: जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है।
1: आए हैं दूर से, यानी कि संदेश बड़ी दूर दूर से आए हैं हमारे श्रोताओं के, और बड़ी दूर दूर से जो श्रोता बैठे सुन रहे हैं उन्हीं के संदेश हम पढ़कर सुनाते हैं। नया सीखने को लेकर हम जो बातें कर रहे थे, इसके लिए हमारे श्रोता कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान का सागर इतना विशाल है कि जितना सीखें उतना ही एहसास होता है कि अभी और गहरे उतरना है, कुछ और सीखना बाकी।

0: होती है। हर इंसान, हर अनुभव, हर यात्रा, हर चुनौती हमें कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाती है। समय लगातार बदल रहा है, नई तकनीक, नए विचार, नए तरीके हमारे सामने हर दिन आते रहते हैं। यदि हम सीखने के लिए तैयार रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए जीवन में कभी भी ये मत सोचिए कि अब सब कुछ सीख लिया है। जिज्ञासा को जीवित रखिए, प्रश्न पूछिए, अनुभवों से सीखिए और नए दिन का स्वागत हमेशा एक विद्यार्थी की तरह कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात लिखी है।
1: बिल्कुल।
0: और अंत में लिखते हैं कि जो सीखना नहीं छोड़ता वो कभी भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ता। ये बहुत सही बात है, जो सीखेगा वही आगे भी बढ़ेगा और नए नए अनुभव भी उन्हीं को मिलेंगे जो नया सीख रहे हैं।
1: और ऊर्जा में भी रहते हैं, खुश रहते हैं हमेशा, जो हमेशा निरंतर नया सीखना चाहते हैं। एक संदेश और आया है, ये कहता है कि नया सीखने के लिए तैयारी जरूरी है, खासकर आजकल के मोबाइल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर युग के साथ चलना अत्यंत जरूरी होता जा रहा है। बच्चे लोग तो इस टेक्नोलॉजी को आसानी से सीख लेते हैं, वही मेरे जैसे बुजुर्ग व्यक्ति के लिए उतनी आसानी रहती नहीं है। फिर भी इस बदलते युग के साथ कदम मिलाना भी जरूरी है। विविध भारती के इस मंच पे से सके सहेली कई सारी नई नई जानकारियां अक्सर मिलती रहती है उनसे, जो हम जैसे लोगों के लिए एक सहारा सा बन गया है। तो देखिए, ये परिवार ही ऐसा है, हम सब एक दूसरे का सहारा है। और जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां, बाहर क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम और आप मिलकर यही कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे को शिक्षित करते रहें और जानकारी से भरते रहें।
0: इसी तरह से दीपा, जब हम प्रांतीय व्यंजन लेते हैं तो कोई महाराष्ट्र में है, कोई गुजरात में है, कोई बंगाल में है, तो हर प्रांत के व्यंजन अलग होते हैं। यहाँ बैठकर हमने ये कोशिश भी शुरू की है कि प्रांतीय व्यंजन जब हम ले रहे हैं तो एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक किस तरह से मसालों का बदलाव होता है, थोड़ी थोड़ी सी चीजों का बदलाव करके एक व्यंजन को किस तरह से नया बना दिया जाता है।
1: बिल्कुल, चीजें तो वही होती हैं, चीजें वही होती है, लेकिन हम अपने घर में ही अगर सुन लिया है कहीं पे कार्यक्रम के दौरान कि भाई आज तो पश्चिम बंगाल की कोई चीज को हम कोई व्यंजन को सीख रहे हैं, तो हमारे घर में क्या क्या वो चीज है और हम कुछ ऐसे उसमें क्या चेंजेस करके एक नई कुछ रेसिपी हम बना सकते हैं।
0: तो सीखने के लिए तैयार रहने पर अगला संदेश मैं पढ़कर सुना रही हूँ आपको भी और हमारे सभी अन्य सुनने वाले।
1: चलिए।
0: बहता हुआ पानी साफ सुथरा और गतिमान होता है, मंजिल तक पहुंच जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में अंत तक हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। नया करने की चाह जीवन को उत्साह से भर देती है। आजकल मैं नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए छोटे छोटे से स्वेटर बना रही हूँ, इन्हें मैंने YouTube पर देखकर सीखा है। और कुछ नए स्टाइल से पैटर्न बनाना था तो थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई, लेकिन अब तक वो करीब करीब आधा बनने तक आ गया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और एक ना एक दिन ये पूरा भी हो जाएगा। तो हमारी शुभकामनाएं हैं और बिल्कुल हमें ये विश्वास है कि आप इसे जरूर पूरा कर लेंगी और जब ये पूरा होगा तो आपको खुशी होगी तो होगी, जिनके लिए आपने बनाया है
1: उन्हें भी खुशी होगी। और आप संदेश के द्वारा जरूर बताइएगा कि जो आप स्वेटर बना रही हैं वो पूरा हो चुका है
0: जी,
1: है ना। एक और संदेश आया है, ये कहता है कि आदमी पैदा होने के बाद से सीखना प्रारंभ कर देता है। शिशु अवस्था में ही वो अपने पास रखी चीजों को छूने के लिए या उसे पकड़ने की कोशिश करता है और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी सीखने की ललक बढ़ती जाती है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ते वक्त वो तरह तरह के विचारों और व्याख्यानों को से बहुत कुछ सीखता है और पुस्तकों में जो अलग अलग बातें लिखी होती हैं उनसे सीखता है। प्रयोगशाला में अलग अलग आजमाते हैं, वो प्रयोग करते हैं, उनका प्रभाव जानता है। शादी ब्याह के बाद पत्नी के साथ जीवन जीने की कला सीखता है, लोगों को प्यार करना और सम्मान देना भी सीखता है। तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन आदमी के जीवन में जारी रहती है।
0: इसी तरह से एक संदेश में छोटी सी है लेकिन बड़ी काम की बात है कि कोई भी नया सीखने में शर्म नहीं करनी चाहिए
1: जी।
0: नए काम बच्चे की तरह सिखा दिए जाते हैं। एक दूसरे प्रदेश के व्यंजन को भी बनाना सीखना चाहिए, यही बात अभी हम भी कर रहे थे। तो व्यंजन बनाना सीखेंगे लेकिन पहले गाना तो सुन लें।

0: घड़ा श्यामल श्यामल बरन कोमल कोमल चरन।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
3: 4 औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
3: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: एक कुछ नया सीखने की बात कर रहे थे हम, हाँ, है ना, तो लगातार एक जैसे रूटीन की से कभी कभी ये तनाव का कारण भी बन जाता है। तो शोधकर्ता है, कहते हैं कि एक अध्ययन में पाया गया कि उबाऊ जीवन जीने वाले को दिल के दौरे का 2 गुना ज्यादा जोखिम होता है। और वहीं चिकित्सक ये मानते हैं कि अपनी दिनचर्या को बदलते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम रोज एक ही तरह का काम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां उसकी आदी हो जाती है और उनकी ग्रोथ रुक जाती है या कम हो सकती है। दूसरी ओर जब हम कुछ नया सीखते हैं या करते हैं तो अपने व्यक्तित्व को संवरने और निखरने का मौका देते हैं और जीवन के कई क्षेत्रों में खुद को अपडेट भी करते हैं। इसलिए नया तो सीखते रहना चाहिए।
5: जब तुमने बात की खुद को अपडेट करने की, तो मोबाइल ऐसी चीज है जो खुद को अपने आप अपडेट करता रहता है। हम देखते हैं कि जब नया वर्जन आता है किसी भी ऐप का या मोबाइल का तो वो उसे अपडेट करता रहता है। वहीं जो पुराने जमाने के जो लोग हैं जिनके हाथ में छोटा सा फोन हुआ करता था, अब वो भी अपने आप को अपडेट करके एंड्रॉइड फोन चलाना सीख रहे हैं। तो एक संदेश आया है कि अब हम चलाना सीख रहे हैं एंड्रॉइड फोन और आप सभी प्यारी सहेलियों से भी हम जुड़ते जा रहे हैं और ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो भाई जिन्हें इस फोन को कई बार लेके हवा लगता था कि भाई इसमें इतनी सारी चीजें हैं और हाथ लगाते ही तो कुछ भी इसमें शुरू हो जाते क्योंकि इसमें टच स्क्रीन होती है, तो वो लोग भी इसे चलाना सीख रहे हैं
4: बिल्कुल,
5: और इसके साथ में मित्रतापूर्ण व्यवहार अपना बना रहे हैं
4: बिल्कुल। और ये देखिए, ये अब कार्यक्रम में जितने संदेश आ रहे हैं ये अपने आप ही उस चीज का उदाहरण है कि कितने सारे लोग ये जो नई चीजें हैं, नई टेक्नोलॉजी है, उसे सीखते चले जा रहे हैं।
5: तो अभी झालमुरी जिन्होंने खाई है, बनाई है, वो भी हमें संदेश भेज रहे हैं। इसीलिए हमारे एक श्रोता का संदेश है कि झालमुरी हमने धनबाद में खाई थी, जब छुट्टियों में हम मामा के घर जाते थे तो शाम को इसे जरूर खाते थे।
4: क्या बात है। और एक हमारी श्रोता सखी लिखती है कि झाल का मतलब होता है मसालेदार और तीखा, और मुड़ी का मतलब होता है मुरमुरा, यानी कि कुरमुरा या परमल, अलग अलग जगह पे इस तरह से बोलते हैं। जब मुरमुरे में उबले चने, उबले आलू, बारीक कटे प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, हरा धनिया, तली हुई चने की दाल और मिक्सर में कच्चा, उसको मिलाने के लिए कच्चे सरसों का तेल या अचार के सरसों का तेल डालकर बनाया जाता है तो उसे झाल मुरी कहते हैं। और उड़ीसा में जब इसे बनाते हैं तो इसमें आमा हल्दी, जिसे कच्चे आम का स्वाद होता है, जिसमें वो भी डालते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़िया हो जाता है।
5: हमारे श्रोता ने पूरी की पूरी इसकी व्यंजन की विधि बनाकर बताई है हमें। तो इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो है मुरमुरे, यानी कि आधार सामग्री जो है इसकी वो 2 से 3 कप लेनी है। सब्जियां बारीक कटी हुई लेनी, जिसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, खीरा, उबले हुए आलू और हरी मिर्च। तो अपने स्वाद या अपनी ज़रूरत के अनुसार आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। और कुछ क्रंची चीज़, यानी कुरकुरी चीज़ें लेनी है, उसमें भुनी हुई मूँगफली, जो चना होता है जिसे हम चना जोर गरम भी कहते हैं, वो लेना है, थोड़े से सेव लेने हैं या कोई भी मिक्स नमकीन आप ले सकते हैं। और कच्चा सरसों का तेल लेना है क्योंकि यही इसकी खास स्वाद की पहचान होती है, थोड़ा सा नींबू का रस लेना है और आम का अचार भी, जो मसाला है
4: उसका जो मसाला है जी
5: वो लेना है। इसे बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में जो सारी सामग्री यानी कि मुरमुरे और कटी हुई सब्जियां, उबले आलू, मूंगफली, नमकीन, सेवे सभी चीजें डाल दीजिए, ऊपर से थोड़ा सरसों का तेल, नींबू का रस, अचार का मसाला और थोड़ा सा नमक अपने स्वाद अनुसार डालकर इसे मिला लेना है और झालमुड़ी बनकर तैयार है। और हमारे पास अभी गाना भी तैयार है।

0: एक संदेश कहता है,
1: हाँ
0: आप कुछ कहना चाह रही हैं?
1: भाई हाँ, एक संदेश ये कहता है कि झालमुरी को बेलपुरी की सगी बहन कह सकते हैं।
0: अच्छा, हमने जो संदेश चुना है वो ये कहता है कि झालमुरी हमारे बिहार में खाते हैं, जिसे भुजा बोलते हैं, उसमें उबले आलू नहीं डाले जाते, चार भुने अनाज यानी चना, मूंगफली, मटर, मटका ये डाले जाते हैं, और सरसों के तेल और कुछ अचार के मसालों के साथ ये बिहार का बेहद लोकप्रिय स्नैक्स है।
1: तो भाई अब ये जो टाइम है ये स्नैक्स का भी हो गया है और कार्यक्रम का भी समय पूरा हो चला है, तो इसके बाद टी टाइम में किसको क्या स्नैक्स खाने हैं वो सब अपनी पसंद से चुन सकते हैं। लेकिन फिलहाल लेते हैं विदा चंचल वर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी का। नमस्कार
1: सखी सहेली। कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेहतनामा।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष को और आज आंखों के बारे में बहुत विस्तार से हम बात करने वाले हैं और साथ में इन बातों के बीच होंगे कुछ दिलचस्प गाने। स्वागत करते हैं डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष का।
3: नमस्कार।
2: नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है विविध भारती के स्टूडियो में आके, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर और रेडियो का स्टूडियो दो अलग अलग जगह।
3: बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार पहले भी आपके स्टूडियोज में चर्च गेट पे गया था
2: जी।
3: काफी साल पहले, वो लाइव रिकॉर्डिंग थी, लेकिन जो आपका यहाँ का स्टूडियो है और जो आपने मुझे चीजें यहाँ पे बताई हैं, गजब है। ऐसे लगता है कि एक पुराने जमाने में हम गए हैं, गुजरे हैं। जो आपने रिकॉर्ड्स बताए हैं, जो लोग यहाँ पे आके गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग किए हैं, जो आर्टिस्ट जो हमने अपने मुझे सब बताए, मैं सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ शायद कोई सौभाग्य है पिछले जन्म का जो मैं यहाँ आया हूँ। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद, मुझे संगीत में बहुत ही रुचि है
2: जी जी।
3: तो अगर मैं ऐसी जगह पे सिर्फ आ जाऊं और देखूं तो भी काफी है। अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो इससे और अच्छी

0: शुभ चीज मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता।
1: क्या बात है।
0: शुक्रिया एक बार और
1: डॉक्टर साहब। ये जो आपने कहा कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कई बार जब आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है तो लोगों के चश्मे उतर जाते हैं,
0: जी
1: ये मोतियाबिंद क्या है, कैसे होता है और किस उम्र में मिनिमम ये आजकल देखा जा रहा है?
0: तो मोतियाबिंद जो है, जो आपके आंख के अंदर, जैसे हमने पहले बात की कॉर्निया की, जो सामने की
1: जी
0: कांच की,
1: जी
0: उसके पीछे जो रहता है, अपनी पुतली रहती है, जो आप काला ब्राउन ब्लू जो भी दिखते हैं, उसके
1: जी
0: पीछे लेंस रहती है। हाँ, जो भिंग रहता है आंख का, जो पारदर्शक रहता है, जिसके वजह से हमको दिखाई देता है। तो आंख में देखने के लिए सिस्टम जो है वो तीन चार चीजें हैं। सामने की कांच है, उसके बाद हमारी लेंस है,
1: जी
0: उसके बाद पीछे का पर्दा है
1: जी
0: जिसको रेटिना कहते हैं, और उसके बाद ऑप्टिक नर्व है जो नस
1: जी
0: है। जब ये सब संक्रमण बराबर चलता है तो जो रोशनी रहती है वो दिमाग तक बिल्कुल सही जाती है।
1: बिल्कुल
0: तो हमने कॉर्निया की बात कर ली, ग्लॉकोमा की भी हमने आपको बता
1: जी
0: दिया। अब ये जो है, जो लेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पारदर्शक होता है और ये ज्यादातर जिंदगी भर पारदर्शक रहता है, लेकिन जब ये सफेद होता है, जैसे अपने बाल सफेद होते हैं,
1: जी
0: सेम प्रक्रिया है। तो पहले कम उम्र में जो नए फाइबर्स आते हैं, क्योंकि बॉडी में नए सेल्स, नए फाइबर्स तो नॉन स्टॉप चलते रहते हैं
1: जी
0: जब
1: जी
0: तक कि अपनी जिंदगी है, तो जो नए फाइबर्स आते हैं वो क्लियर यानी पारदर्शक की जगह ओपेक आते हैं, सफेद आते हैं या भूरे आते हैं। तो उसके वजह से लाइट जो है वो पीछे के पर्दे तक नहीं जा रहा और दिमाग को नहीं दिखाई दे रहा है।
1: जी
0: एक
1: जी
0: सिंपल चीज है, आपके घर में एक खिड़की है, उसके अंदर एक आप थोड़ा हल्का मट्टी डालिए, रंग डालिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके आपको दूर की चीजें दिखाई देना बंद हो जाएगी। मोतियाबिंद में ऐसे ही होता है।
1: जी
0: मोतियाबिंद कोई भी उम्र में हो सकता है, बच्चों में भी हम देखते हैं, जिसको कंजेनाइटल ग्लॉकोमा कहते हैं, जो
1: अच्छा
0: पैदाशी होता है, बहुत कम रहता है लेकिन होता है। उसको भी ऑपरेशंस होते हैं। उसके बाद दूसरा होता है जिसको डेवलपमेंटल ग्लॉकोमा बोलते हैं, कि बचपन में उसका एक कण रहता है लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ता है, 25-30 साल में आ जाता है।
1: जी
0: सभी के लिए अभी ऑपरेशन है और सभी के अच्छे उसके
1: और ये
0: रिजल्ट आते
1: सभी
0: हैं,
1: जांच में पता चल जाता है
0: जांच में
1: कि
0: पता
1: हो
0: चल
1: रहा
0: जाए।
1: है।
0: या ज्यादातर जो होता है वो एज रिलेटेड रहता है, उम्र के वजह से होता है। जो ज्यादातर पहले जमाने में 70-80 के बाद दिखाई देता था, आजकल काफी जल्दी दिखाई दे रहा है, 40, 45, 50 में भी कैटरैक्स हमको दिखाई दे रहे हैं।
1: इसकी क्या वजह हो सकती है?
0: आई थिंक ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो
1: अच्छा
0: आया है हमारे आंख के सामने, जो पहले नहीं था, ये जो आया है मेरे हिसाब से, तो और कोई कारण मैं सोच नहीं सकता। हाँ, दूसरे कारण, कोई इंजरी हो तो जल्दी हो सकता है, कोई मार लग
1: जी
0: जाए किसी को,
1: जी
0: या डायबिटीज में जल्दी आता है। लेकिन अगर आप ऑलमोस्ट 90% जो है उनको ये सब चीजें नहीं रहती है, और 80% तो जो 80% हैं जो नॉर्मल, जो जिनको और कोई बीमारी नहीं है, उनमें उम्र के वजह से ही आता है। तो धीरे धीरे करके दूर की दृष्टि कम होती है, फिर नजदीक का भी कम होता है। तो उसके अंदर काफी टाइम पेशेंट को पता भी नहीं चलता, क्योंकि अपने आंख पुतली तो अपनी 2.5-3 मिलीमीटर की है, पीछे की लेंस ऑलमोस्ट 8 मिलीमीटर की है। तो मोतिया अगर साइड से शुरू हो जाए और बीच में आने शुरू हो जाए, जब तक के बीच के दृष्टि में नहीं आता, पेशेंट को पता नहीं चलता। या तो काफी मोतिया रहते हैं जो बीच में ही शुरू होते हैं और वहां से फैलते हैं, तो काफी अलग अलग टाइप के हैं। चेकिंग में पता चल जाता है, अगर अब पेशेंट की आंख की रोशनी ठीक हो और चश्मे से अगर उनको सुधार हो जाए, तो हम लोग कहते हैं चश्मा यूज करो, आप 6 महीने 1 साल में आके चेकअप करा लो। या तो, क्योंकि कह नहीं सकते कि कब बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा,
1: जी
0: काफी टाइम हमने पेशेंट देखे हैं जो साल 2 साल बाद आए हैं और उतना ही है, और काफी टाइम तो 6 महीने में वापस आ जाएंगे कि अभी मुझे दिखाई नहीं दिखाई मोतिया बढ़ गया है।
1: जी
0: तो इसका कारण कहना, जैसे कहने मेरे कितने बाल कब जल्दी सफेद होंगे मुझे नहीं पता, तो वैसे ही होता है। और अभी तो ऑपरेशन सरल है, 10-15 मिनट के हैं, ऑपरेशन करके लेंस डाली जाती है, वो परमानेंट रहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, वो किसी भी
1: जी
0: उम्र में कर सकते हैं।
1: तो ये पक्का नहीं है कि एक बार मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद दोबारा नहीं होगा?
0: पक्का है
1: जी
0: दोबारा नहीं होगा, एक ही टाइम कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: एक चीज जो होती है, जो यहां पे हम लोग लेंस डालते हैं, उसके पीछे नए सेल्स तैयार होते हैं काफी टाइम जल्दी, काफी टाइम कई सालों बाद, बिकॉज अपने बॉडी में नए सेल्स आ रहे हैं, जिसको हम लोग जो लेंस बिठाते हैं उसको पोस्टीरियर कैप्सूल, लेंस पीछे के कैप्सूल पे हम लोग लेंस बिठाते हैं,
1: अच्छा
0: उसका ओपेसिफिकेशन होता है, उसको आफ्टर कैटरैक्ट कहते हैं। लेकिन वो मोतिया नहीं रहता, वो नए सेल्स रहते हैं लेकिन वो क्लीन नहीं रहते, तो उसकी वजह से आंख की रोशनी थोड़ी कम होती है। उसके लिए हम लोग लेजर से उसको 30 सेकंड में क्लियर कर देते हैं, कोई ऑपरेशन की वगैरह जरूरत नहीं रहती।
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: अगर आपके किसी के आंख का मोतिया का ऑपरेशन हो जाए, तो दोबारा तो जिंदगी में, या तो फिर बाबा किसी को कहीं दुर्भाग्य से कहीं दुर्घटना हो जाए और फिर वो लेंस निकालने पड़े या चेंज करने पड़े, या कोई इन्फेक्शन हो जाए, दूसरी चीज हो, वरना तो
1: पूरी जिंदगी चलता है।
0: 99% पेशेंट

0: में तो पूरी जिंदगी वही लेंस चलती है, किसी
1: जी
0: भी उम्र में। अभी जैसे मैंने कहा, मुझे 35 साल हो गए। अभी यह हफ्ते मैंने एक पेशेंट देखी, मेरे दोस्त की मदर इन लॉ, जो आई थिंक 98 या 99 में मैंने ऑपरेशन किया था, शी इज 91 ईयर्स ऑफ एज। अब इतने साल हो गए, शी इज फाइन, दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। तो वॉट मोर कैन यू से कि अभी ऑपरेशन होके भी 30 साल हो गए, बट शी इज ओके,
1: जी,
0: शी इज
1: तो
0: 91 ईयर्स
1: इतना
0: ऑफ एज।
1: लंबा वो
0: इतना
1: लेंस
0: अरसा
1: चलता
0: हो
1: है।
0: गया, 91 ईयर्स हो गए उनकी उम्र है अब उनकी, और उनको अच्छा दिखाई दे रहा है, तो लेंस तो अच्छी चली रही है ना
1: जी बिल्कुल
0: जी।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इसमें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए? ये जो मोतिया होता है, इसको एक समय तक बढ़ने के बाद ही ऑपरेशन होता है?
0: बहुत अच्छा सवाल। पहले जमाने में हम लोग को रुकने पड़ता था, कि
1: अच्छा,
0: मोतिया जब तक के पूरा पकता नहीं था, हम लोग उसको हाथ नहीं लगाते थे।
1: आजकल ऐसा नहीं है?
0: आजकल ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि मोतिया कोई भी स्टेज पे उसको आप उसका ऑपरेशन करके कर सकते हैं।
1: पर नेसेसरी कब है उसका ऑपरेशन?
0: नेसेसरी पेशेंट को पता चलता है, कम
1: जी
0: दिखाई दे रहा है,
1: जी
0: पेशेंट को पता चल जाता है कि कम दिखाई दे रहा है। अच्छा, काफी टाइम पेशेंट ये भी कहते हैं, नहीं नहीं चलने दो चलने दो, स्पेशली जो बुजुर्ग रहते हैं। लेकिन मैं उनसे फिर कहता हूं कि इतना भी नहीं रुकना कि आपकी आंख की रोशनी बंद हो जाए। दो चीजें होती हैं कि मोतिया जब पक जाता है तो बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो ऑपरेशन के टाइम भी हमको टाइम लगता है, रिजल्ट्स भी काफी टाइम, सामने की कीकी में सूजन आने के चांसेस है, क्योंकि हम जो यंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं, फेको इमल्सिफिकेशन हो, मोतिया तोड़ने के लिए वो पावर यूज कर रहे हैं आंख के अंदर, उसको
1: जी
0: तोड़
1: जी
0: के
1: तो उसका
0: निकाल के
1: असर।
0: उसको साफ करने के लिए, तो उसका प्रेशर की वजह से। और मैं ऑलवेज कहता हूँ, आपकी आंखों की उम्र आपकी उम्र की तरह है। हम
1: जी
0: सब चाहते हैं हमारी आंखें 18 हों, लेकिन नहीं, अगर आप 60 साल के तो आपकी आंखें भी 60 साल की, तो इट हैज ऑल्सो एज्ड। तो अगर
1: बिल्कुल
0: मोतिया हो और आपके आंख के दृष्टि में आपको तकलीफ हो रही हो, तो कोई भी स्टेज पे आप ऑपरेट करा सकते हैं। अभी सर्जरीज बहुत ही सरल हो गए हैं और रिकवरी बहुत फास्ट हो गई है आजकल, काला चश्मा वगैरह भी निकल गया, टाके वगैरह तो है नहीं इस ऑपरेशन में, 1.8 या 2 मिलीमीटर की इंसिजन रहती है, तो कुछ रिकवरी बहुत फास्ट होता है पेशेंट को। हम तो कहते हैं पहले दिन से आप आंख खोल के सब देखो, जितना जल्दी आप देखोगे उतनी जल्दी आपकी आंख ठीक हो जाएगी। ड्रॉप्स डालने, जैसे दूसरी बात भी है, पहले अगर आपका पैर फ्रैक्चर होता तो प्लास्टर में लगा देते थे 6 हफ्ते टांग ऊपर करके, अभी कौन
1: जी
0: करता है? ऑपरेशन करके आपको बोलेंगे हफ्ते 10-15 दिन में आप चलने शुरू कीजिए।
1: जी
0: आंख का भी वही है कि आप जितने जल्दी उसका इस्तेमाल करेंगे, हम कर क्यों रहे हैं ऑपरेशन आपका, आपको
1: बिल्कुल
0: दृष्टि देने के लिए।
1: करेक्ट।
0: और उसके बाद भी अगर आप बोलेंगे नहीं मैं काला चश्मा पहन के बैठूंगा, मैं बाहर नहीं देखूंगा, टीवी नहीं देखूंगा, तो फिर आपको ही तकलीफ होनी है ना।
1: एक बात बताइए डॉक्टर साहब, कि जो लोग ज्यादा अवेयर नहीं है, जिनके मोतिया का पता देर से चलता है या नहीं चलता, और वो उसी तरह से कैरी ऑन करते चले जाते हैं, तो ये पुराना मोतिया किस तरह बिगड़ सकता है और आंखों को किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है?
0: देखिए, जब ये मोतिया जो है ना, एक हद तक ही आंख में झेल सकता है,
1: जी
0: क्योंकि क्या होता है, वो एक पके हुए फल की तरह है। पका हुआ फल पेड़ से क्यों गिरता है? क्योंकि आजू बाजू से वो मॉइस्चर, उसका जो कवरिंग रहता है, उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, वो
1: जी
0: मॉइस्चर बाहर का जो वातावरण रहता है वहां से पानी खींचता है और वो गिर जाता है, सही, अगर आप उसने तोड़ेंगे नहीं तो।
1: बिल्कुल
0: आंख में वही होता है कि अगर एक हद के बाद अगर आपने वो नहीं किया, जिसको हम लोग हाइपर मैच्योर यानी नॉर्मल से भी आगे निकल गई है केस, मैच्योर का ट्रैक तो मैच्योर हो गया,
1: जी
0: ये
1: बिल्कुल
0: हाइपर मैच्योर हो गया, ज्यादा बुजुर्ग हो गया,
1: जी
0: तो वहां पे क्या होता है कि यही होता है कि जो लेंस की जो कवरिंग है वो धीरे धीरे करके पिघलने चालू होती है, आंख का जो बीच में का पानी है वो अंदर जाता है और वो फूल जाता है। अगर हम कहें कि पेड़ पे से तो फल नीचे गिर सकता है, आंख में कहाँ गिरेगा, आंख में जगह कहाँ है,
1: बिल्कुल
0: तो अगर आंख में फट गया तो आंख का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा,
1: जी
0: आंख के अंदर बम फोड़ दिया आपने, क्या होगा आंख का, इमरजेंसी में ऑपरेशन करने पड़ती है। उसके बाद भी दृष्टि आएगी नहीं आएगी, कि जैसे हमने पहले ही कहा, अगर पीछे की नस, मेन चीज पीछे की नस है, प्रेशर ज्यादा हो गया, आप पत्थर रख दो आपके हाथ के ऊपर, कब तक सहलेगा?
1: जी
0: उसके बाद बड़ा वाला पत्थर रखो तो वो पीछे की नस खत्म हो गई, तो गई दृष्टि, फिर ऑपरेशन करने के बाद भी नहीं आएगी।
1: जी
0: तो
1: जी
0: सही टाइम पे इसका, कोई भी बीमारी में सही टाइम पे इलाज करना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक जरूरी बात की तरफ अब मुड़ते हैं, और वो है नेत्रदान।
0: जी
1: हम सभी को नेत्रदान के लिए एक फॉर्म भरना होता है।
0: जी
1: किसी की मृत्यु हो जाती है तो कितने देर तक आंखें दान की जा सकती हैं, और कैसे कहां जल्दी से संपर्क करके प्रोसेस किया जाए?
0: जी बहुत जरूरी है
1: जी।
0: सिर्फ नेत्रदान नहीं,

0: अगर बाकी के भी जो भी ऑर्गन्स अगर काम कर रहे हैं तो काफी लोगों को जिंदगी दे सकते हैं।
1: जी।
0: नेत्रदान में एक बात समझनी जरूरी है कि आंख का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होता है। नेत्रदान में पूरा आंख नहीं इस्तेमाल होता, सिर्फ सामने की कांच जो कॉर्निया है वो इस्तेमाल होती है। तो एक किसको फायदा होगा?
1: जी
0: जिन लोगों की आंख की दृष्टि अगर कम हो गई है सामने की कांच की किसी बीमारी के वजह से या दुर्घटना के वजह से या किसी और कारण वजह से, तो उनमें ही ये काम आएगा नेत्रदान जो हम करते हैं। और वो बहुत लोग हैं जिनको फायदा हमने देखा हुआ है, वो ऑपरेशन करके। काफी सेंटर्स हैं आजकल तो ऑनलाइन, आप आपके नजदीक में जो भी हो आप सिर्फ डाल दो, गूगल कर दो, तो आपको वो आके जितने जल्दी करें वो, आप टाइम तो रहेगा, आप बोलो 10 घंटे 12 घंटे, सवाल वो नहीं है। अगर सामने की कांच सूख गई, इसलिए आंख बंद कर देते हैं ना
1: जी
0: आंख
1: जी
0: देहांत होने के बाद, तो भी वो तो आंसू की प्रक्रिया तो बंद हो जाएगी, और सामने की कांच अगर सूख गई तो गई। तो जितने जल्द हो सके, अगर आप पूछे तो टेक्निकली आवर्स बियर्स में बात करना कोई अर्थ ही नहीं है।
1: जी
0: जितने जल्द हो सके कांटेक्ट करने नियरेस्ट आई बैंक को, 24 आवर्स चालू रहते हैं वो, सभी जगह पे हैं, तो तुरंत आके वो लेके जाते हैं। और तुरंत वेटिंग लिस्ट बहुत होती है, तो इमीडिएटली उसका ऑपरेशन हो जाता है, और आपके वजह से किसी ना किसी को आपकी दृष्टि आ सकती है।
1: जी वही मैं उसी बात पर आना चाहता था कि
0: जी
1: ये एक छोटा सा कदम
0: जी
1: किस तरह से लोगों का भला कर सकता है, क्योंकि कई लोग अवेयर नहीं होते और नेत्रदान की जो प्रक्रिया है वो उतनी फास्ट नहीं है हमारे देश में,
0: सही
1: लोग
0: है।
1: उस तरह से इस बारे में सोचते नहीं है।
0: नहीं, बहुत जरूरी है करना, क्योंकि अगर जितने जल्द करेंगे, मैं भी जानता हूं कोई किसी का देहांत हो तो ये काफी टाइम तो ये सोचा भी नहीं जाता, क्योंकि
1: जी
0: सबको दुख रहता है, पता नहीं क्या सिचुएशन में किसी की मृत्यु हो गई है। लेकिन अगर पहले से कुछ सोचा गया है कि किसी को करना है, या किसी ने कहा है कि मेरे जाने के बाद आप मेरे नेत्र दान करो या आप मेरे शरीर के बाकी ऑर्गन्स का दान करो, तो उनकी इच्छा सोच के अगर एटलीस्ट फैमिली के एक मेंबर ने अगर इनिशिएटिव ले ले तो बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। आप सोच भी नहीं सकते कितना फर्क पड़ेगा, कितनों को फर्क पड़ेगा। अगर किसी इंसान की दोनों आंखें खराब हो गई, एक आंख से भी दृष्टि दे तो जिंदगी निकल जाती है ना।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: एक हाथ एक पैर निकल जाए तो भी चलता है, लेकिन दृष्टि निकल जाए तो आप सोचिए कितनी
1: जी
0: दिक्कत होती है।
1: जी तो
0: उनके
1: इससे
0: लिए
1: बहुत
0: भी
1: लोगों की मदद हो सकती है।
0: बहुत लोगों की मदद हो सकती है, लाखों की।
1: जी डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स इंजरी की बात करते हैं,
0: जी
1: आंखों में किस तरह की स्पोर्ट्स इंजरी आप देखते हैं छोटे बच्चों से लेकर फिर आगे बढ़ती उम्र तक?
0: ये नॉर्मल है। आई
1: जी
0: मीन कोई भी इंजरी हो, हम आजकल नया नाम आ गया है स्पोर्ट्स इंजरी,
1: जी
0: लेकिन कोई भी इंजरी आंख के लिए इंजुरियस है। क्रिकेट बॉल हो, कुछ भी हो, हमारे टाइम गिल्ली डंडा हुआ करता था विच वॉज परफेक्ट, जो आंख में जाके बैठ जाता था, अभी है नहीं।
1: जी
0: लेकिन क्रिकेट बॉल हो, कोई भी, इवन अ स्मॉल प्लास्टिक बॉल हमने देखा हुआ है वो खेलते टाइम, घर में खेलते टाइम, टेबल टेनिस खेलते टाइम। प्रॉब्लम ये है कि आंख में कहां पे लगे और कैसे लगे, ये बहुत जरूरी है। काफी टाइम हमने बड़े बड़े इंजुरीज देखे हैं लेकिन आंख बच गई है,
1: जी
0: काफी टाइम हमने एकदम छोटी सी इंजुरी देखी और आंख में भयानक चीज हो गई है। तुरंत किसी को बताना बहुत जरूरी हो
1: जी
0: कि आंख में अगर किसी को लग जाए तो तुरंत चेकअप, कहीं भी नजदीक अस्पताल सभी जगह तुरंत जाके जांच करवा लीजिए, उसको डिले ना करना,
1: क्योंकि
0: ये
1: ये कुछ भी खतरनाक हो सकता
0: बहुत
1: है।
0: खतरनाक होता है। और एक और इंजरीज हम बहुत देखते हैं, इंडस्ट्रियल इंजरीज। ये बॉम्बे में
1: जी
0: तो स्पेशली जो भी, लेट से जहां पे ये फैक्ट्रियां
1: फैक्ट्रियां हैं
0: हैं या छोटे छोटे वर्कशॉप्स भी हैं जहां पे ग्राइंडर का काम करते हैं, मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं, उसके
1: जी
0: आंख में वो छींटे उड़ जाते हैं ग्राइंडर के,
1: जी
0: वो ग्राइंडर पे करते टाइम वो मेटल के छींटे उड़ते हैं। मैं 1000 टाइम उनसे कहता हूं आप कोई प्रोटेक्टिव ग्लास यूज कीजिए, ₹50 का आता है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन वो
1: बिल्कुल
0: हमारा सेट नहीं रहता, सेट नहीं देगा। अपने देश में लाइफ इज वेरी चीप, सेट नहीं देगा। आप ₹50, आप जाके कहीं पे भी ₹50 उड़ा देते हो, आंख के लिए एक प्रोटेक्टिव
1: खुद
0: ग्लास
1: नहीं
0: यूज
1: कर
0: करो।
1: सकते
0: और
1: लोग।
0: एक और चीज मैं देखता हूं कि ज्यादातर होते, कि ये मैं अभी तक समझा नहीं हूं, कि कोई वेल्डिंग कर रहा है, आपने देखा रहेगा वो गॉगल पहनते हैं, उसके बाजू में एक बंदा खड़ा रहता है बगैर गॉगल के उसको देखते हुए,
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने।
0: ज्यादातर उसकी आंखों में उड़ता है,
1: हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स,
0: बिकॉज ही इज थिंकिंग मैं काम नहीं कर रहा तो मेरे आंख में नहीं उड़ेगा।
1: हाँ
0: तो
1: बिल्कुल
0: ये कहीं पे भी वेल्डिंग इंजुरीज बहुत ज्यादा है, एंड पीपल हैव
1: जी
0: लॉस्ट देयर आइज। तो बहुत, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि प्रोटेक्टिव ग्लासेस, सेफ्टी अपने देश में अभी तक ये कंसेप्ट,
1: ये छोटे बड़े वर्कशॉप, ये इंडस्ट्रीज, यहाँ कोई सेफ्टी मेजर्स आंखों के, खास तौर
0: आंखों
1: पर
0: के, वो रखना बहुत, अभी तो एटलीस्ट हम देखते हैं कि हेलमेट्स आ गए हैं।

0: जी
1: बाकी चीजें आ रही हैं, लेकिन आंखों के बारे में बहुत कम मैं देखता हूं कोई सेफ्टी गॉगल्स पहन के काम कर रहे हैं। न कारपेंटर्स काम करते हैं, न इलेक्ट्रिशियंस काम करते हैं, न ग्राइंडर्स काम करते हैं, कोई सेफ्टी गॉगल्स यूज नहीं करता।
0: जी
1: 50 रुपए का मिल जाता है, हाउ मच इज इट?
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब आपने गॉगल की बात की तो मैं उस सवाल पर भी आना चाहता हूं
1: जी
0: कि ये जो रोड साइड तरह तरह के चश्मे मिलते हैं करामाती, ये कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं फैशन के चक्कर में
1: खतरनाक
0: जो
1: नहीं है,
0: लोग।
1: फैशन है, उसके आगे गया है। टोपी खरीद लो, ऐसी उसी को खरीदो।
0: लेकिन ये आंखों को नुकसान पहुंचा सकते
1: ना
0: हैं।
1: ना ना ना, नो नो नो, नहीं, वो दैट इज सी, वो कलर कलर ग्लासेस है,
0: जी
1: प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस नहीं है। देखिए, जब हम नंबर देते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस होते हैं, वो आप कहीं से भी खरीदो तो प्रॉब्लम है गलत वाले।
0: जी
1: ये जो रोड साइड वाले हैं, इट्स लाइक बाइंग अ हैट ऑन द साइड ऑफ द रोड। आप
0: अच्छा
1: टोपी खरीद रहे हो, उसके साथ आप एक कोई पीले रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का आप खरीद लो, फैशन के लिए है।
0: जी जी जी
1: कोई पूरे दिन पहन के घूमने नहीं वाला है,
0: हाँ
1: कहीं
0: वो
1: गया है पिकनिक के लिए तो दे विल वेयर इट फॉर दैट टाइम एंड इट विल बी डिस्कार्डेड। उसके आगे कुछ नहीं, उसके वजह से कोई नुकसान तो नहीं होगा, वो फैशन है, उसके आगे कुछ नहीं है।
0: जी बिल्कुल। इंडस्ट्रियल इंजरी की स्थिति में क्या ऐसा हुआ है कि कोई मरीज पहुंचने में पहुंचाने में देर कर दी गई हो और उसके लिए वो घातक हो गया?
1: हाँ, काफी टाइम होता है, काफी
0: जी
1: टाइम होता है। आंखों में जितने जल्दी आप उसकी ट्रीट, सपोज लेट्स कहिए कि किसी को आंख में इंजरी हो गई और सामने की कांच फट गई या उसके अंदर कुछ चले गया, ये बहुत जो घातक इंजरी होती है आंख की, जो मार लगता है, जितने जल्दी उसको क्लीन करके उसका ऑपरेशन हो, आंख बचा सकते हैं हम। अगर थोड़ी भी देर हो जाए या एक दिन निकल जाए तो कुछ नहीं कर सकते, और इतना बुरा लगता है कि यार इसकी आंख हम बचा सकते थे
0: जी
1: लेकिन अभी बहुत लेट हो गया। उसके बाद फिर सारे डायलॉग सुनाई देते हैं कि ये करना चाहिए था, वो करने चाहिए था, हमने इतना खर्चा किया लेकिन आंख तो चली गई। कोई आके बताता नहीं है कि आप टाइम पे पहुंचे नहीं वहां पे, कि आपने तुरंत ये नहीं करना था, आप कोई जाके केमिस्ट से कोई दवाई लेके डाल दी आंख में, 2-3 दिन तक आपने वैसे ही, ठीक है मजबूरी भी होगी, मैं ना नहीं कह रहा हूं, सबकी गलती नहीं रहती, कहीं पहुंच नहीं सकते या पैसे का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन सभी जगह तो चिकित्सालय है, मुफ्त भी है ना अपने देश में, तो
0: बिल्कुल, जल्दी से मेडिकल हेल्प लेनी
1: लेना
0: बहुत ज्यादा
1: बहुत
0: जरूरी है।
1: जरूरी है, बहुत
0: जी
1: जरूरी है।
0: बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहां एक गाना सुनते हैं आंखों
1: जरूर
0: से जुड़ा हुआ, और उसके बाद आगे की बात
1: जरूर।
0: करते हैं।

डॉक्टर साहब, बारिश के मौसम में हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं और बारिश के मौसम से जुड़ी हुई आंखों की एक समस्या है, आंखों का आना। ये क्या है और इससे कैसे बचा?

0: जा सकता है, ये इसका क्या उपाय है?
1: जी, ये ज़्यादातर जिसको हम लोग कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, या कंजंक्टिवाइटिस है ना, हमने जो कंजंक्टिवा है, जो आँख के साइड के जो एरिया है उसके अंदर सूजन आना,
0: जी
1: तो टिपिकल बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस जो हम सबको बचपन में हुई है, आजकल

0: जाता है, एलर्जीज भी बहुत आ गए हैं।
1: क्या ये जो लगातार रीडेवलपमेंट या इंडस्ट्रीज की वजह से जो डस्ट उड़ती है उसका भी आंखों को नुकसान?
0: सबसे ज्यादा।
1: ओहो,
0: सबसे ज्यादा। अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। एक आदत हम सब में हमने देखी है, हम आंख खोल के पानी मारते हैं।
1: हाँ,
0: मेहरबानी करके बंद कीजिए।
1: ओहो,
0: अपने आंसू और बाहर का पानी एक नहीं है, अपने आंसू और गंगा जल भी एक नहीं है। अपने आंसू एक दवाई है जो प्रकृति ने अपने आंखों को स्वच्छ रखने के लिए रख दी है, अपने आंखों को निरोगी रखने के लिए दिए। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल्स रहते हैं आंख के अंदर, और वो अपने आंख को प्रोटेक्शन देता है। अपने आंसू सबसे ज्यादा कीमती चीज है
1: जी।
0: तो हर टाइम जब हमारी आंख खोल के, जैसे हमने अब कंप्यूटर विजन के विजुअल के बारे में, हम आंख खोल के बंद करते हैं, ये अपना एक वाइपर है जो अपनी आंख को साफ कर रहा है
1: जी।
0: तो जब कभी हम दवाई डालते हैं तो अपने नाक से हलक में आती है, बाहर से तो नहीं आती
1: जी।
0: तो हर टाइम जब भी हम आंख झपकते हैं तो एक नया आंख का पर्दा तैयार हो रहा है, आंख अपने आप से साफ कर रहे हैं। आप पानी क्यों मार रहे हैं? पानी मारने में क्या होता है, कोई गर्म पानी तो नहीं मारेगा, ठंडा पानी मारेगा
1: और वो तेज तेज
0: तेज मारेगा। उसके वजह से क्या होगा, आपने भी किया होगा, आपकी आंख में और जलन होगी और आंसू बाहर आएंगे। जलन क्यों होती है? क्योंकि जो सामने की जो आंसू का पर्दा है वो टूट गया, सामने की कांच पे जाके पानी लग गया है तो दिमाग को बहुत तकलीफ हो गया है।
1: तो ये किसी भी परिस्थिति में आंखों के ऊपर,
0: किसी भी परिस्थिति में। और गर्म आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि दिमाग गर्म आंसू भेज रहा है ठंडा बाहर फेंकने के लिए।
1: ओके,
0: तकलीफ हो रही है
1: जी जी जी
0: आंख को
1: जी।
0: पानी मारने में आंख में कचरा जाए और पानी मारे तो ठीक है, लेकिन वो कचरा वो पानी की वजह से नहीं निकलता, जो ज्यादा आंसू तैयार होते हैं वो उसको बहा देते हैं
1: जी।
0: जब हम सोते हैं और सुबह उठते हैं तो आंख में से थोड़ा सा मैल निकलता है
1: जी।
0: अब आप सोचिए, सभी लोग स्वच्छ वातावरण में सो रहे हैं, शहरों में पंखा है, एसी है, धूल नहीं है, घर के अंदर तो नहीं है, बाहर है लेकिन अंदर नहीं है, फिर सुबह क्यों मैल आनी चाहिए? हम रास्ते पे चल रहे हैं, थोड़ी मैल आ रही है आंख में से। क्योंकि रात में जब हम सोते हैं तो अपने रे आंसू का प्रभाव 70% से कम हो जाता है
1: जी,
0: इसीलिए सुबह थोड़ी मैल निकलती है जमा हुई।
1: दिन में नहीं निकलती,
0: दिन में नहीं निकलती, उल्टा होनी चाहिए ना। आप धूल में चल रहे हैं तो आपको तभी होनी चाहिए
1: जी।
0: तो मेन चीज मैं सारे पेशेंट्स को कहता हूं, मेरे आंख को अकेले छोड़िए, आंख को तकलीफ नहीं देना, आंख आपको उससे भी ज्यादा तकलीफ देगी।
1: ओके,
0: जितना हो दवाई अवॉइड कीजिए।
1: हाँ,
0: जरूरत हो तो जरूर दवाई डालिए। काफी पेशेंट नहीं नहीं आंख लाल हो गई है, वायरल है, देख लेते हैं। हम नेचुरली इसको फाइट करेंगे, मत कीजिए आंखों में, प्लीज मत कीजिए। क्योंकि आंखों में कहीं इन्फेक्शन बैठ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे,
1: तुरंत डॉक्टर के पास
0: तुरंत जाइए। लेकिन बाकी जो है, जो आजकल जैसे मैंने कहा है, जो 500 पीएचडी जो कह रहे हैं कि आप में आप ये डालिए वो डालिए, ये सुरमा डालिए वो डालिए, जितना हो आंख को अकेले छोड़िए। अगर आपको लेडीज आईलाइनर यूज करती हैं, पहले काजल यूज किया जाता था, अंदर से लगाते थे, वो बहुत जलता था
1: जी जी।
0: हमारे माओ ने सबको किया, हम छोटे
1: लड़कों को भी,
0: लड़कों को भी, हमको भी हुआ है और बहुत जलता था, मुझे याद है। आईलाइनर आ गए हैं जो काफी सेफ है लेडीज के लिए
1: जी,
0: जो बाहर से लगते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन,
1: यस,
0: वहां पे लगाइए। जितना हो आंख को अकेले छोड़िए, ये सबसे मेरी विनती है, जितना हो अपने आंख को अकेले छोड़िए
1: जी।
0: हाँ, भगवान ने बहुत प्रोटेक्शन दिया है आंख को
1: जी।
0: सोचिए, आपके खुद के आंख में आप उंगली डाल सकते हैं?
1: नहीं।
0: क्यों? नाक में तो डाल सकते हैं, कान में, मुंह में डाल सकते हैं, आंख में क्यों नहीं डाल सकते आप?
1: क्योंकि सबसे नाजुक,
0: सबसे नाजुक चीज है। बहुत बढ़िया, सबसे नाजुक चीज है, उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन है। आप सोचिए, आपके खुद के आंख के अंदर आप उंगली नहीं डाल सकते
1: जी।
0: हाँ, आपको अगर पागलपन करना हो, आपको इंजुरी करना हो तो दूसरी बात है, नॉर्मल कोई भी अपनी आंख के अंदर उंगली डाल नहीं सकता
1: जी।
0: वेरी सिंपल
1: जी।
0: सो लीव योर आइज अलोन, अकेले छोड़िए।
1: बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि आंखों में पानी के छींटे नहीं डालने चाहिए। मुझे लगता है कि लगभग सभी लोग ये करते आए हैं
0: जी जी। और ये मुझे कहा गया है कि ये खतर योग में ये करते हैं। आई टोल्ड हिम, आपको अगर थकावट हो रही है
1: जी,
0: आंख बंद करके ठंडे पानी मारिए, इफेक्ट वही है।
1: हाँ,
0: आप रुमाल ठंडे पानी में डाल के आंख के ऊपर रखिए, इफेक्ट वही है।
1: लेकिन खुली आंखों के ऊपर,
0: खुली आंखों की वजह से नहीं। हाँ, और वो क्या करते हैं, वो स्पा में जाइए, कागड़ी रखते हैं, सेम चीज है क्या, आंख बंद कर रहे हैं। जब आप आंख बंद करेंगे तो ये सिस्टम बंद हो रही है, आंख को आराम आ रहा है
1: जी।
0: काकड़ी ठंडी रखेंगे, कोई गरम नहीं रखेंगे, ठंडा तो कोई रखता नहीं है, ठंडी वाली रखेंगे।
1: सही है।
0: तो ठंडा क्या होता है, तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं ना
1: जी।
0: जब ठंड होता है, जैसे स्पोर्ट्स इंजुरी की बात कर रहे थे, पहली चीज क्या लगाते हैं, बर्फ लगाते हैं ना
1: जी।
0: गर्म थोड़ी लगाते हैं, वहां पे हॉट वाटर बैग नहीं लगाएंगे ना आपको।

0: लग गया तो गुजर गए तो पहला खेलते टाइम तो पहला बर्फ लगाएंगे ना
1: जी।
0: बर्फ क्यों लगाते हैं? क्योंकि ब्लड वेसल्स को हम कंस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं ना
1: जी जी,
0: उसको हम कम करना चाहते हैं। सेम चीज है आंख के लिए, आप आंख बंद रख के कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुंह धोते टाइम नहाते टाइम थोड़ा जाता है वो तो नॉर्मल है
1: जी।
0: ओके नहाते टाइम तो हम आंख बंद करते हैं लेकिन थोड़ा तो पानी जाएगा ही, वो तो ठीक है। इसलिए तो आंख शावर के बाहर आने के बाद आंख लाल होती है, क्यों हो रही है?
1: बिल्कुल, क्योंकि वो पानी
0: सेम पानी आंख को अकेले छोड़िए, बेस्ट ट्रीटमेंट
1: जी। बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई है। यहां पर एक गाना सुनते हैं, खामोशी फिल्म का गाना। हमने देखी है इन आंखों की बहती खुशबू, गुलजार साहब का गाना जी।

0: डॉक्टर साहब, बहुत सारी जरूरी बातें हमने की। चूंकि ये जमाना जो है ये आधुनिकता का जमाना है, बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां इन दिनों में देखी जा रही हैं। आंखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस कौन सी हैं जिनकी आप चर्चा करना चाहेंगे?
1: आंखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस बहुत कम है
0: जी,
1: और अनफॉर्चुनेटली वो डायग्नोज भी नहीं होती। काफी टाइम ट्यूमर्स रहते हैं, आंख के अंदर भी ट्यूमर्स रहते हैं, या पीछे की पर्दे की अलग अलग बीमारियां रहती है, पैदाइशी बीमारियां रहती है पीछे के पर्दे की। एक बीमारी है जिसको हम लोग रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं। आपके लास्ट AIR में एक लिसनर ने मुझे फोन करके पूछा भी था, जिसके वजह से पीछे के पर्दे को जो खून आता है वो खून पेशियां सूख जाती है।
0: ओके,
1: तो वो जो है और वो प्रोग्रेसिव है, बचपन में शुरू हो जाती है और काफी टाइम पेशेंट 25-30 तक अंधे भी हो सकते हैं, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता। तो ऐसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, ये है, तो काफी रेयर डिजीज है। लेकिन एक चीज हमारे कन्वर्सेशन में रह गया, वो बहुत बहुत जरूरी आजकल के जमाने में, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं।
0: जी जी हाँ, उसका जिक्र हुआ था और हाँ, उसकी बात करनी जरूरी।
1: वो बहुत, बिकॉज रेयर तो ठीक है
0: जी,
1: ये कॉमन, मेरे हिसाब से रेयर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेटिनोपैथी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज बहुत बढ़ रहा है, मधुमेह बहुत बढ़ रहा है अपने देश में। आई थिंक वी आर द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड डायबिटीज का।
0: जी, जी।
1: एक और कारण होगा, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन इतनी है
0: जी,
1: तो ऑब्वियसली उतने ज्यादा लोग होंगे। तो डायबिटीज, अभी आप भी सभी जानते हैं कि डायबिटीज की वजह से क्या क्या बीमारियां होती है। सरल मैं आपको बता देता हूं, आंखों में डायबिटीज में मोतिया जल्दी आ सकता है, ग्लोकोमा कांच बिंदु में बढ़ावत हो सकती है, और सबसे खतरनाक है डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी क्या? रेटिना यानी अपना पर्दा, पर्दे में आने वाली सूजन। तो हमारे बॉडी में लाखों अनगिनत करोड़ों सेल्स हैं
0: जी,
1: ये सेल्स जो हैं वो हमारे बिल्कुल जैसे एक दीवार में जो ईंटें रहती हैं और उसके बीच में सीमेंट रहता है, वैसे सेल्स हैं। तो जब कभी अपने बॉडी में डायबिटीज, बीमारी क्या है, हम कहते हैं डायबिटीज शुगर बढ़ने की बीमारी है, डायबिटीज बॉडी में इंसुलिन कम होने की बीमारी है, शुगर बढ़ने की बीमारी नहीं है।
0: जी जी,
1: क्योंकि अपने बॉडी में हम जिंदा शुगर पे और पानी पे, ये अपना पेट्रोल है।
0: बिल्कुल,
1: हमारे दिमाग में एक पॉइंट है जिसको हंगर सेंटर कहते हैं। जब बॉडी का शुगर कम होता है, दिमाग सिर्फ शुगर पे चलता है।
0: जी जी,
1: आप कोई भी चीज खाओ, करेला भी खाओ, इट टर्न्स इनटू अ डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर।
0: ऑफ कोर्स,
1: तो वो हंगर सेंटर जो रहता है, जब हमारा शुगर लेवल ड्रॉप होता है, इसलिए आप उपवास करें या कुछ करें तो चक्कर आने चालू होते हैं, ये होते हैं, क्योंकि दिमाग को शुगर कम हो रहा है। तो हम कुछ खा लेते हैं, उसके बाद वहां पे दिमाग में एक सैटाइटी सेंटर है कि बाबा ये शुगर लेवल नॉर्मल हो गई, ठीक है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में, इसीलिए हमको शुगर चाहिए। और

0: का जो संतुलन होता है ये इंसुलिन करता है जो पैंक्रियाज में है। हम जब कभी खाते हैं इंसुलिन आ जाती है और उसको लेवल बराबर ला जाती है। तो जिनको डायबिटीज है जेनेटिकली हो या किसी और चीज के वजह से हो, उनका इंसुलिन लेवल जो है वो ड्रॉप होने चालू होता है। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हम डायबिटिक है, हम गोलियां टाइम पे खाते हैं, हम वॉक के लिए जाते हैं, हम मीठा नहीं खाते, तो भी हमारा शुगर जो है वो बढ़ रहा है, ये क्यों हो रहा है, शक्कर क्यों बढ़ रही है। उनको ये समझना जरूरी है कि आपका शुगर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी इंसुलिन और घट रही है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये बहुत ही जरूरी है समझना कि आपकी इंसुलिन घट रही है तो ऑब्वियसली आपकी शुगर बढ़ेगी।
1: बिल्कुल,
0: ये जो तराजू है वो मेंटेन नहीं हो रहा,
1: वो बैलेंस नहीं है।
0: हाँ, बैलेंस नहीं है, और एक हद के बाद शायद प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है इंसुलिन का, तो ऑब्वियसली वो पेशेंट को इंसुलिन लेना पड़ता है इंजेक्शन के द्वारा। अभी भी इंसुलिन की गोली आई नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो उनको इंसुलिन लेना पड़ता है उसको संतुलित में लाने के लिए। अच्छा ठीक है, मेरी शुगर बढ़ रही है, क्या फर्क पड़ता है मुझे, बढ़ने दो। प्रॉब्लम क्या होता है कि अपना शरीर जो है उसका प्रोसेसिंग एक लेवल है, जैसे हमने देखा है अभी बहुत बारिश गिर गई तो क्या हो गया, बांध के ऊपर से पानी आ गया
1: जी,
0: ठीक है। अपना बॉडी का भी एक बांध है जिसको रीनल या किडनी का थ्रेशोल्ड कहते हैं। जैसे एक पानी बढ़ता है तो हम छोड़ देते हैं उसको पानी, अपने बॉडी में 180 या 200 के ऊपर शुगर जब होती है तो बॉडी उसको पेशाब में से निकाल देती है
1: जी।
0: इसीलिए पेशेंट का पेशाब चेक किया जाता है डायबिटीज का।
1: हाँ,
0: पेशेंट पूछते हैं हमको खून की बीमारी या पेशाब क्यों चेक कर रहे हैं, सही है, लेकिन ये इसकी वजह से चेकिंग होता है क्योंकि वहां से वो निकलते जाता है। तो इसलिए आप देखें डायबिटिक्स में यूरिन प्लस टू प्लस थ्री आती है हाई डायबिटिक्स में
1: जी।
0: अच्छा पेशाब से निकल रहा है, अच्छा है ना, बाहर निकल रहा है तो क्या, नहीं नॉन डायबिटिक्स में तो नहीं जा रहा, डायबिटिक्स में जा रहा है, तो इसके लिए डायबिटिक्स को किडनीज की बीमारी ज्यादा होती है
1: जी जी
0: ठीक है। इंसुलिन जो है वो हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा रहेगा आपके कोई रिलेटिव का कोई बड़ा सर्जरी हो गया, वो ही और शी वाज वो डायबिटिक है, उनको इंसुलिन पे रखा जाता है थोड़े दिन तक, फिर बाद में टैबलेट्स पे वापस लाते हैं। क्यों लाते हैं, क्योंकि बॉडी के हीलिंग के लिए इंसुलिन सब जरूरी है
1: जी जी
0: ओके। आंखों में क्या होता है, आंखों में पीछे के पर्दे में बहुत बहुत ज्यादा सेल्स है
1: जी
0: ठीक है। वो सेल्स के बीच में का, अभी सिंपल चीज है, बॉम्बे में एक शब्द सबको पता है, ये शायद अपने देश में सभी भी हुआ, मुंबई में एक शब्द सबको पता है, लीकेज, सभी के घर में लीकेज है
1: जी।
0: बड़े बड़े टावर से लेके झुग्गी झोपड़ी में सबके घर में बारिश जब होती है या तो किसी कारणवश ऊपर वाले के यहां से लीकेज आता है
1: जी जी।
0: ये लीकेज जो रहता है आंखों में किस चीज का लीकेज होगा, डायबिटीज में क्या होता है कि ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी जो सेल्स के बाहर का एरिया एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया वो इंट्रासेलुलर शिफ्ट करता है। जब शुगर नॉर्मल होती है तो ये दोबारा वापस जाता है ठीक है, लेकिन जब तक कि ये यहां हो ये तकलीफ देने वाला है। ऑलराइट, तो आंखों में सेल्स जो है उसके बीच में का सीमेंट जो है वो निकल जाता है। अभी आपके घर में पानी की पाइपलाइन जा रही है, अगर आपका सीमेंट पुखर जाए तो आपको पानी का लीकेज होगा, आंखों में खून पेशी जा रही है तो लीकेज किस चीज का, ब्लड निकल आता है
1: जी।
0: तो ब्लड के छींटे आते हैं पीछे के पर्दे में, उसकी वजह से पीछे के नस में सूजन आती है जिसको हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, और जो सेंट्रल एरिया मैक्यूला जहां पे लाइट जाके लगता है और जहां से दिमाग तक जाता है वो एरिया में एक भी खून पेशी नहीं है। वरना हमको सारी खून पेशी अभी तो दिखाई नहीं देता ना, कुछ भी क्लियर दिखता है क्योंकि वहां के कुछ कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो एरिया में खून पेशियां आए या खून आए और सूजन आए तो आंख की दृष्टि तो कम हो ही है आपकी
1: बिल्कुल,
0: और ज्यादा कहीं खून पेशी फट जाए जिसको हम लोग विट्रियस हेमरेज कहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर ऑपरेशन इंजेक्शन ये सब चीजें होती है। और 8 या 10 साल जिसका भी डायबिटीज जिनको है आंख का चेकअप कराना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पता नहीं चलता। हमारे पास पेशेंट आते हैं जब आंख में पीछे में ऑलरेडी खून जमा हो गया है
1: जी,
0: उनको पता है सडनली आंख में एक दिन रोशनी कम होती है, चेकअप के लिए आते हैं, देखते हैं कि खून आ गया है, पूछते हैं शुगर कितना है, सर 300 साढ़े 300 चल रहा है, तो शुगर जो है आपको कुछ भी करो लेकिन खाना खाने के बाद 200 के नीचे रखो और रेगुलर चेकअप करना। आजकल हमारा बाकी भी चेकअप्स है जो आपको 3 महीने का ये सब आपको देते हैं वो लोग, लेकिन चेकअप करना बहुत जरूरी है डायबिटिक्स को। शुगर कंट्रोल, डायबिटीज सबसे खतरनाक बीमारी है सर
1: जी।
0: डायबिटीज की दो ही चीजें, या तो आपके साथ ऊपर जाती है आपको ऊपर लेके जाती है, तीसरा नहीं है
1: जी।
0: डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये शरीर की कमजोरियां हैं, ये सर्दी बुखार नहीं है कि आप क्रोसिन लो डोलो लो एंटीबायोटिक लो ये चले जाने वाली है,
1: इनके साथ सावधानी से जीना पड़ता है,
0: इनको कंट्रोल करना पड़ता है
1: जी।
0: ये क्योर नहीं होती अनफॉर्चुनेटली,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि शरीर की कमजोरियां हैं तो ये क्योर नहीं होती
1: जी,
0: इनको कंट्रोल करते हैं हम।

0: जी, सो डायबिटिक रेटिनोपैथी भी, जैसे आपने जो भी मुझसे पूछा, और आजकल हम लोग इतने पेशेंट देख रहे हैं और हम सोचते हैं कि आई यार ये एक साल पहले आया रहता तो हम लोग इसकी आंख की रोशनी बचा सकते थे, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, जो बची कुची रोशनी है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दो अलग अलग चीजें हैं ना।
1: बिल्कुल
0: नॉर्मल
1: बिल्कुल
0: दृष्टि अलग है कि आपको सब अच्छा दिखाई दे रहा है,
1: जी
0: और एक है कि आपको जो बचा कुचा है वो दिखाई दे रहा है। हम तो चाहते हैं कि सबको अच्छा दिखाई दे जिंदगी भर।
1: बिल्कुल। और इसके लिए जरूरी है कि जिन लोगों को डायबिटीज है वो नियमित रूप से अपनी आंखों का चेकअप
0: बहुत
1: कराएं
0: जरूरी है
1: ताकि उनकी आंखें स्वस्थ रह सकें
0: जी
1: और किसी भी तरह की कोई मुसीबत ना आए।
0: जी
1: डॉक्टर साहब, यहां एक गाना सुनते हैं, फिर आगे की थोड़ी बातें करेंगे।
0: जरूर।

0: डॉक्टर साहब, ये हमने डायबिटीज की बात की, आपने कहा कि ये एक बहुत जरूरी मुद्दा था जो एक जीवन शैली से जुड़ी समस्या बन गई है। डायबिटीज में असर आंखों पर सीधे पड़ता ही पड़ता है। कुछ और समस्याएं जिनकी अब यहां पर बात की जाए।
1: जी, ब्लड प्रेशर है उसमें से एक।
0: हाँ,
1: हमारे आंखों में सबसे ज्यादा डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है।
0: जी,
1: ब्लड प्रेशर में भी वही होता है। अगर ब्लड प्रेशर, सपोज आपका बीपी बढ़ते जाएगा तो क्या हो सकता है, दिमाग में नस फट सकती है, स्ट्रोक होता है आदमी को, अर्धांग हो सकता है या तो गुजर सकता है। तो आंखों में भी काफी टाइम, अगर आंख के जो अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर बढ़े, कि शरीर का ही हिस्सा है, देखिए आंखों को बहुत ही बचाया गया है। देयर इज समथिंग जो हम लोग, एक ब्लड ब्रेन बैरियर भी है और ब्लड रेटिनल बैरियर भी है।
0: जी जी,
1: तो दिमाग अपने को बचाएगा, और क्योंकि रेटिना दिमाग का हिस्सा है, वो अपने को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक हद के बाद वो बचा नहीं सकता। तो वहां पे जो है ब्लड प्रेशर भी बहुत प्रॉब्लम देता है। तो आंखों में काफी टाइम जो पीछे की नस फटने का जो है, पीछे के पर्दे में, वो जो मैंने आपको कहा डायबिटिक के वजह से विट्रियस हेमरेज होता है, वो होता है। तो ये चीजें जो है, हाँ, एक और चीज जो लोगों को दे, काफी टाइम पेशेंट हमको कहते हैं कि हमारे आंख के सामने कुछ घूम रहा है, काले डॉट दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम लोग फ्लोटर्स कहते हैं। ये बहुत कॉमन है।
0: जी,
1: ये थकावट के बाद आपको भी दिखाई देंगे, अगर ये लाइट देखो और व्हाइट बैकग्राउंड देखो, आपको दिखाई देंगे, सभी में है।
0: जी जी,
1: फ्लोटर्स आर नॉर्मल, ये अभी हम कहते हैं। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे देखेंगे तो नीचे जाएगा, ओके। लेकिन अगर ये फ्लोटर्स ज्यादा आ जाए, बड़े साइज के होने चालू हो, ये छोटे वाले रहते हैं जैसे मच्छर मक्खी की तरह दिखते रहते हैं, लेकिन अगर वो मोटे दिखाई दे, गोल दिखाई दे, काले दिखाई दे, लाल दिखाई दे, तो तुरंत आंख के डॉक्टर को आपको बताना है। इसका ये मतलब है कि दो चीजें, या तो कहीं पे खून आ गया है, या पर्दे में, या विट्रियस में, पीछे के जली में, या तो काफी लोग कहते हैं कि हमको आंख में ऐसे लगता है कि जैसे कोई बिजली चमक रही है एक साइड से। ये बिजली क्यों चमकती है, क्योंकि जो पीछे का पर्दा है, जैसे मैंने कहा, वो आंख का हिस्सा नहीं, वो आंखें वहां पे चिपका हुआ है। तो जहां पे वो चिपका है काफी टाइम, वहां से वो सटक भी सकता है। इसको रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं।
0: ये प्रेशर की वजह से होता है,
1: काफी चीजों की वजह से होता है, स्पॉन्टेनियस भी होता है।
0: अच्छा,
1: स्पॉन्टेनियस हार्ट अटैक आता है ना आदमी को।
0: जी जी,
1: सेम चीज है, डिटैचमेंट भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है अनफॉर्चुनेटली।
0: जी जी,
1: और पीछे का पर्दा सरक जाए तो इट्स इज वेरी डेंजरस, तुरंत ऑपरेशन करने पड़ता है उसको दोबारा बिठाने के लिए। अब उसका भी कितना एक्सटेंट है, उसके भी बहुत टाइप्स है, लेकिन कितने उसका भाग निकल गया है, नहीं निकल गया है, ये सब चीज में जितना जल्दी करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा, किसी की उंगली कट जाए, अब जितने जल्दी जाके जोड़ो, उतने जल्दी वो नॉर्मल हो ना हो, लेकिन रहेगा तो
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन अगर किसी ने कटी हुई उंगली लेके आप एक दिन या दो दिन घूम लो, तो क्या होने वाला है, वो
0: बाकायदा उसमें तो फिर नुकसान,
1: जान ही नहीं आएगा ना उसमें, जान जी, निकल
0: जी,
1: जाती है।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे बुजुर्गों में हमने ये देखा है कि उनको नियमित रूप से आंखों में डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए बोलते हैं, वो कौन सी बीमारी है?
1: ये डायबिटिक रेटिनोपैथी में होता है, एक जिसके अंदर अगर पीछे के पर्दे में सूजन हो। एक और चीज है बुजुर्गों में, जिसको हम लोग एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन कहते हैं।
0: ये क्या होता है?
1: सो मैक्युला जो मेन एरिया है, सेंट्रल एरिया जहां पे लाइट जाता है, उसको और हिंदी में शब्द है ही नहीं, उसको मैक्युला ही कहते हैं अनफॉर्चुनेटली, या तो मुझे पता नहीं है। एज रिलेटेड हम सब समझते हैं, उम्र के वजह से मैक्युला में डिजेनरेशन, यानी वो कमजोर हो जाता है। उसके दो टाइप है, एक जिसको ड्राई कहते हैं, सूखा हुआ, या वेट, गीला हुआ।
0: अच्छा,
1: हाँ, ज्यादातर उम्र के वजह से, क्योंकि जैसे अपने बॉडी का कोई भी हिस्सा झिरने चालू होता है, नीज खराब हो जाती हैं, यू नो, हिप हो जाता है, हार्ट हो जाता है, तो वैसे ही वो जो भाग है वो धीरे धीरे करके उसकी ताकत उसकी निकल जाती है। तो ऑब्वियसली जो लाइट वहां पे जा रहा है, वहां से दिमाग तक नहीं पहुंच रहा। तो उसके लिए दवाइयां हैं आजकल जो हम लोग गोलियां जो देते हैं, लेकिन काफी टाइम क्या होता है कि वो इतना झिर जाता है कि उसके अंदर पीछे सूजन या पानी आने चालू होता है, जिसको हम लोग वेट टाइप कहते हैं। तो उसके लिए ये पिछले 10 सालों में ही आए हैं, इंजेक्शन आए हैं, काफी अच्छे हैं, जिससे वो सूजन कम की जा सकती है।
0: जी जी,
1: उसके लिए पहले स्कैन करते हैं हम लोग, जिसको OCT कहते हैं, इट्स लाइक अ CT स्कैन ऑफ द आई। तो उसके वजह से पता चलता है कि कितनी सूजन है।
0: इसके लक्षण क्या होते हैं, इस सूजन के
1: लक्षण? कम दिखाई देता है।
0: अच्छा,
1: और कोई नहीं?
0: जी,
1: कम दिखाई देता है। तो रेगुलर चेकअप्स के लिए जब बुजुर्ग आते हैं, तो पीछे का पर्दे का तो जांच तो हम लोग करते ही हैं। अगर पता चला कि बाबा ये ARMD है उनको,
0: जी जी,
1: तो ड्राई वेट टाइप देखने में तो पता चलता है, लेकिन उसका कंक्लूजन रहता है अगर हमने वो स्कैन करें तो। तो स्कैन करने को, बिकॉज ऑफ स्कैन इट्स लिटरली लाइक अ सीटी स्कैन ऑफ द रेटिना
0: जी,
1: तो हमको बराबर वो स्लाइसिस उसका बराबर शेप दिखाई देता है, वहां पे सूजन दिखाई देती है, तो उसके मुताबिक फिर जो हमारे रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं वो डिसाइड करते हैं कि इनको इंजेक्शन से वो सूजन कम करें। गोलियां काम नहीं करती वहां पे इतनी अनफॉर्चुनेटली, या ड्रॉप्स हम लोग देते हैं लेकिन इंजेक्शंस जो वहां पे आंख में इंजेक्ट होती हैं उससे तुरंत सूजन कम होने, बिकॉज डायरेक्ट वहां पे पहुंच सकता है
0: जी जी,
1: तो वो सूजन कम होने शुरू हो जाती है, लेकिन उसका भी कितने लगेंगे इंजेक्शंस ये हम बोल नहीं सकते, वो सूजन के ऊपर है। तो अगर काफी पेशेंट में हमने देखा एक दो में भी ठीक हो जाता है, कहीं तो सालों उनको चार पांच लगते हैं या आते जाते रहते हैं, बहुत दुखद है, ज्यादातर बहुत बुजुर्ग लोगों में होता है
0: जी जी,
1: क्योंकि उस उम्र में जब उनका हालचाल बहुत कम होता है तो आंख की रोशनी उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि हमको मोबाइल देखना है या टीवी देखना है, लेकिन फिर हम कुछ शरीर में देखिए लिमिटेशंस हैं, आप कितनी भी टेक्नोलॉजी आपकी बढ़ जाए, जो हमने प्रैक्टिस शुरू की थी 35 साल से आंख के डॉक्टर हैं, अगर हमसे कोई कहता कि ये टेक्नोलॉजी आप देखोगे आप रिटायर होने के पहले, तो मैं कहता था आप झूठ बोल रहे हैं
0: जी जी जी,
1: इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है मेडिकल में सभी चीजों में, आप भी जानते हैं वेदर मोबाइल्स हो या कोई भी चीज में, टेक्नोलॉजी हर 2-3 साल या 5 साल नई टेक्नोलॉजी आ रही है, बाकी शरीर में भी आप देखते हैं जो सर्जरीज वगैरह में इतनी मेडिकेशन में आई है, वैसे आंखों में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, हम तो सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन सभी चीज का एक लिमिट है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और वो जो सीमा है वो अपनी ह्यूमन बॉडी है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अभी तक कोई समझ नहीं पाए चलती कैसी है
0: ये अपने आप में एक चमत्कार,
1: ये अपने आप में एक चमत्कार है, हम देखते कैसे हैं वो भी चमत्कार है, आप भी जानते हैं वर्चुअल इमेज, अभी वर्चुअल लेने क्या हो गया,
0: बिल्कुल
1: उल्टा इमेज यानी दुनिया उल्टी है और हमको सीधे दिखाई दे रही है
0: ये भी कमाल की बात है,
1: आप जानते हैं ना, वापस जाइए वापस 8th standard फिजिक्स पे,
0: यस यस यस,
1: वर्चुअल इमेज है, अरे वर्चुअल कैसे हो
0: जो हमारी आंखों में,
1: हम एक दूसरे को देख रहे हैं क्या हम उल्टे हैं, अच्छा वहां पे जाके इमेज उल्टी हो जाती है क्या यार, ये सवाल का प्रश्न मैं अभी तक खुद भी
0: कर सका, मामला फिलोसफी की तरफ,
1: हाँ बिकॉज एक हद के बाद तो शायद जो भी हो नेचर हो भगवान हो जो भी हो, दे हैव केप्ट समथिंग विद देम एंड में, के आप वहां तक उस हद तक हम नहीं जाते।
0: यस डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है और वो ये है कि बड़ी अजीब बात है कि कई लोग अपनी हैबिट में ये रखते हैं कि रात को सोने से पहले एक ड्रॉप डाल दें, टीयर ड्रॉप जैसी कोई चीज, या कोई एक रेगुलर ड्रॉप डालते हैं ताकि आंखें ठीक रहें, ये क्या है और ये क्या नुकसान पहुंचा सकता है?
1: दोबारा कहता हूं, जरूरत हो तो जरूर डालना
0: ना हो डॉक्टर दें तब डालना,
1: हाँ अगर आपके डॉक्टर ने कहा हो रात को सोते टाइम डालिए तो जरूर,
0: सेल्फ मेडिकेशन इज डेंजरस,
1: सेल्फ मेडिकेशन प्लीज कृपया करके ना करें जितना सेल्फ देखिए ज्यादातर तो ये डालते हैं वो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स रहते हैं
0: जी जी,
1: हार्मलेस रहते हैं, वो अपने आंसू मिमिकिंग, अपने आंसू को ही मिमिक करते हैं,
0: रिप्लेस करें
1: वैसे ही रहते हैं, तो उनकी हानि नहीं होती, लेकिन अंत में केमिकल है ना
0: जी,
1: अगर नेचुरल है, और हम बड़ी आजकल सारी बातें नेचुरलोपैथी पे करते हैं, तो आप नेचुरल रहिए ना, नेचुरल प्रोडक्ट्स मत डालिए, बहुत फर्क है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: नेचुरल प्रोडक्ट्स मत डालिए, वो बहुत फर्क है,
0: सही कह रहे हैं,
1: वो एक अलग ही टॉक है, मैं वहां पे जाना भी नहीं चाहता
0: जी,
1: ओके लेकिन मेरा इतना ही है कि जो जरूरी हो वो जरूर कीजिए
0: जी,
1: जितना हो नॉर्मल रहेगा वही अच्छा रहेगा आपके लिए,
0: बिल्कुल ऑफकोर्स बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब यहां तक आते आते अब आपसे एक ही बात पूछनी है, और वो ये कि पूरे देश और दुनिया में जो लोग हमें सुन रहे हैं, एक बहुत ही अनुभवी आई सर्जन के तौर पर आप क्या बात कहेंगे उन लोगों से, बॉटम लाइन?
1: हाँ बॉटम लाइन, एक तो शुक्रिया सुनने के लिए
0: जी
1: काफी टाइम आप लोगों ने झेल लिया मुझे,
0: बहुत तो जरूरी बात है,
1: उसके लिए शुक्रिया। मैं यही कहना चाहता हूं कि आंखें जो है वो बहुत ही कीमती हैं, बचपन से लेके अपना साथ देते हैं मरने तक, शरीर का कोई भी आपको हिस्सा साथ नहीं देखे, आंखें आपको जरूर साथ देगी, तो आप कृपा करके बहुत ही सावधानी से इनका ध्यान रखिए, इतनी सुंदर दृष्टि जो प्रकृति है, हम जो भी देखना चाहते हैं वो सिर्फ आंखों के जैसे तो दिखाई दे रहा है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हाँ अगर आप आंख से नहीं देखेंगे तो बाकी और क्या रह गया है,
0: बिल्कुल
1: आप महसूस नहीं करेंगे, टच भी इंपॉर्टेंट है फील भी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर रोशनी नहीं रही तो बहुत ही मुश्किल रहती है, तो बॉटम लाइन यही है कि आंखों की प्लीज प्लीज प्लीज बहुत ख्याल रखिए, इसके साथ खिलवाड़ ना करें, ये मेरा बॉटम लाइन सभी चीज के लिए है कि मेहरबानी करके खिलवाड़ ना करें, किसी ने कर लिया तो मैंने ट्राई कर लिया, प्लीज ना करें
0: जी।
1: सोचिए इसके बारे में, हम सभी चीज के बारे में 10 चीजें सोचते हैं, कोई भी चीज के बारे में हम तुरंत गूगल कर लेंगे, ये कर लेंगे, देख लेंगे, फिर आंख में कुछ डालने के पहले सोचिए ना कि मुझे जरूरी है या नहीं।
0: क्या
1: कि किसी ने कह दिया कि मैंने डाल दिया मेरा नंबर निकल गया, मैंने ये डाल दिया तो ये हो गया, ऐसे होता नहीं है कोई शॉर्टकट। वापस बॉटम लाइन आप जानना चाहते हैं, देर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ,
0: नो शॉर्टकट्स इन लाइफ, बहुत सही ये बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतने विस्तार से आंखों की देखभाल के बारे में, आंखों

0: की बीमारियों के बारे में आपने बातें की।
1: शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम क्या कहता हूँ, सॉरी ये हिंदी में शायद शब्द ना, बट आई एम ओवरवेल्म्ड एंड ऑनर्ड के आपने मुझे बुलाया और इतने लोगों तक हम पहुंच सकते हैं और इस जगह पे बुलाया जहाँ पे पता नहीं कौन कौन दिग्गज आके गए हैं। तो इन अ वे जीवन सार्थक है मेरे लिए ये। तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू, थैंक यू।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: सेहतनामा,
4: अभी एक छोटा सा अंतराल।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। अंचल अधिकारी आशुतोष कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण और अस्थायी बाउंड्री को ध्वस्त कर दिया गया। सरायकेला खरसावां जिले के एम टाइप दुर्गा पूजा पंडाल में आज भूमि पूजन के साथ ही पूजा तैयारियों की शुरुआत हो गई। इस वर्ष प्रवीण सिंह सेवा संस्थान की ओर से करीब 70 फीट ऊंचे पुरानी हवेली थीम पर पंडाल का निर्माण कराया जाएगा। और मौसम विभाग ने राज्य में 7 अगस्त तक भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अगले 2 दिनों में राज्य के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का भी अनुमान है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: विराट है ये दुनिया, जाने कहां तक फैला है इस ब्रह्मांड का विस्तार। आसमान पर है तारों से जड़ी विशाल छतरी, दुनिया के इस असीम विस्तार के बाद भी अकेलेपन की धुंध घिरी है चारों तरफ। तन्हाई के इस शॉल को लपेटकर जाने कितने ठंडे मौसम बिता देते हैं अकेले लोग। अकेलेपन की दुनिया में नहीं होते शब्द, वहां नहीं होती मुस्कानें, वहां तो शायद सुर भी नहीं होते, वहां होता है बस सर्द सन्नाटा।

सन्नाटे की दुशाला में हम एक रात बुनते हैं। इस रात को बुना जाता है खामोशी के तागे से। इस रात में अपने सपनों के मोती टांग दिए जाते हैं। वक्त के करघे पर कोई बुन रहा है अपने हिस्से की एक रात, वो रात जिसमें यादों की मोमबत्ती जल जल कर पिघलती है पर मुस्कान बिखेरती रहती है। बुन रहे हैं हम रात, हमारे हिस्से की रात।

समय एक लगातार बहता धारा है, इसकी कोई शुरुआत नहीं है और इसका कहीं कोई आखिरी सिरा नहीं है। समय के इस विशाल प्रवाह में हम एक छोटा सा रेशा है। तय होता है कि कौन कब किसका हम सफर बनेगा, कैसे हम चलेंगे जिंदगी की राहों में साथ साथ।

0: समंदर के किनारे बैठी तो लगता है कितना विराट है ये समंदर और कितने छोटे से हम। लहरें आती हैं और अचानक भिगोकर चली जाती हैं। समंदर की चहल पहल के बीच भी होता है एक अजीब सा खालीपन। समंदर कितना कुछ सिखाता है हमें। समंदर सबसे ज्यादा ये सिखाता है कि टूटकर कैसे प्यार किया जाता है। किनारे के प्यार में समंदर सदियों से बार बार लौटता है किनारों की तरफ। इस तरह लौटना दुनिया की सबसे प्यारी बात है। प्यार करने वाले बार बार लौटते हैं एक दूसरे की तरफ।
1: दो दीवाने शहर में

0: हमेशा यह गीत में आज थे संगीतकार जयदेव के चंद नगमे, फिल्मों के नाम।
1: जब
0: फिल्म दूरियां,
1: आपके
0: फिल्म कमन, फिल्म रेशमा और शीरा,
2: दो दीवाने शहर में,
0: फिल्म घरौंदा। आज का चाहे गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।
3: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
4: अभी आप विविध भारती का प्रसारण सुन रहे थे हमारे मुंबई केंद्र से। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आइए सबसे पहले आप एक नजर डालते हैं सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 5:35 पर आप सुनिएगा महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन। 6:02 का समय होगा ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बाड़ी और 6:30 का समय होगा कृषकों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा। कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे उड़द की फसल में वैज्ञानिक प्रबंधन। आज की बात में सुनिएगा कुलथी की खेती और बाजरा की खेती की वैज्ञानिक तकनीक। इस पर ली गई भेंटवार्ता डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह जो कि कृषि वैज्ञानिक क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियां के पलामू के हैं और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार। आज के नसीहत में हम आपको बताएंगे मल्चिंग विधि, आज का मौसम और आज का बाजार भाव। 7:15 पर आप सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद और 7:30 का समय होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक रंग का। 7:45 पर आप सुनेंगे कल्याणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपसे आपको सुनवाएंगे डॉक्टर तेजवीर सिंह जो कि रांची के हैं, उनसे ली गई भेंटवार्ता। विषय होगा छाती में पानी भर जाना, कारण और उपचार। 8:15 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से और 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत का ही रजनीगंधा। हर रोज की तरह सभा की समाप्ति होगी 11:10 पर। अभी आप सुन रहे थे आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है।

घर आंगन सुनने वाले तमाम बहनों को नमस्कार। बहनों, आज सोमवारी है और श्रावण मास की सोमवारी, चलिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए हम कार्यक्रम का आगाज करते हैं एक प्यारे से भक्ति गीत के साथ।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: बहनों, अब आइए हम सुनते हैं संगीता सिन्हा की वार्ता। विषय है केंद्र सरकार की भावी 24 नीतियां।
1: जनता की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और विकास की योजनाओं के बूते जनता को क्या मिला, यह जानना बहुत जरूरी है। भारत के हर नागरिक को यह जानने का पूरा पूरा हक है कि प्रतिदिन के विकास कार्यक्रमों का संपूर्ण एवं पारदर्शी लेखा जोखा उन्हें मिले। खासकर महिलाओं को इन योजनाओं से परिचित कराया जाए। तो आइए सरकार की भावी 24 योजनाओं पर और उनके द्वारा महिलाओं को क्या क्या अधिकार मिलने वाले हैं, इस पर एक नज़र डालें। सरकार की पहली योजना है डिजिटल इंडिया। प्रधानमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक डिजिटल इंडिया है। इसकी शुरुआत 21 अगस्त 2014 को हुई। इस अभियान का मकसद भारत को इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था को बदलना है। सरकार की मंशा है कि सभी सरकारी विभाग इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जुड़ें ताकि प्रभावी प्रशासन सुचारू रूप से चलाया जा सके। कागजी कार्रवाई को कम करके सभी सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिकली जनता तक पहुंच सकें। ऐसा करने से सरकारी कामकाज की पारदर्शिता बढ़ेगी। ई क्रांति के जरिए जनता के कामकाज का जल्द से जल्द निस्तार हो सकेगा। सरकार की दूसरी योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम के शुरू दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए और हर खाता धारक को 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर दिया गया। इस योजना के तहत अब तक 3.2 करोड़ खाते खोले गए हैं, उनमें करीब 1500 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। इस योजना के अनुसार कोई भी व्यक्ति 0 बैलेंस के साथ बैंक खाता खोल सकता है। सरकार की तीसरी योजना है स्वच्छ भारत अभियान। प्रधानमंत्री ने 24 सितंबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान को मंजूरी दी। इस कार्यक्रम के तहत सरकार ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों तक शौचालय और साफ सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करना ध्येय है। शहरी विकास मंत्रालय ने हाल ही के सबसे साफ शहरों में मैसूर को नंबर 1 शहर माना। सरकार की तीसरी योजना है मेक इन इंडिया। इसके तहत भारत में वैश्विक निवेश एवं विनिर्माण को आकर्षित करने की योजना 25 सितंबर 2014 को लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर देश बनाना है, रोजगार के अवसर प्रदान करना एवं भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारना है। सरकार ने ऐसे 25 सेक्टरों की पहचान की है जिसमें ग्लोबल लीडर बनने की क्षमता है। सरकार की सातवीं योजना है अटल पेंशन योजना। यह योजना देश की युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि बुढ़ापे में उन्हें पेंशन मिल सके एवं बीमारी, दुर्घटना एवं वृद्धावस्था में अभाव की चिंता न झेलनी पड़े। सरकार की आठवीं योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 100 करोड़ की शुरुआती राशि के साथ यह योजना देश के 100 जिलों में शुरू की गई, जिससे महिलाओं के कल्याण सेवाओं के प्रति जागरूकता और सुधार को बढ़ावा मिलेगा। सरकार की नौवीं योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना के अंतर्गत देश भर के युवाओं को कुशल बनाने की योजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत 4 से 5 करोड़ युवाओं को कुशल बनाया जा सकेगा। सरकार की दसवीं योजना है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इस योजना के तहत वेब पोर्टल द्वारा 10 लाख रुपए से 100 लाख रुपयों तक की सीमा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच लघु उद्योग विकास बैंक के माध्यम से वित्तीय सुविधा प्रदान की जा सकेगी। सरकार की 11वीं योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बेटी के नाम से बैंक खाता खोलने पर 9.2% का ब्याज दर मिलता है। सरकार की 12वीं योजना है मुद्रा बैंक योजना। इस योजना का उद्देश्य छोटी छोटी कंपनियों को बढ़ावा देना है। इसमें शुरुआती कंपनी को 50,000 तक एवं विकसित कंपनियों को 5 से 10 लाख तक का लोन दिया जा सकेगा। सरकार की 13वीं योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें 18 साल से 50 साल तक के भारतीय नागरिक को 2 लाख रुपए का बीमा कवर मात्र 330 रुपए के सालाना प्रीमियम पर उपलब्ध कराया गया है। सरकार की 14वीं योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें 18 साल से 70 साल तक की उम्र के नागरिक की दुर्घटना या मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख तक का कवर दिया जाता है। आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख का बीमा कवर है। सरकार की 15वीं योजना है किसान विकास पत्र। इस योजना की शुरुआत 1988 ईस्वी में लॉन्च की गई, जिसमें 1,000, 5,000, 10,000 एवं 50,000 की राशि को 100 महीनों में दुगनी करने का प्रावधान है। सरकार की 16वीं योजना है कृषि बीमा योजना। इस योजना का उद्देश्य अपनी फसल का बीमा कर मौसमी प्रकोप या किसी अन्य कारणों से फसल को नुकसान पहुंचने पर किसानों को राहत पहुंचाना है। सरकार की 17वीं योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना। इस योजना के तहत देश के सभी कृषि योग्य भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य है। सरकार की 18वीं योजना है सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम, जिसके अंतर्गत किस मिट्टी को कौन से उर्वरकों की जरूरत रहती है और फसल को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसकी जानकारी दी जाएगी। सरकार की 19वीं योजना है नेशनल हेरिटेज सिटीज का विकास। इसका उद्देश्य हेरिटेज सिटी के विकास पर है। सरकार की 20वीं योजना है इंद्रधनुष योजना। इस योजना के अंतर्गत बच्चों को 7 बीमारियों जिनमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी से लड़ने के वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। सरकार की 21वीं योजना है दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। सरकार इस योजना के तहत भारत के गांवों में आबाद गति से 24/7 बिजली पहुंचाने के लिए 75,600 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। सरकार की 22वीं योजना है दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। इस योजना के तहत ग्रामीण जगत के युवाओं को सरकार के अवसर मुहैया कराने के लिए उद्देश्य लक्षित हैं। इसके अंतर्गत 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। सरकार की 23वीं योजना है महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना। इस योजना के तहत विदेशों में रह रहे भारतीय मजदूरों के लिए पेंशन एवं बीमा की व्यवस्था है। सरकार की 24वीं योजना है उड़ान प्रोजेक्ट योजना। जम्मू एवं कश्मीर के उड़ान योजना के तहत 40,000 युवाओं को 5 साल में प्रमुख उच्च विकास क्षेत्रों में कौशल प्रदान करने एवं उनमें रोजगार क्षमता को बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया है। राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद NSDC और निगमित क्षेत्र द्वारा इन योजना का क्रियान्वयन PPP मोड में किया जा रहा है। ये थी सरकार की भावी योजनाएं, जिनमें निश्चित रूप से महिलाएं लाभान्वित हो सकेंगी।
0: बहनों, अभी आपने सुना संगीता सिन्हा की वार्ता। विषय था केंद्र सरकार की भावी 24 नीतियां। और अब चलते चलते आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे महिला बहनों के लिए कार्यक्रम घर आंगन, आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: के मुख्य समाचारों के साथ में पूनम केरकेट्टा। विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने आगामी 6 से 12 अगस्त तक होने वाले मॉनसून सत्र को लेकर आज रांची में उच्च स्तरीय बैठक की। स्पीकर ने अधिकारियों को सदन के प्रश्नों के उत्तर और विधेयकों की प्रतियां समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आदिवासी छात्र एकता की केंद्रीय कमेटी ने असम में रह रहे संथाल, हो, मुंडा और उरांव समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग की है। जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत में संगठन ने सीएनटी और एसपीटी एक्ट सहित जनजातीय भूमि संरक्षण से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को सख्ती से लागू करने की अपील की है। लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीणा की अध्यक्षता में आज जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न आपदाओं से संबंधित कुल 12 मामलों में अनुग्रह अनुदान भुगतान की स्वीकृति दी गई। इसमें सड़क दुर्घटना में मृत्यु के 5 और आंधी तूफान से क्षतिग्रस्त मकानों के 7 मामले शामिल हैं। हजारीबाग के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इचाक में आज खाद्य सुरक्षा टीम ने औचक निरीक्षण किया। उपायुक्त हेमंत सती के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के तहत विद्यार्थियों को दिए जाने वाले चावल, दाल, आटा और चूड़ा के नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए। खूंटी के प्रसिद्ध आम्रेश्वर धाम में सावन की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही कांवरियों ने कतारबद्ध होकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित 16वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में झारखंड ने प्रवेश कर लिया है। एक रोमांचक मुकाबले में झारखंड की टीम ने दिल्ली को 4-3 से हराकर अंतिम 8 में अपनी जगह सुरक्षित की। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 MHz पर। अब लीजिए प्रस्तुत है ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बाड़ी।

खेती बाड़ी सुनने वाले तमाम किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले आपसे बातें करेंगे फसलों में जिप्सम का महत्व के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि खेती में जिप्सम का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि यह जो है फसलों को कैल्शियम और सल्फर यानी कि गंधक जैसे ज़रूरी पोषक तत्व देता है, मिट्टी की संरचना में सुधार करता है और क्षारीय यानी कलर या सोडी का भूमि को उपजाऊ बनाता है। जिप्सम से तो जैसा कि अभी अभी हमने कहा आपसे, किसान भाइयों की बहुत ही इसका महत्व है, लाभ ही लाभ है। जैसे कि पोषक तत्व देता है ये पौधों को, यानी कि पौधों को आसानी से घुलनशील कैल्शियम और सल्फर प्रदान करता है, जिससे उनकी बढ़वार जो है अच्छी होती है, यानी कि वो बहुत अच्छे तरह से बढ़ते हैं। कठोर या भारी चिकनी मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, यानी कि मिट्टी में भी सुधार करता है ये, और जिससे हवा और पानी का संचार जो है सो ठीक रहता है। बात आती है अब क्षारीय मिट्टी का उपचार के बारे में, तो हम आपको बता दें किसान भाइयों कि उस पर या सोडिक मिट्टी से हानिकारक सोडियम को हटाकर मिट्टी को उपजाऊ योग्य बनाता है और मिट्टी में पानी के ठहराव को रोकता है और जल निकासी में सुधार करता है। किसान भाइयों, और ये जो है सो इस तरह से बहुत ही जिप्सम का जो है सो महत्व है खेतों में। और इसका जो है रही बात कब और कैसे डालें, तो हम आपको बता दें कि जिप्सम को मृदा में फसलों की बुआई से पहले डालना चाहिए। पहले डालते हैं, जिप्सम डालने से पहले खेत को पूरे रूप से तैयार करके यानी 2 से 3 गहरी जुताई और पाटा लगाकर जिप्सम का बुरकाव करें। इसके पश्चात एक हल्की जुताई करके जिप्सम को मिट्टी में मिला दें। और फिर किसान भाइयों, सामान्यतः धान्य फसलें 10 से 20 किलोग्राम कैल्शियम प्रति हेक्टेयर और दलहनी फसलें 15 किलोग्राम कैल्शियम प्रति हेक्टेयर भूमि से ले लेती हैं। और सामान्य फसल पद्धति 10 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कैल्शियम भूमि से लेती हैं। जी हाँ किसान भाइयों, जिप्सम को क्षारीय भूमि में मिलाने के लिए आवश्यक मात्रा, क्षारीय भूमि की विकृति की सीमा, 5-6 सुधार की सीमा और भू सुधार के बाद उगाई जाने वाली फसलों पर निर्भर करती है। कितना सुधारक डालना है, इसकी मात्रा का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले कितना जिप्सम डालने की आवश्यकता होगी उसका निर्धारण किया जाता है। और हम आपको बता दें किसान भाइयों कि इसको जिप्सम की आवश्यकता होगी का जिप्सम की आवश्यकता यानी कि कहा जाता है, जिप्सम की उचित मात्रा जानने के लिए जिप्सम के विभिन्न मात्राओं को लेकर प्रयोग किए गए। तो इन प्रयोगों से यह सिद्ध होता है, यह प्रमाणित होता है कि धान की फसल के लिए जिप्सम की कुल मात्रा का 1/4 भाग काफ़ी है, जबकि गेहूं की फसल के लिए यह कुल मात्रा से आधा पर्याप्त है और मैदानी क्षेत्रों में पाए जाने वाली क्षारीय मृदाओं के लिए लगभग 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, क्षारीय भूमि सुधार के कामों को शुरू करने का सबसे सही समय जो है गर्मी के महीनों में होता है। जिप्सम फैलाने के तुरंत बाद कल्टीवेटर या देशी हल से भूमि की ऊपरी यानी कि 8 से 12 सेंटीमीटर की सतह में मिलाकर और खेतों को समतल करके मेढ़बंदी करना ज़रूरी है, ताकि खेत में जो है पानी सभी जगह बराबर लग सके। जिप्सम को मृदा में अधिक गहराई तक नहीं मिलना चाहिए। धान की फसल में जिप्सम की आवश्यक मात्रा फसल लगाने से 10 से 15 दिन पहले डालना चाहिए। पहले 4 से 5 सेंटीमीटर हल्का पानी लगाना चाहिए, जबकि पानी थोड़ा सूख जाए तो पुनः 12 से 15 सेंटीमीटर पानी भरकर रिसाव क्रिया संपन्न करनी चाहिए। किसान भाइयों, क्षारीय भूमि में जिप्सम को बार बार मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। यह पाया गया है कि यदि धान की फसल को क्षारीय भूमि में लगातार उगाते रहें तो भूमि के क्षारीयपन में कमी आती है। खेतों को कभी लंबी अवधि के लिए खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और अब जो है सो हम आपको बताते हैं किसान भाइयों की जिप्सम के उपयोग में कुछ ध्यान देने योग्य बातें भी हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए। जैसे कि जिप्सम को अधिक नमी वाले स्थान पर न रखें और

ज़मीन से कुछ ऊपर रखें। साथ ही किसान भाइयों इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि मृदा परीक्षण के उपरांत जिप्सम की उचित मात्रा डालें और तेज हवा बहने पर जिप्सम का बुरकाव ना करें। जिप्सम डालने से पहले अगर इससे पहले मतलब है तो इसे महीन कर ले थोड़ा ये है तो कर, और जिप्सम का बुरकाव करते समय जो है सूखे हाथ होना चाहिए और इसके साथ साथ जिप्सम का बुरका पूरे खेत में समान रूप से डालें। जिप्सम डालने के पश्चात उसकी मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिला दें और जिप्सम को बच्चों की पहुंच से, सबसे बड़ी बात कि वो बच्चों की पहुंच से दूर रखें। किसान भाइयों ये तो बातें हुई जिप्सम के बारे में, जिप्सम के क्या महत्व है, और अब चलिए हम आगे चलते हैं और सुनते हैं शारदा सिन्हा की आवाज़ में एक प्यारा सा लोकगीत।

0: किसान भाइयों, ये तो बातें हुई गीतों की, और अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं मक्का फसल में वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, वैज्ञानिक मक्का का वैज्ञानिक से जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही इसकी उपज जो है बहुत ही ढंग से, बहुत ही तरीका से होता है। और हम आपको बता दें किसान भाइयों कि खेती की तैयारी और जलवायु जो है, इसका जुताई जो है 1 से 2 गहरी जुताई कर 2 से 3 ट्रॉली सड़ी गोबर की खाद मिलाना चाहिए। साथ ही जल निकास यानी खेत में जल भराव नहीं होना चाहिए, जल निकास की उत्तम व्यवस्था हो। किसान भाइयों, बुआई का समय जो होता है खरीफ में जून जुलाई, रबी में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होता है। और दूरी की बातें करें तो हम आपको बता दें कि कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर जो है आप करें। और इसकी गहराई जो है 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं। जल निकासी के लिए मिट्टी में पानी के ठहराव को रोकें, और इससे क्या होगा किसान भाइयों, सही रहेगा आपकी फसल जो है सो सही रहेगा। तो ये तो बातें हुई मक्का फसल में वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में किसान भाइयों। और चलिए अब हम जो है सो आगे बढ़ते हैं और अब बातें करते हैं आपसे एक वार्ता की। वार्ताकार हैं संध्या चंद्रा और विषय है पारंपरिक एवं आधुनिक खेती।
1: किसान भाई, कृषि जिसे आम तौर पर खेती के रूप में जाना जाता है, एक प्राथमिक गतिविधि है जो खाद्य सुरक्षा, प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक क्षेत्र के लिए कच्चा माल और कई अन्य लाभ पैदा करती है। भारतीय संदर्भ में पारंपरिक खेती से तात्पर्य ऐसी खेती से है जो कई पीढ़ियों के अनुभव से संचित ज्ञान और बुद्धि के साथ की जाती है। अधिकांश जानकारी दृश्य और श्रव्य निर्देशों के माध्यम से दी जाती है। इसे अक्सर क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाता है। जिस जीन पूल का उपयोग किया गया था वह घर में ही विकसित किया गया था और स्थानीय वातावरण के अनुकूल था। इसे अधिक आत्मनिर्भर कहा जाता है। दूसरी ओर पारंपरिक कृषि पद्धतियों को दस्तावेजीकरण के मामले में कम ध्यान दिया गया है, इसीलिए वर्तमान शिक्षित आबादी इसके बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ है और परिणाम स्वरूप इसकी सराहना करने में असमर्थ है। जब किसी भी गतिविधि की बात आती है तो यह एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है और इसे उन लोगों के दैनिक जीवन में एकीकृत करता है जो इनमें संलग्न है। किसान भाई, पारंपरिक कृषि प्रणाली के तहत खेती की विशेषता, आधुनिकीकरण की अनुपस्थिति और कृषि क्षेत्र में किसी भी तरह के व्यवसायीकरण की अनुपस्थिति है। श्रम से लेकर बीज तक पारंपरिक तरीकों का उपयोग हर जगह किया जाता है। यह एक पुरानी खाद्य उत्पादन तकनीक है जो आधुनिक तकनीक या उन्नति के लाभ के बिना हजारों वर्षों से उपयोग में है। इस तरह की खेती का अधिकांश हिस्सा जीविका के उद्देश्य से किया जाता है। देश में हल और अन्य पारंपरिक कृषि उपकरण अभी भी उपयोग में है। तो किसान भाई, देखते हैं पारंपरिक कृषि के कुछ लाभ हैं। तो क्योंकि हम रासायनिक खादों के स्थान पर वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद जैसी प्राकृतिक खादों का उपयोग कर सकते हैं, हम उर्वरकों पर पैसा बचा सकते हैं। साथ ही रासायनिक उर्वरकों के अभाव के कारण पानी की आवश्यकता में कमी आती है। क्योंकि हम केवल प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए कृषि योग्य क्षेत्र बहुफसलीय कृषि शैली के लिए उपयुक्त है। पुराने दृष्टिकोण में उत्पादन की लागत कम होती है क्योंकि इसमें कम संसाधनों का उपयोग होता है। क्योंकि इसमें जैविक खेती का उपयोग किया गया है, इसीलिए भोजन पूरी तरह से सुरक्षित है। तो किसान भाई, ये तो हमने की लाभ की बातें, अब आइए थोड़ी नुकसान की भी बातें करते हैं। पारंपरिक खेती से जो नुकसान है, जैसे खेती में किसानों को अपनी फसल काटने में लगभग 15 घंटे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन उच्च तकनीकी वाली खेती में बस कुछ ही घंटे लगते हैं। क्योंकि इसकी कटाई में लंबा समय लगता है, इसीलिए फसल पकने में लगने वाले समय की लागत वसूलने के लिए इसे ऊंचे दामों पर बेचना पड़ता है। साथ ही पारंपरिक तरीके से खेती करने से मिट्टी का उपयोग होता है, परिणाम स्वरूप अपघटन में उपलब्ध समय का अधिकांश भाग नष्ट हो जाता है। इसके अलावा इसके परिणाम स्वरूप फसलों को मृदा रोग लगने का भी अधिक खतरा बना रहता है। फसलों पर कीटों के हमले को रोकने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, परिणाम स्वरूप पौधों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। तो ये तो हुई पारंपरिक खेती से नुकसान की बातें, और अब देखते हैं कि आधुनिक खेती। आधुनिक खेती एक ऐसी खेती है जो इस अंतर्निहित ज्ञान की अवहेलना करती और उत्पादन के पारंपरिक तरीकों से बेहतर होने का दावा भी करती है। इसके अलावा समकालीन खेती अधिक पूंजी गहन और बड़े पैमाने पर प्रकृति की है, और यह भारत द्वारा प्रदान किए जाने वाले विशाल जीन पूल का बहुत कम उपयोग करती है। यह एक एकल खेती है जो स्थानीय संसाधनों, संदर्भ, जलवायु या अन्य कारकों को ध्यान में नहीं रख सकती, और यह एक समुदाय में एक दर्दनाक अंगूठे की तरह बाहर निकलती है। आधुनिक खेती से मतलब है कि समकालीन तरीकों और तकनीक का उपयोग करके खेती करने से है। आधुनिक विज्ञान साथ ही खोजों और नवाचारों की कई नई विशेषताएं खेती करना संभव बनाती है। आधुनिक खेती सिंचाई प्रणालियों के साथ साथ पूंजी निवेश के नए स्रोतों का उपयोग करती है। साथ ही किसान भाई, वर्तमान समय में कृषि किसानों को एक व्यावसायिक व्यवसाय और रोजगार के कई अवसर प्रदान करती है। साथ ही ड्रिप सिंचाई से लेकर स्प्रे सिंचाई तक, नहर प्रणाली से लेकर खेती से लेकर कटाई तक के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, कई विधियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही उच्च उपज देने वाले हाइब्रिड HYB बीजों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा समकालीन कृषि प्रणाली मुख्य गतिविधि का समर्थन करने के अलावा साइड कंपनियों के साथ साथ किसी भी सेवा प्रदान करने वाले संचालन के लिए पर्याप्त संसाधन और अवसर प्रदान करती है। किशन भाई, अब देखते हैं कि आधुनिक खेती के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। देखिए, खाद्यान्न की कमी के बिना संपूर्ण जनता को भोजन उपलब्ध कराना, साथ ही भूमि का उपयोग उसकी पूर्ण क्षमता तक किया जा रहा है, यानी कि फसल सघनता 300% से अधिक। परिणाम स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। वैश्विक बाजार यहाँ तक कि हमारे आम संयुक्त राज्य अमेरिका में भी उपलब्ध है, और हम कैलिफोर्निया के सेबों के साथ साथ अन्य फसलों का भी आयात करते हैं। साथ ही कारखानों के विकास और मशीनों के उपयोग के कारण यह क्षेत्र विस्तारित हो रहा है और उत्कृष्ट नौकरियां पैदा कर रहा है। और अब किसान भाई देखते हैं कि आधुनिक खेती के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी में लवणता बढ़ती है और सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी होती है। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा की झूठी भावना पैदा होती है। साथ ही आधुनिक उपकरण महंगे हैं और इसलिए अधिकांश लोगों के पहुंच से बहुत बाहर है। साथ ही उत्पादन की विशिष्टता खत्म हो रही है। चूंकि पारंपरिक कृषि प्रणाली किसानों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई है, इसीलिए यह लोगों की लगातार बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए अनुपयुक्त है। दूसरी ओर आधुनिक कृषि मानव खाद्य मांगों को पूरा करने के प्रयासों के साथ साथ प्रजाति प्रजनन कृषि पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराने के लिए खेती को अनुकूलित करना है। किशन भाई, पारंपरिक खेती आधुनिक तकनीकों के बिना मैनुअल श्रम और सरल औजारों का उपयोग करके फसलों की खेती और पशुधन पालने की सदियों पुरानी प्रथा है। यह अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए आवश्यक है, जो वैश्विक खाद्य उत्पादन में योगदान देता है। विधियों में प्राकृतिक उर्वरक

फसल चक्र और पारंपरिक सिंचाई शामिल है। आधुनिक खेती के बावजूद पारंपरिक खेती जैव विविधता, सांस्कृतिक विरासत और टिकाऊ खाद्य उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है। तो देखते हैं कि पारंपरिक कृषि उपकरण के विषय में किसान भाई पारंपरिक

इष्टतम रोपण स्थितियों के लिए मिट्टी को तोड़ता और पलटता भी है। अब देखते हैं हैरो के बारे में। हैरो में स्पाइक्स या डिस्क होते हैं जिनसे खेत में घसीटकर गांठों को तोड़ा जाता है और महीन बीज बिस्तर बनाया जाता है। इसके अलावे यह जुताई के बाद मिट्टी को समतल और परिष्कृत करता है। कल्टीवेटर। कल्टीवेटर में घूमने वाले ब्लेड या टिंस लगे होते हैं जो मिट्टी को पूरी तरह घुमाए बिना काम करते हैं। यह बढ़ते पौधों के आसपास की मिट्टी को हवा देता है और उसे ढीला करता है, जिससे खरपतवार का प्रभावी नियंत्रण होता है। हार्वेस्टर। ऐसी मशीनीकृत मशीनें हैं जिन्हें फसलों को कुशलतापूर्वक इकट्ठा करने और संसाधित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें मैनुअल श्रम से कम हो। यह अनाज और फलों जैसी फसलों की कटाई की प्रक्रिया को स्वचालित बनाता है। बीज ड्रिल। सीड ड्रिल एक ऐसा उपकरण है जो रोपण के दौरान एक निश्चित गहराई और अंतराल पर नियंत्रित बीज रोपण सुनिश्चित करता है। यह व्यवस्थित और समान रूप से बीज बोता है। और अब देखते हैं किसान भाई की पारंपरिक खेती के तरीके कैसे हैं। पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक खेती की तरीके स्थिरता और भूमि के साथ गहरे संबंध पर जोर देती है। सीधे दी गई तरीकों आधुनिक खेती से अलग है, जो अधिक संसाधन कुशल विकल्प प्रदान करती है। अब देखते हैं कृषि वानिकी। इसमें खेती और वानिकी को मिलाकर ऐसे पेड़ उगाए जाते हैं जो फसलों के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनाते हैं। यह विधि तापमान, सूर्य के प्रकाश और हवा को नियंत्रित करने, मिट्टी के कटाव को रोकने और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती है। इस दृष्टिकोण से लाभ उठाते हैं जिससे फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनुकूल होते हैं। फसल चक्रण। एक ही क्षेत्र में कई मौसमों में अलग अलग फसलें उगाना फसल चक्रण कहलाता है। यह दृष्टिकोण फसलों की विशिष्ट पोषक तत्वों पर निर्भरता को कम करता है और कीटों और खरपतवारों से जुड़े जोखिमों को कम करता है। इसके अलावे यह कीटों और खरपतवारों में प्रतिरोध विकसित होने की संभावना को भी कम करता है। देखते हैं मिश्रित फसल। इसमें विभिन्न प्रकार की फसलें एक साथ उगाई जाती है। उदाहरण के लिए किसान एक ही खेत में अलग अलग प्रकार के पौधे लगा सकते हैं, जिसमें विविधतापूर्ण और संतुलित फसल सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। अंतर फसल। यह तब होती है जब आप दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाते हैं। तो किसान भाई, इसका लक्ष्य संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करके भूमि के एक टुकड़े से अधिक फसल प्राप्त करना है, क्योंकि प्रत्येक पौधा अकेले में संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता है। और किसान भाई, अब देखते हैं पारंपरिक खेती के कुछ फायदे हैं। इस खेती के कई लाभ हैं, जिसे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, कार्बन अवशोषण और जैव विविधता का संरक्षण होता है। स्थिरता। पारंपरिक किसान अक्सर ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जो प्रकृति के अनुकूल होते हैं। वे बहुत ज्यादा रसायनों का इस्तेमाल करने से बचते हैं, जिसमें पर्यावरण संतुलन में रहता है। फसलों का विविधीकरण। पारंपरिक खेतों में आप पाएंगे कि अलग अलग फसलें एक साथ उगाई जाती है। यह मिश्रण न केवल खेतों को विविधतापूर्ण बनाता है, बल्कि अगर एक फसल अच्छी नहीं होती है तो भी मदद करता है। पारंपरिक ज्ञान। किसान एक दूसरे को खेती के पुराने तरीके सिखाते हैं। इसका मतलब है कि वे जिस खास जगह पर काम कर रहे हैं उसके लिए उन्हें सबसे अच्छी तरकीबें पता है। पारंपरिक किसान रसायनों पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहते। इससे न सिर्फ हवा और पानी साफ रहता है, बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ रहती है। सरल और किफायती उपकरण। वे जो उपकरण इस्तेमाल करते हैं वे सरल है और इनकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है। यह उन छोटे किसानों के लिए अच्छी खबर है जिनके पास शायद महंगी मशीनें नहीं हैं। किसान भाई, पारंपरिक खेती में लोग अपने हाथों और बुनियादी औजारों का इस्तेमाल करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों और पुरानी परंपराओं पर आधारित जैविक खादों पर निर्भर रहते हैं। इसके विपरीत आधुनिक खेती के लिए कृषि निवेश की आवश्यकता होती है, जिसमें कार्यबल, थ्रेशर और हार्वेस्टर जैसी उन्नत मशीनरी और नवीनतम तकनीकें शामिल है। इन तकनीकों में चयनात्मक प्रजनन, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और कीटनाशक शामिल है।

अभी आप सुन रहे थे संध्या चंद्रा की वार्ता, विषय था पारंपरिक एवं आधुनिक खेती। और अब किसान भाइयों, इसी वार्ता के साथ खेतीबाड़ी कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभिरुचि प्रस्तुत है कृषकों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा। ग्रामीण सभा सुनने वाले सभी ग्रामीण भाइयों को नमस्कार। ग्रामीण भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपसे बातें करेंगे और चर्चा करेंगे आपसे उड़द की फसल में वैज्ञानिक प्रबंधन पर। आज के बाद में आपसे बातें करेंगे कुल्थी की खेती पर और साथ ही आपको क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियां के पलामू के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार से लिखी भेंटवार्ता भी सुनाएंगे। विषय होगा बाजरा की खेती की वैज्ञानिक तकनीक और इनसे बातचीत करेंगे इस संबंध में संतोष कुमार। आज की नसीहत में मल्चिंग विधि पर हम आपको बताएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की ओर हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बातें करते हैं उड़द की खेती पर। जी हाँ किसान भाइयों, उड़द की वैज्ञानिक खेती के लिए तो सबसे पहले उन्नत किस्में, सही समय पर बुआई और संतुलित खाद प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी है। इसकी फसल जो है 70 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है और प्रति एकड़ 4 से 6 क्विंटल तक पैदा मिलती है। किसान भाइयों, इसके लिए भूमि और जलवायु पर विशेष ध्यान देना होता है। जैसे कि मिट्टी जो है सो अच्छे जल निकासी वाली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान जो है सो 6.0 से 7.5 हो, सबसे अच्छी होती है। और तापमान जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और तापमान और गर्म आर्द्र जलवायु विकास के लिए सही होता है। साथ ही किसान भाइयों, बुआई का समय और तरीका भी हम आपको बता दें कि खरीफ में जुलाई से मानसून की शुरुआत ज़्यादातर गर्मी में मार्च का पहला हफ्ता सही होता है। किसान भाइयों, सिंचाई के लिए कुल्थी में सिंचाई की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि फली बनते समय एक सिंचाई करने में कुल्थी से अच्छे पुष्ट होते हैं, इससे अच्छे होते हैं। और निकाई गुड़ाई की बात है तो यह निकाई गुड़ाई और खरपतवार प्रबंधन के लिए आप निकाई गुड़ाई बुआई के 26 से 30 दिनों के बाद करें। निकाई गुड़ाई में आवश्यक खरपतवार क्षेत्र में बाहर निकल जाते हैं, साथ ही मिट्टी जो है मुलायम हो जाती है। इसका सीधा असर जो है सो उत्पादन पर पड़ता है। तो कटनी, दौनी और भंडारण कुल्थी की फलियां एक बार पक कर तैयार हो जाती है। पकने पर फलियों का रंग भूरा हो जाता है और पौधे पीले पड़ने लगते हैं, तो इससे पता चलता है कि ये जो है सो तैयार हो गया है। जी हाँ किसान भाइयों, फिर उसे आप पके हुए पौधों को काट कर धूप में सुखा कर दौनी करके दाना अलग कर ले और कुल्थी के दानों को धूप में जो है सुखा कर दौनी करके दाना अलग कर ले। कुल्थी के दानों को धूप में अच्छी तरह सुखा कर ही भंडारण करें, तभी सही रहेगा किसान भाइयों। और साथ ही किसान भाइयों, हम बता दें आपको कि बुआई के ठीक पहले जब आप कुल्थी को बोएंगे तो उसके ठीक पहले फफूंदनाशक दवा से उपचारित बीज को उचित राइजोबियम कल्चर एवं PSB से उपचारित कर बुआई करें। और इसी तरह से बुआई करनी भी चाहिए किसान भाइयों। राइजोबियम कल्चर से बीज

0: उपचार फफूंदी नाशी दवा से उपचारित करने के बाद जो है सो करें और वही सही होता है। और इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपकी कुल्थी की उपज जो है बहुत ही सही रहेगा और सही होगा। तो किसान भाइयों, ये तो बातें हुई कुल्थी की खेती पर, और अब चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पहले सुनते हैं एक भेंट वार्ता। तो आइए सुनते हैं भेंट वार्ता कृषि वैज्ञानिक क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र छिया की पलामू के डॉक्टर प्रमोद कुमार से ली गई। विषय है बाजरा की खेती की वैज्ञानिक तकनीक, और इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
1: तमाम किसान भाइयों को हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाणी में। किसान भाइयों, आज कार्यक्रम के अंतर्गत हम बातें करेंगे मोटे अनाजों की खेती की। मोटे अनाजों की खेती की पलामू में क्या संभावनाएं बनती हैं, खासकर बाजरा, ज्वार, रागी वगैरह की, इस पर विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ हैं पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र चियांकी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार। महाशय का स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: सर्वप्रथम तो हमारे किसान भाइयों को मोटे अनाजों के बारे में जानकारी दी जाए।
2: किसान भाइयों, जान जाए कि झारखंड में जो है मोटे अनाज की आज काफी संभावनाएं हैं। पहले हमारे खाद्यान्न स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतने नुकसान हो रहे हैं, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मोटे अनाज की खेती बहुत अच्छी मानी जाती थी, और इसमें खास करके ज्वार की खेती के बारे में अपार संभावना है। धान, मक्का, मड़ुआ के बाद ज्वार का प्रमुख स्थान है। ज्वार मनुष्यों के लिए और खाने के लिए अनाज के रूप में और पशुओं के चारा के लिए बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं, और की पैदावार जो है और इसमें प्रोटीन की भी मात्रा, जो हम लोग देखते हैं कि गरीबों जो ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर है उसको प्रोटीन का सोर्स हमें नहीं मिल पाता है, तो ये इसमें प्रोटीन भी 12% के आसपास में रहते हैं, 10 से 12% रहते हैं, और फैट वगैरह 3% वसा के रूप में रहते हैं, और 70% कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। यानी कि हमारा जो ये अनाज है मोटे अनाज, और इसकी खासियत यह है कि पलामू, लातेहार और गरवा यहाँ के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो यहाँ पर कम वर्षा होती है, और इसकी वाटर रिक्वायरमेंट इन सारी फसलों की सबसे कम है। यानी कि आप अगर इस वर्ष की भी ले लें बात, तो हमारे धान की खेती अच्छी नहीं हो पा रही है, और हर बार ये संभावना रहती है कि 2 वर्षों के बाद में ऐसी बारिश यहाँ कम होती है, रेन शेडो एरिया में आता है, असिंचित अवस्था में हम लोग जो है ज्वार की अगर खेती करते हैं तो हमारा इसका 450 मिलीमीटर से 600 मिलीमीटर में वर्षा में ये इसका पानी की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो ये मुख्यतः टाँड़ की फसल, यानी कि हम लोग टाँड़ के फसलों में बहुत सारी ऐसी फसलों को लगाते हैं, जैसे मक्का लगाते हैं या फिर अन्य फसल, कभी धान भी लगा देते हैं, लेकिन अगर कम पानी होती है तो ये फसलें मारी जाती है। तो यहाँ पर हो जाती है कि जब सुखाड़ की स्थिति भयावह हो जाती है, लोगों में एक डर बन जाता है कि अब सुखाड़ आ गया, अब क्या करेंगे, क्योंकि सभी लोग वर्षा वाली ही खेती करते हैं, जाड़े में तो खेती कम होती है, तो इसमें स्थिति में बहुत उनको जो है खाने का अनाज भी नहीं मिल पाता है, और इसके चलते बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। तो किसान भाइयों को हम यही बताएंगे कि कम से कम ज्वार की खेती करेंगे तो यहाँ इतनी वर्षा हो जाती है टाँड़ वाली भूमि में कि ज्वार की खेती आप निश्चित रूप से कुछ अनाज आपके घर में आ जाएगा, और इसके साथ में आप दलहनी फसलों में अरहर का कॉम्बिनेशन ले लें तो कम से कम रोटी दाल खाने के लिए कम पानी व्यवस्था में भी जो है हमको चिंता नहीं करना है। कभी कभी हम धान के चक्कर में पूरी फसल मारी जाती है और धान नहीं हुआ तो हम लोग सुखाड़ मान लेते हैं। इस विषम परिस्थितियों में हम लोग ज्वार की अगर खेती करते हैं तो ज्वार निश्चित तौर पे अनाज के रूप में और चारे के रूप में, चारे भी बहुत अच्छी फसल है जिसको कि चारे के रूप में किसान, और इस वर्ष की बात कर लें तो हमको जो है धान अगर नहीं हुआ तो चारा के रूप में भी नहीं है, माने मनुष्य के लिए भी, आदमी के लिए भी खाद्यान्न की समस्या होती है और जानवरों के लिए भी समस्या होती है, क्योंकि जानवर और हमारे 2 अभिन्न अंग हैं। तो इस तरह से हम लोग मोटे अनाज की खेती करते हैं तो हम लोग चावल, मक्का, मड़ुआ के बाद ज्वार की ही करते हैं, और खास करके हम लोग रोटी जो खाते हैं
1: जी,
2: तो इसकी रोटी थोड़ी मोटी होती है, रफेज होती है, फाइबर्स की मात्रा होती है, गड़बड़ क्या हो गया हमारे स्वास्थ्य सिस्टम में कि हम लोग आटे खाते हैं, गेहूं के आटा, और उसको भी बारीक खाते हैं, माने चलनी से चाल देते हैं, नतीजा क्या होता है, कंस्टिपेशन होता है। तो हम लोग अगर ज्वार की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर हम लोगों को जो है दाल और अरहर के रूप में दाल, कभी कभी हम लोग ज्वार के साथ अरहर के कॉम्बिनेशन, एक लाइन ज्वार और एक लाइन अरहर लगा के कर लेते हैं। तो हमारा ये तो निश्चित हो गया कि हमको जो है खाने के रूप में कोई, खाने के लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक अब बात हो गई हम लोग की, जो बात करें इसकी जो है बुआई का समय का, तो ये मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच में,

0: जिस तरह से टाँड़ वाली फसलों को हम लोग आता करते हैं, टाँड़ वाली भूमि में हम लोग इसकी खेती करते हैं।
1: अभी तो बहुत किसान भाई लोग,
0: हाँ बहुत, अभी बहुत किसान भाई अभी भी हम लोग, चूंकि ये इसकी 110 से 95 दिन की भी है, 100 दिन की भी वेराइटी है, 110 दिन की भी है। अच्छा। तो आप ज्वार की खेती उसको करके आप कर सकते हैं। तो ये ज्वार की खेती हम लोग इस परिस्थितियों में भी कर सकते हैं। हम लोग देखें कि इसके लिए जो है बीज दर, तो बीज दर हम लोगों को जो है 12 से 15 केजी जो है प्रति हेक्टेयर जो है बीज दर हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और लाइन से लाइन 45 सेंटीमीटर और पौधों से पौधे 15 सेंटीमीटर। जिस तरह से हम लोग मक्का की खेती करते हैं उसी ढंग से इसकी भी ज्वार की खेती करते हैं। अगर हमें देखना पड़ता है कि हमें ज्यादा चारा लेना है तो कौन सा प्रभेदों का चयन करें, और हमें अनाज ज्यादा लेना है तो कौन सा प्रभेद को चयन करें, तो इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो पलामू परिवेश में हम लोग देखते हैं कि अगर प्रभेदों की बात करें तो CSB20 प्रभेद है और CSB17, ये दोनों प्रभेद बहुत ही अच्छे प्रभेद हैं। CSB20 की जो हम लोग खासियत ये देखते हैं कि इसका जो है हमारे पास में 115 दिन की है, और CSB किसान भाई जो समझ रहे हैं 17 जो है वो 95 दिन का है,
1: अगर
0: हाँ तक परिपक्व हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो अगर हमको कम दिन है अवधि है तो हम लोग 17 का प्रभेद का CSB17 का उपयोग करेंगे, अगर लग रहा है कि हमारे पास समय है तो CSB20 का करेंगे। लेकिन देखते हैं, और पलामू में इसको ज्वार को हम लोग जिनोर भी कहते हैं, तो किसान भाई घबराने की जरूरत नहीं है कि इसको जिनोर भी कहते हैं। तो जिनोर जैसे आप खेती करते हैं तो इसको जरूरत है इसकी खेती के रकबा को हम लोग बढ़ाएं टाण वाली भूमि में। तो इसकी जो है अगर हमें ज्यादा चारा लेना है तो इसकी हाइट भी ज्यादा होती है, यानी कि 2 मीटर के आसपास में इसकी हाइट होती है किसान भाई। और जो हम लोग लेते हैं CSB17, ये छोटे प्रभेद हैं, तो इसमें चारा जो है हमको, अगर हम लोग CSB20 लेते हैं तो इसमें चारा का मात्रा जो है हमको जो है 150 से ऊपर क्विंटल, 200 क्विंटल आएगा प्रति हेक्टेयर, और 17 में जो है 140 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। जहां तक अनाज की बात करें हमने, तो 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है CSB20 प्रभेद के ज्वार को लगाएंगे तो उत्पादन देगा, और उसमें जो है हमारे पास में 25 क्विंटल के आसपास में उत्पादन देता है। तो हम लोग अनाज के साथ चारे और उसके साथ में हम लोग दोनों की संभावनाएं हमें बढ़ जाती है। तो किसान भाई इसको
1: इसके चारे भी तो स्वादिष्ट,
0: हाँ इसके चारे भी स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन हम लोग को किसान भाई थोड़ी सी हम लोग को सावधानी चारे की जब चर्चा आपने कर दी तो बहुत अच्छा है कि हम सावधानियां में ऐसे बताते ही कि चारे को जब भी लगाए तो किसान भाई इसमें एक SCN का फॉर्मेशन होता है, पॉइजन का फॉर्मेशन होता है कम पानी की अवस्था में। लेकिन किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि 45 दिनों के पहले चारे को काट के ना खिलाएं। 45 दिनों के बाद जब फूल आ जाते हैं उसके बाद आप 50 दिनों के बाद खिलाते हैं तो इसमें कोई इस तरह की समस्या नहीं होती है।
1: जी।
0: अगर हमको चारा ज्यादा पैदा करना है, अनाज ज्यादा करना है, तो हम लोग बीज दर को बढ़ा देते हैं।
1: अच्छा।
0: तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो जिस तरह मक्के की खेती करते हैं और एक लाइन अगर अरहर लगाना है और एक लाइन ज्वार लगाना है तो हम लोग 75 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लोग दोनों फसलों को लगा सकते हैं। और जहां तक की बात है मिट्टी की बात है, तो ये टाँड़ वाली भूमि है और बलुई जो मक्के के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है, बलुई दोमट मिट्टी, वो मिट्टी अगर होती है तो इस मिट्टी में हम लोग खेती कर सकते हैं। और पीएच 6 से 7.5 के बीच में अगर हो तो इसके लिए ज्यादा ही उपयुक्त है।
1: तो इस प्रकार से तो देखा जाए तो हर भूमि पे हमारे किसान भाई कर सकते हैं।
0: हाँ, खास करके मैं वो गौपालक किसानों को जो चारा के रूप में करते हैं इसको जो है बरसात के अलावा अन्य सीजन में भी कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: लेकिन ध्यान यही रखना है सावधानियां के रूप में कि 45 दिनों के पहले उसको न खिलाएं, और अगर सिंचित अवस्था है, ये तो असिंचित अवस्था की बात की, जब सिंचित अवस्था आपके पास में पानी है और चारा की खेती करना है, चारा के रूप में करना है या फिर अनाज के रूप में करना है, तो फिर पानी वाली स्थिति में इस पॉइजन का जहर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, एहतियात बरतने चाहिए। हम लोग को ये देखते हैं कि और इसके जो बीज दर हम लोग बीज की उपचार, किसान भाई जब भी कोई भी बीज लगाते हैं, ज्वार की बीज हमने समय बता दिया कि मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच में है, तो किसी भी बीज को लगाने के लिए बीज उपचार हम लोग कार्बंडाजिम से 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से बीज को उपचारित करके, और ज्वार को एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में 45 सेंटीमीटर होना चाहिए और पौधों से पौधों के बीच में 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस तरह से हम लोग ज्वार की अगर उसमें खेती करते हैं तो हमारा, और उर्वरक की जहां की बात होती है तो 60-40-20 किसान भाई, नत्रजन की मात्रा 60 और हमारे स्फुर की मात्रा को 40 और पोटास की मात्रा को 20
1: देनी चाहिए।
0: ये कम से कम 2 स्प्लिट में देते हैं, एक तो बुआई के समय हम लोग आधी मात्रा को खाद को डाल देते हैं और आधी मात्रा जो यूरिया की है, तो किसान भाई इसको जो है 88 केजी यूरिया जो है प्रति हेक्टेयर डालेंगे, यानी कि 1.25 केजी के आसपास अगर प्रति की जो है कट्ठे के हिसाब से हम बात करें तो 1.25 केजी कट्ठा अगर डालते हैं 25 से 30 दिनों में निकाई गुड़ाई करने के बाद में, तो और मिट्टी चढ़ाते हैं उसी समय हम लोग यूरिया का भुरकाव करते हैं, तो हमारे

0: साथ में ये अच्छी उपज इनको मिलेगी किसान भाइयों को। और इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि अगर किसान भाई, जब हम लोग निकोनी तो किसान भाई करते हैं, मिट्टी को चढ़ाते हैं 25-30 दिनों के बाद में, लेकिन अगर किसी के पास समस्या है, आदमी नहीं है घर पे, तो हम लोग रासायनिक खरपतवारों का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अच्छा। बुआई के समय ही हम लोग जो है एट्राजिन का प्रयोग करेंगे 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, तो हमारे पास घास निकलने की समस्याओं से समाधान पा सकते हैं। तो हमारा अगर निकोनी के लिए मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं किसी कारण से, तो हम रासायनिक खरपतवारों का इस्तेमाल करके अच्छी उपज को हम लोग ले सकते हैं। और खास करके हम लोग देखते हैं किसान भाई, इसमें बहुत सारे रोग व्याधि सूट फ्लाई करके हमारे पास में जो है किसान भाइयों के यहाँ लग जाते हैं, और वो कीट जो है बहुत नुकसान करते हैं। इसके लिए हम लोग जो है, या फिर तना छेदक, जब देखते हैं कि नी हाइट घुटने के पास जब ज्वार आ जाते हैं, तो फिर उसमें भी जो है तना छेदक लग जाते हैं। तो तना छेदक अगर किसान भाई लगते हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छी दवा जो है कोराजन बाजार में उपलब्ध है, 0.6 ml, यानी कि 1 ml से कम आप 1 लीटर पानी में घोल बनाकर कोराजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर रीजेंट दवा जो बाजार में आती है फिप्रोनील के नाम से, तो वो 4 से 5 दाना प्रति गाभा में अगर डालते हैं, तो हमें तना छेदक से समस्याओं से किसान भाई को नुकसान पड़ सकते हैं। साथ साथ इसमें किसान भाई ज्यादातर रोग व्याधियां कम लगती हैं, ऐसे अगर लगते हैं रोग तो रस्ट रोग हमारे पास लगते हैं, जिसमें कि उसमें देखेंगे गाभा में लाल भूरे रंग का जो है गोल धब्बा बन जाता है, तो इसके लिए यह एक तरह का रोग है। और इस रोग को दूर करने के लिए हम लोग बाजार में टिल्ट नाम की जो दवा है, वो 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के उसमें डालेंगे, तो हमारा जो है इस रस्ट रोग से छुटकारा मिल सकता है
1: जी। और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मोटे अनाजों की खेती से छूट गई?
0: हाँ किसान भाई, आप जाने जब भी इसकी खेती करें, तो हमें देखें कि असिंचित अवस्था में रेनफेड में हम लोग की ज्वार बहुत ही अच्छी चीजें मानी जाती है। हम लोग कभी कभी किसानों को देखते हैं कि मोटे अनाज से रुझान उनका हट गया है, और फिर पूरी दुनिया भारत मोटे अनाजों की तरफ लौट रहा है। क्यों? इसका कुप्रभाव हम लोग देखते हैं कि जब आटे को बारीक चाल देते हैं, उसके चोकर को भी निकाल देते हैं, तो हम देखते हैं कि कंस्टिपेशन से सारे लोग ग्रसित हैं। अगर ज्वार की रोटी खाते हैं तो प्रोटीन के हिसाब से बैलेंस डाइट भी है, और हम जो है हमारा स्वास्थ्य के हिसाब से भी अच्छा है, और कम दिनों में फसल और कम पानी में, जो पलामू में 450 मिलीमीटर से 600 मिलीमीटर पानी अगर होगी, और उतनी पानी इस तरह से रेनफेड एरिया में पड़ती ही है हर बरसात में, तो हम अनाज के साथ साथ चारा भी उत्पादन करेंगे, और उसके साथ में अच्छे जो है हमारा जो है जानवरों का स्वास्थ्य रहेगा, मनुष्यों का स्वास्थ्य रहेगा, और हमारा कभी रिस्क नहीं होगा कि हमारी खेती अच्छी होगी या नहीं।
1: अब थे पलामू जिला क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियांकी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और मोटे अनाजों की खेती से संबंधित जानकारियां हमारे किसान भाइयों के साथ साझा की। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आपने सुना कृषि वैज्ञानिक क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियांकी पलामू की डॉक्टर प्रमोद कुमार से ली गई भेंटवार्ता। विषय था बाजरा की खेती की वैज्ञानिक तकनीक, और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। अब आइए हम बातें करते हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, इस क्षेत्र की जलवायु कद्दू वर्गीय फसलों जैसे कुम्हड़ा, खीरा, नेनुआ, झिंगी, तरबूज और लौकी की खेती के लिए बहुत ही सही है, और इनकी खेती के लिए जाड़े के मौसम में नर्सरी लगाने और फरवरी के मध्य में रोपाई करने से फसल 40 से 45 दिन पहले तैयार हो जाती है। बाजरा में इस समय तैयार उत्पाद को अच्छी कीमत मिलती है। सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में कृषक इन फसलों की खेती करके खाली समय में रोजगार जुटाने के साथ साथ अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं, उसे लाभ भी कमा सकते हैं। किसान भाइयों, हम आपको कुछ उन्नत किस्में बता रहे हैं, जैसे कुम्हड़ा में अर्का सूर्यमुखी, अर्का चंदन, पूसा विश्वास और स्थानीय है। उसी तरह करेला में अर्का हरित, प्रिया, कल्याणपुर सोना, NC 48, पूसा हाइब्रिड 1 है, और खीरा में स्वर्णपूर्णा, स्वर्ण अगेती, स्वर्ण शीतल, पूसा संजोग, जापानी ग्रीन लौंग स्थानीय। नेनुआ में पूसा चिकनी स्थानीय, और झिंगी में है स्वर्ण मंजरी, स्वर्ण उपहार, पूसा नसदार, पूसा सुप्रिया स्थानीय। और तरबूज में अर्का माणिक आप ले सकते हैं, अर्का ज्योति, सुगर बेबी। और लौकी में की बातें करें किसान भाइयों, तो इसमें अच्छा जो उन्नत किस्में जो हैं, अर्का बहार, पूसा समर, प्रोलिफिक लॉन्ग, पूसा समर, प्रोलिफिक राउंड, पूसा मैकदूत, पूसा मंजरी और स्थानीय है। रही बात इन सब कद्दूवर्गीय सब्जियों की भूमि की तैयारी के बात बारे में किसान भाइयों, तो हम आपको बता दें कि भूमि की तैयारी जो है आप इस तरह से करें, जैसे कि इन फसलों के लिए जैविक पदार्थ युक्त उपजाऊ भूमि अच्छी रहती है। खेत की 2-3 जुताई करके उचित दूरी पर नालियां अथवा थाले बनाए जाते हैं। बीजों की बुआई हेतु पॉलीथीन की छिद्र युक्त थैलियां अच्छी रहती हैं। इनमें गोबर अथवा पत्तियों की अच्छी तरह सड़ी हुई खाद और मिट्टी बराबर मात्रा में मिलकर अच्छी तरह दबाकर भरें और थैलियों को धूप और गर्म स्थान पर एक साथ खड़ी करके रखें और प्रति थैली 3-4 बीज बोएं। केंद्र पर हुए परीक्षणों के आधार पर पौधशाला में बीजों की बुआई का उचित समय 15 दिसंबर से 15 फरवरी के बीच पाया गया है, इसलिए आप भी ऐसा ही करें। और सर्दी के बचाव के लिए थैलियों को पॉलीथीन की पारदर्शी चादर से ढक कर रखना सही होता है। जी हाँ किसान भाइयों, सिंचाई करने के समय चादर हटाई जा सकती है। और तो इस विधि से क्या होता है किसान भाइयों की पौधों की बढ़वार के लिए आवश्यक तापमान बना रहता है, साथ ही सर्दी से उनकी रक्षा होती है और बीज का आकार एवं रोपाई की दूरी के अनुसार इन फसलों के लिए जो है सो 3.0 से 7.1 प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। और आपको बता दें किसान भाइयों की इनकी दूरी जब रोपाई और थालों के बीज की दूरी जो है वो होनी चाहिए। पौधशाला में तैयार पौधे की रोपाई के लिए पूर्व में ही यानी कि पहले से ही क्यारियों में उचित दूरी पर थाले बनाए जाते हैं। कुम्भड़ा और लौकी के लिए कतारों के बीच 2 से 50 यानी 250 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए 125 सेंटीमीटर पर थाले बनाने चाहिए। लेकिन रही बात तरबूज के, तो तरबूज के लिए भी 200 से 125 सेंटीमीटर नेनुमा, झींगा और खीरा के लिए 100 से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर थाले बनाना सही रहेगा। रुपाई से पहले पौधों की अच्छी तरह सिंचाई करें ताकि थैली के अंदर मिट्टी जो है सो आपका गीली हो जाए। थालों में पर्याप्त मात्रा में गोबर अथवा कंपोस्ट खाद रुपाई से 15 दिन पहले मिलाएं। रोपाई से एक दिन पूर्व मतलब एक दिन पहले नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा के साथ थालों में अच्छी तरह मिलाएं। किसान भाइयों, रोपाई करने के लिए शाम का समय अच्छा रहता है। रोपाई करते समय पॉलीथीन की थैली को सावधानी पूर्वक काट कर हटा दें जिससे मिट्टी न बिखरे और उसके बाद थाले में अच्छी आकार का गड्ढा बनाकर पौधे लगाएं, अच्छी तरह दबा दें। रोपाई के पश्चात जब तक पौधे स्थापित न हो जाएं सिंचाई करना ज़रूरी होता है। जी हाँ किसान भाइयों, इससे पौधों की जड़ें जो है मिट्टी के संपर्क में आ जाती हैं और वे सूखते नहीं हैं। थालों में दूसरी और तीसरी सिंचाई शीघ्र करनी चाहिए, इससे पौधे अच्छी तरह स्थापित हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरह से अगर आप करते हैं तो रोपाई और थालों के बीच की दूरी को सही तरीका से करके ये सब जो है पौधे लगाते हैं तो निश्चित ही ये बहुत ही फलेंगे और इससे आपको लाभ ही लाभ होगा। रही बात कीट और रोग नियंत्रण की, तो इन फसलों में कद्दू का लाल कीड़ा बहुत हानि पहुंचाता है किसान भाइयों, इस बात पर गौर करना चाहिए। और एक कीट पत्तियों को खुरच कर खाता है तो जिसके फलस्वरूप पत्तियां जाली के समान दिखाई देती हैं, इसके नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफॉस का प्रयोग करें। लाल मकड़ी यानी माइट पत्तियों को से रस चूसकर इन फसलों को हानि पहुंचाती है, तो ये कीट पत्तियों पर जाला बनाते हैं। अधिकता से में पत्तियां पीली सूखकर होने लगती हैं तो इसके नियंत्रण के लिए कैलेथेन का 10 दिन के अंतर पर छिड़काव करें। फलों में छिद्र बनाकर अंडे देने वाली फल मक्की की रोकथाम के लिए मेलाथियन का 10 दिन के अंतर पर 2 बार छिड़काव करें। रही बात रोग की, तो चूर्णिल आसिता रोग के प्रकोप के फलस्वरूप पत्तियों पर सफ़ेद पाउडर दिखाई देता है, इसके नियंत्रण के लिए वाविस्टीन 10 ग्राम आप ले सकते हैं और उसका छिड़काव करें। फलों को सड़ने से बचाने के लिए ब्लू कॉपर अथवा एंडोफिल एम 45 का छिड़काव करें। तो इस तरह से आपकी देख रेख में रहेगी तो आपके फसल तो निश्चित ही किसान भाइयों की सही तरीके से सही होंगे। और अब जो है किसान भाइयों, हमें इसी के साथ दीजिए ग्रामीण सभा कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कृषकों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा, आकाशवाणी का ही डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: हे गर्ल्स,
6: हाय, कांग्रेचुलेशंस।
5: आज तो पार्टी चाहिए,
6: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
7: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
5: पिज्जा पार्टी, ये कार्ड और पिन दे।
7: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
5: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
7: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
9: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आँखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रति

0: प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
1: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
0: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की शिष्टाचार भेंट। राज्य के समसामयिक विषयों पर की चर्चा। मॉनसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने की उच्च स्तरीय बैठक। अधिकारियों को समय पर जवाब देने के निर्देश। श्रावणी मेले की पहली सोमवारी पर बाबा वैद्यनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक 2.25 लाख श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। मौसम विभाग ने झारखंड में 7 अगस्त तक भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया येलो अलर्ट। लोगों से सतर्क रहने की अपील। और जूनियर राष्ट्रीय हॉकी के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा झारखंड। राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में खूंटी के निशानेबाजों ने जीते 24 पदक। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य के समसामयिक घटनाक्रम और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों से अवगत कराया। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को अपने 2 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक संवाद से विश्वास की एक प्रति भी भेंट की। इससे पहले उन्होंने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भी मुलाकात की थी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि योग्य अभ्यर्थियों की अनदेखी कर कम अंक वालों का चयन किया गया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि प्रदर्शन के बावजूद किसी भी सरकारी प्रतिनिधि ने आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात नहीं की है।
1: जिस अभ्यर्थी के 300 में 299 मार्क्स है उसका चयन नहीं, अलबत्ता 300 में 17 मार्क्स जिसका उसका चयन। बड़े मात्रा में नियुक्ति घोटाला हुआ। बाकायदा एक होटल को लीज में लेकर वहाँ एंसर शीट लिखवाई गई और तभी भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, उनका फ्यूचर खराब हुआ। तो गुलाम कर रहे 10 दिनों से धरने बैठे हैं, लेकिन सरकार का एक भी नुमाइंदा उनसे संवाद करने नहीं गया।
0: आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने आज रांची में ऑनलाइन सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केवल कुछ गिरफ्तारियों से समस्या का समाधान नहीं होगा और सरकार को जांच की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
2: किस केस का निष्पादन किया है। हमेशा ये माना जाता है कि जिस केस पर सरकार को आगे जाना नहीं है उस सीआईडी के विभाग को छोड़ देते हैं ताकि वो ठंडे बस्ते पर पड़ जाए। चंद अधिकारियों को केवल बुला के पूछताछ और कुछ गिरफ्तारी से ये मसला समाधान होने वाला नहीं है।
0: इस बीच कांग्रेस नेता और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने युवाओं के भविष्य को गंभीर विषय बताते हुए कहा कि 5 अगस्त को पार्टी का शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर आयोग में सुधार की मांग करेगा।
3: हम चाहते हैं जेपीएससी इतना मजबूत हो एथिकली मॉरली कि इस तरह की बात भविष्य में झारखंड ऐसे राज्य में ये बात सामने नहीं आए। हमारे पार्टी ने भी तय किया है राज्य के युवाओं के लिए एक टीम कांग्रेस की जाएगी और परमानेंट समाधान क्या होगा उस विषय पर पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा।
0: विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने आगामी 6 से 12 अगस्त तक होने वाले मॉनसून सत्र को लेकर आज रांची में उच्च स्तरीय बैठक की। स्पीकर ने अधिकारियों को सदन के प्रश्नों के उत्तर और विधेयकों की प्रतियां समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। स्पीकर ने सभी सदस्यों से सदन की कार्यवाही को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संचालित करने में सहयोग की अपील की है।
4: ससमय कोई भी विधेयक जो सदन में लाने के लिए सोचे हैं उसका समय देना पड़ेगा ताकि कि मान्य सदस्यों के बीच हम लोग उसको समय पर वितरित कर सकें। तो हम लोगों ने इस तरह से जो त्रुटि आता है नहीं आवे उसके लिए भी उच्च स्तरीय समिति में समझ और सामान्य तरीके से ही विधानसभा का कार्य का संचालन पक्ष और विपक्ष मिलकर करेंगे।
0: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों के साथ बैठक की। उन्होंने 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद सभी पात्र युवा विद्यार्थियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने शिक्षण संस्थानों में विशेष पंजीकरण शिविर और हेल्प डेस्क आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
5: जहाँ जुनून मिलेगा इतिहास से, वहाँ लिखा जाएगा एक नया अध्याय। बिरसा मुंडा की धरती पर अब रचा जाएगा इतिहास।
6: माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार झारखंड की राजधानी रांची बनने जा रही है एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2026 की मेजबान।
5: 26 जुलाई से 16 अगस्त तक मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम बनेगा फुटबॉल का नया रण क्षेत्र। जमशेदपुर FC सहित देश की दिग्गज क्लब टीमें और विदेशी टीमें मैदान में उतरेंगी। लीग मुकाबलों के साथ होगा एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल भी।
6: गोल, गौरव और झारखंड की मेजबानी।
5: तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर आइए और बनिए हिस्सा इस ऐतिहासिक सफर का।
6: मैच का आनंद लेने के लिए 22 जुलाई से 16 अगस्त के बीच टिकट काउंटर से अपना फ्री टिकट लेना ना भूले। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: पद्म भूषण से सम्मानित दिवंगत झारखंड आंदोलनकारी शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर कल रामगढ़ के लुकैया टांड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां दिशम गुरु शिबू सोरेन की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। रामगढ़ के उपायुक्त ऋतुराज ने बताया कि इस अवसर पर एक विकास मेले का आयोजन कर परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा।
7: नीमरा के इस लुकैया टांड ग्राउंड में कल का कार्यक्रम होगा, इसमें विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण का कार्यक्रम रहेगा। वो पूरे कार्यक्रम को लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग निगरानी रख रहे हैं। लगभग हम लोगों ने कैपेसिटी रखा है 10,000 से 12,000 तक का।
0: रेलवे मेल सेवा ने रक्षाबंधन के अवसर पर डाकघरों में 10 रुपए की कीमत वाला विशेष वाटरप्रूफ लिफाफा जारी किया है। रांची में सुपरिंटेंडेंट प्रेमजीत कुमार ने बताया कि विभाग 2400 घंटे सेवाएं दे रहा है। व्यापारियों के लिए लॉजिस्टिक पोस्ट और बुक नाउ पे लेटर जैसी डोरस्टेप सुविधाएं भी शुरू की गई हैं।
8: अपना एक इनवेलप जो है निकाला है रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में, जिसको कि पब्लिक जो है वो जो है काउंटर से किसी भी डाकघर से या फिर रेलवे के काउंटर से ले सकती है। ये वाटरप्रूफ है, ये 10 रुपए कीमत में जो है काउंटर में और सारे पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध है। इवन की ग्रामीण क्षेत्रों के जो पोस्ट ऑफिस है उसमें भी जो है ये उपलब्ध है। इसको आप स्पीड पोस्ट से या फिर ऑर्डिनरी से आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते।
0: श्रावण, आदिवासी छात्र एकता की केंद्रीय कमेटी ने असम में रह रहे संथाल, हो, मुंडा और उराव समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग की है। जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत में संगठन ने CNT और SPG एक्ट सहित जनजाति भूमि संरक्षण से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों को सख्ती से लागू करने की अपील की। श्रावणी मेले की पहली सोमवारी पर आज देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब तक 2.25 लाख कांवरियों ने पवित्र ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक कर लिया है।
9: श्रावण की पहली सोमवारी को देवघर में श्रद्धालुओं की ऐतिहासिक भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह 3:05 पटपट खुलते ही शाम के 7:15 तक लगातार श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है। पूरा दंडाधिकारी, पुलिस जवान, वॉलेंटियर सभी कतारबद्ध श्रद्धालुओं को जलाभिषेक कराने में लगे हैं। देर रात तक करीब 2 लाख कांवरियों का जलाभिषेक कराने की दिशा में प्रशासन जुटा है। आशीष कुमार अम्बस्त, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
0: श्रावणी मेले की पहली सोमवारी पर आज देवघर के साथ साथ दुमका के बासुकीनाथ धाम और राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर सहित राज्य के सभी शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। प्रशासन द्वारा कांवरियों की सुरक्षा और सुगम जलार्पण तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मौसम विभाग ने राज्य में 7 अगस्त तक भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है। कल पलामू, चतरा और बोकारो सहित कई जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। झारखंड ने दिल्ली को 4-3 से हराकर जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां उसका मुकाबला उत्तर प्रदेश से होगा। वहीं 16वें झारखंड राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में खूंटी के निशानेबाजों ने 4 स्वर्ण सहित कुल 24 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की शिष्टाचार भेंट, राज्य के समसामयिक विषयों पर की चर्चा। मॉनसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने की उच्च स्तरीय बैठक, अधिकारियों को समय पर जवाब देने के निर्देश। श्रावणी मेले की पहली सोमवारी पर बाबा बैद्यनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक 2.25 लाख श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। मौसम विभाग ने झारखंड में 7 अगस्त तक भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया येलो अलर्ट, लोगों से सतर्क रहने की अपील। और जूनियर राष्ट्रीय हॉकी के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा झारखंड, राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में खूंटी के निशानेबाजों ने जीते 24 पदक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
10: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
11: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
12: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
13: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
12: So girls, क्या हो रहा है?
13: बिल हो रहा है।
12: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
14: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: जिले में आजकल

0: इस अंक में आप सुनेंगे खूंटी जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारी खूंटी संवाददाता।
1: खूंटी जिले में इस हफ्ते अड़की क्षेत्र के तिंतिला में भारी बारिश से बहे पुलिया की अस्थायी मरम्मत का कार्य तमार विधायक विकास सिंह मुंडा के निर्देश पर कराया गया। मरम्मत के बाद फिलहाल लोगों के आवागमन की सुविधा से ग्रामीणों को राहत मिली है। 27 जुलाई को सीआरपीएफ 94 बटालियन ने 88वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। खूंटी में एसीबी ने बृहस्पतिवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट सह महिला थाना प्रभारी पुलिस अवर निरीक्षक सपना सुलेखा को 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इधर सावन माह में आमरेश्वर धाम में प्रत्येक रविवार और सोमवार को होने वाली भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था बहाल की है। इस संबंध में जिले के पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया,
2: कुछ फोर्सेज को बढ़ा के ही देंगे जितना पिछले वर्ष दिया गया था, और लोगों ने कुछ कुछ समस्याओं के बारे में बताया कि जैसे पार्किंग वार्किंग की व्यवस्था के बारे में, तो उस जगह को भी हम लोगों ने चिन्हित किया है जिससे कि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। जो पार्किंग स्थल बनाया जाएगा, सब लोग अपना फोर व्हीलर या टू व्हीलर जो भी है उसको वहीं पे खड़ा करें।
1: बारिश के मौसम में होने वाली मलेरिया, डेंगू, डायरिया समेत अन्य बीमारियों से बचाव को लेकर खूंटी के सिविल सर्जन डॉक्टर ललित रंजीत ने कहा,
3: इस समय पब्लिक को बहुत सावधानी से रहना है। पेयजल तो सुरक्षित लेना ही है। डायरिया से बचने के लिए हम ये कहेंगे कि डाड़ी का, तालाब का, ये सब का जगह का ना पिए। जो सप्लाई पानी है, चापानल है, उसका पिए। इसके अलावा पानी को गर्म करके कम से कम 10 मिनट उबाल करके उसको घड़े में ढक करके रख दीजिए और उसी पानी को पीने के लिए इस्तेमाल कीजिए, तो इससे हम कम से कम डायरियल डिजीज से बच सकते। रहा सवाल मच्छरों का और ये सब का, तो ये इस मौसम में बढ़त होती है और इस कारण से मलेरिया का प्रभाव भी बढ़ता है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि घर के आसपास या कहीं भी पानी जमा न होने दे।
1: सिविल सर्जन डॉक्टर ललित रंजीत ने बारिश के मौसम में बड़ी संख्या में होने वाले सर्प दंश को लेकर जरूरी सुझाव दिए और सर्प दंश में झाड़ फूंक से बचने की सलाह भी दी। सिविल सर्जन ने कहा,
3: सर्प दंश की भी घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं और इसमें काटने के बाद कभी घबराना नहीं चाहिए, और खासकर जैसे लोग पहले करते हैं कि कपड़ा या रस्सी बांध लेते हैं या उस जगह पे काटते हैं या चूसने का कोशिश करते हैं, तो ये सब नहीं करना है। मरीज को शांत रखना है, मरीज को सोने मत दीजिए, उसको घबराहट नहीं हो। मतलब रक्त प्रवाह अगर बढ़ता है तो ये जहर का प्रभाव बढ़ेगा, और झाड़ फूंक चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़िए, उसको जल्द से जल्द नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में उसको पहुंचाएं।
1: सावन के पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री सह पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सावन मेले का विधिवत शुभारंभ किया और परिवार संग बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा,
4: यहाँ श्रद्धालु लोग आए अपने पवित्र जल अर्पण कर सुख समृद्धि की कामना करें और सभी के घर में खुशहाली आए, सुख समृद्धि आए।
1: खूंटी में बहुप्रतीक्षित तुपुदाना कुंदी बरटोली फोरलेन NH-20 एवं खूंटी बाईपास निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू कराने की मांग को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष आनंद कुमार और अनूप साहू बृहस्पतिवार को दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर परियोजना को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने का आग्रह किया। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी।
0: अभी आप सुन रहे थे खूंटी जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची केंद्र की प्रसारण सेवा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में श्रोताओं शाम के 7:17 हो चुके हैं। आइए हम लेकर हाजिर हैं प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

0: याद। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राजेश और एक बार फिर से सोमवार का दिन है और आपके लिए बुनियाद कार्यक्रम लेकर आ गया। बुनियाद कोई नया नाम नहीं, सोमवार का दिन ही इस वक्त अलॉटमेंट है। ऑल इंडिया रेडियो से ये कार्यक्रम सुनते हैं और इसमें हम युवा साथियों, उनके माता पिता, अभिभावक और छोटे छोटे भाई बहनों से बातचीत करते हैं और बताते हैं कि टेक्निकल पढ़ाई करने से आपके लिए आज के दौर में रोजगार मिलना बहुत आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप टेक्निकल पढ़ाई कर लेते हैं कोई भी, तो ज्यादातर टेक्निकल पढ़ाई में आप स्वरोजगार भी तलाश सकते हैं। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार, यहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, हाँ, जहाँ MBBS की करीब 250 सीटें हैं। पूरे भारत से लड़के लड़कियां, युवक युवतियां आकर यहाँ मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, PG करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें टेक्निकल पढ़ाई की, तो इंटरमीडिएट बायोलॉजी जिन्होंने किया है उनके लिए सारा कुछ है यहाँ। मेडिकल तो है ही, अगर आप नीट क्वालिफाई करते हैं, इसके अलावा पैरामेडिकल की पढ़ाई है, फार्मेसी की पढ़ाई है, नर्सिंग की पढ़ाई है, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई है, हर पढ़ाई यहाँ उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात है ना कि कैंपस में रहने की सुविधा भी है, सेफ कैंपस है। अगर हम बात करें जिन्हें लिखने पढ़ने का बोलने का शौक है, तो जर्नलिज्म की पढ़ाई भी है, इसके अलावे यहाँ लॉ की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मैनेजमेंट की पढ़ाई, लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई, ढेर सारी पढ़ाई है जिसे इस रेडियो के माध्यम से बता पाना शायद हमारे लिए संभव नहीं होगा। हम इसीलिए नंबर बताते हैं कि आप जाकर के बात कर लें इस नंबर पर, कार्यक्रम खत्म हो और लगाइए नंबर 9431899002, 9431899002, और एक टोल फ्री नंबर भी है 1800121051, 1800121051। और अगर जो तफसील पूरी जानकारी चाहते हैं, तो एक वेबसाइट भी है www.gnsu.ac.in, इस पर जाकर के आप जानकारियां ले सकते हैं। रही बात पैसे की, तो पैसे के लिए तो हमारी बिहार सरकार ने इतना अच्छा इंतजाम कर दिया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जी हाँ, जिसमें 4 लाख रुपए तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में लोन मिल सकता है पढ़ने के लिए, और जब नौकरी लग जाए तब आसान किश्तों में इसे चुकाया जा सकता है, और लड़कियों के लिए तो और भी ज्यादा सुविधाएं हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, हर एपिसोड में हम किसी विशेषज्ञ को बुलाते हैं और उस कोर्स के विषय में जानकारी देते हैं। आज हमारे साथ होंगे यहाँ कुमार आलोक प्रताप, जी हाँ, जो कि रजिस्ट्रार हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में। इनसे आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी को लेकर, लेकिन आपको बता दें कि बीएड स्पेशल एडुकेशन अभी एक नया कोर्स आया है जो सिर्फ यही गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में है, आप चाहें तो इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। आप प्लेन बीएड करते हैं ना, हाँ बीएड करते हैं, इसमें स्पेशल है, मतलब चैलेंज लोगों के लिए भी आप पढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ सकता है, अपना अपना अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, सारी चीजें हो सकती है। हमने कहा ना कि बुनियाद में हम वैसी जानकारियां देते हैं जो आपके जीवन के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। चलिए हम कुमार आलोक प्रताप जी से कहते हैं, स्वागत करते हैं सर आपका, और आप रजिस्ट्रार हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के, अपना परिचय, संक्षिप्त परिचय आप थोड़ा सा दे दीजिए।
1: मैं कुमार आलोक प्रताप गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार का कार्यभार देख रहा हूँ, मैं कुल सचिव का कार्यभार देख रहा हूँ, मैं प्रबंधन विभाग का अध्यक्ष था जब मैं परीक्षा नियंत्रक था, अब जब मैं कुल सचिव हूँ, यह सब एक शैक्षणिक यात्रा में बच्चों से इंटरेक्शन तो होता ही है, उनके माँ बाप आते हैं और हमको बहुत कुछ देखने को मिलता है।
0: वाह क्या बात है, मुझे भी मौका मिलता है इतने बड़े बड़े लोगों से बातचीत करने के लिए। इतने लंबे समय से इतनी लंबी यात्रा रही है। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जब शुरू हुआ और आज की स्थिति में हाँ बहुत सारा समय निकल गया, बहुत सारी चीज़ें हुई और आपने बताया और मुझे भी पता है कि सबसे पहले यहाँ मेडिकल कॉलेज खुला था और धीरे धीरे धीरे धीरे ये आगे बढ़ता चला गया पूरा बिहार और झारखंड। जी हाँ, इस कार्यक्रम बुनियाद को सुन रहा है सबसे पहले हाँ कुमार आलोक प्रताप जी, हम चाहेंगे कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में हाँ इसके दर्शन के बारे में है ना अपनी वाणी से अपनी आवाज से लोगों को परिचित करवाइए। सबसे पहले
1: भगवान की ईश्वरीय मैं सौभाग्य कहूँगा कि मैं गोपाल नारायण सिंह जी को इस मामले में बहुत मैं साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी एक यह जिद ही थी कि मैं कुछ भी करूँगा तो गाँव में करूँगा, उसका मतलब असर हम देख रहे हैं इस इलाके में। और आज तो खैर हमारा विश्वविद्यालय हमारे कुछ मेहनत के परिणाम है, हमारे शुभचिंतकों का परिणाम है, हमारे मीडिया का परिणाम है, हमारे एलुमनाइज का सहयोग है कि बिहार के कोने कोने में हमारे विश्वविद्यालय को लोग जानते तो हैं। वहाँ वहाँ अब पैन इंडिया से बच्चे और फैकल्टी आते हैं और मेडिकल में तो शुरू से ही नीट के

0: जितनी उनमें जागरूकता है। दिल्ली में 25 साल के अपने करियर में मैंने वैसा कमिटमेंट नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वहां पर किसी का 4 कॉलेज है, किसी के 10 व्यवसाय हैं, सब लोग वहाँ बड़े बड़े हाउसेज हैं। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बिजनेस क्लास के लोगों का एक साइड पोर्टफोलियो है, तो वो स्टेटस के लिए चलाते हैं। दे नेवर विजिट, वो कभी आते नहीं हैं। उनके लोग हैं, आते हैं, पर इनका जो है सो आत्मिक लगाव है। 7 बजे सुबह वो 8 मतलब अपने घर से 7:30 तक निर्माण कार्य हो, शिक्षण कार्य हो, क्लास चल रहा है कि नहीं, चले आते हैं।
1: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद। मैं हूं राजेश और हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम के रजिस्ट्रार कुमार आलोक प्रताप। बातें हो रही हैं, अगर टेक्निकल पढ़ाई करनी है, खास करके बीएड स्पेशल एजुकेशन और भी बहुत सारे कोर्स हैं, तो 9431899002 ये नंबर है, 1800121051 ये टोल फ्री नंबर है, और www.gnsu.ac.in ये हमारा वेबसाइट का पता है, इस पर जाकर आप जानकारियां ले सकते हैं। रजिस्ट्रार साहब, यहाँ पर हाँ लड़के और लड़कियों को रहने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था है, लेकिन अगर देखें तो लड़कियों की संख्या ज्यादा है लड़कों से यूनिवर्सिटी के अंदर। ये यूनिवर्सिटी की कहानी कहती है कि यहाँ कितना सुरक्षित और कितना बेहतर माहौल है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: वाकई देखिए, हमारा विश्वविद्यालय जो है उसका जो कैंपस है वह सासाराम और डिहरी, एक दो ट्विन सिटी के बीच में है। अब ये मतलब बहुत अच्छे शहर हैं और दोनों की दूरी करीब करीब 7-8 किलोमीटर है। अब देखिए, इससे क्या फायदा है कि यह जो ग्रामीण परिवेश में विश्वविद्यालय है तो बच्चे ज़्यादातर शहर नहीं जा पाते हैं। रविवार के दिन सुरक्षित रूप से विश्वविद्यालय के बस जाती है, उससे अपनी खरीदारी वगैरह करने जाते हैं। हम एक चीज बताएं, ये गर्ल्स स्टूडेंट का तो अभी हम देखते हैं कि पूरे राष्ट्र में, मेरा तो बहुत लंबा 37 साल का करियर हो गया, सभी जगह बच्चियों का पढ़ने का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जब हम विश्वविद्यालय नहीं थे गोपाल नारायण सिंह और केवल नारायण मेडिकल कॉलेज चलता था, तब भी मेडिकल कॉलेज में छात्राओं की संख्या ज़्यादा थी। और अब क्या है, उस समय हम लोग बाहर टीचर को नहीं रख पाते थे, हमारे पास खुद फ्लैट भी कमी थी। युद्ध स्तर पर फ्लैट का निर्माण हुआ। आज के तारीख में हमारे पास शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी जो भी हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ, 2000 पूरे फ्लैट होने की वजह से सभी लोग यहाँ रहते हैं। और बच्चे भी हमारे जो आसपास के गांव के हैं, जो आसानी से विश्वविद्यालय में आ सकते हैं, वही आते हैं। बाकी बाहर के जितने बच्चे हैं, 5000 बच्चे करीब करीब, सब के लिए छात्रावास उपलब्ध है। और कुछ छात्रावास जैसे हमारे नए जो डिपार्टमेंट खुले हैं, फैकल्टी खुले हैं, जैसे कि आपको रिहैबिलिटेशन साइंस या एलाइड हेल्थ साइंसेज या कुछ नर्सिंग में बच्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यह सब के लिए हम लोग और भी बहुत सारे 2-3 छात्रावास निर्माणाधीन है, जिसमें युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। और साथ साथ गांव के कुछ और लोगों ने भी अगल बगल कैंपस के छात्रावास का विकास कर लिया है, और उसमें छात्रावास भी नहीं रह छात्र ही नहीं, बहुत सारे कर्मचारी भी किराए पर कमरे लेके रहते हैं, जैसे नर्सिंग स्टाफ है, वार्ड बॉय हैं, वार्ड आया है, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। तो अगल बगल की अर्थव्यवस्था में एक एक, एक मतलब अनएक्सपेक्टेड उछाल आया है, और जमीन की भी कीमतें बढ़ रहे हैं और बहुत सारे भवन निर्माण का कार्य हो रहा है, और यह बहुत मतलब एक बदलाव है, यह सब विश्वविद्यालय की ही वजह से हो रहा है।
1: अच्छा, चलिए अब कोर्स पर आते हैं जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। आप रजिस्ट्रार साहब, आपसे 1-15 मिनट में तो बात हो नहीं सकती, तो हम वैसे बातों को शामिल करते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपके यूनिवर्सिटी में इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स आया है, उस कोर्स के बारे में थोड़ा हमें बताइए, लोगों को बताइए।
0: अब देखिए, बीएड जो शुरू होगा

0: बीएड बहुत ही रोजगार के दृष्टिकोण से स्पेशल होगा, रोजगार, क्योंकि आज हर स्कूल में ये टीचर स्पेशल, मतलब स्पेशली चैलेंज्ड बच्चों के लिए, या किसी तरह के जो आज मतलब पूर्ण रूप से स्वस्थ विकसित बच्चे नहीं हैं, उनको सिखाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए एक मतलब अति विशिष्ट, बहुत ही जटिल, मतलब यह कार्य है, बहुत ही कठिन कार्य है, उसके लिए कुशल प्रशिक्षित शिक्षक ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड जो निकलेंगे, इंटीग्रेटेड बीएड की मैं, वो बहुत बड़ा योगदान देंगे। यह एक मानवीय जरूरत तो है ही, साथ साथ समाज का यह वर्ग, यह कोना, जो कि जिसका कि रेड्रेसल करना बहुत आसान नहीं है, और वो उच्च शहरों में सब कुछ फैसिलिटी रहने के बावजूद भी उनको जाके वहाँ पर, क्योंकि इसमें एक लंबी प्रक्रिया होती है, थेरेपी होती है, उनको साल भर 2 साल कोई नियमित रूप से दिल्ली या बॉम्बे या बेंगलोर कितना जा पाएगा, इसलिए यह हम लोगों की कोशिश है, हम लोग की शुरुआत है, हम लोग की बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपर्टीज नहीं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है, हम टीचर लोग अपॉइंट कर रहे हैं, कल ही हमारे पास 2-3 एक्सपर्ट ज्वाइन किए, लगातार इंटरव्यू चल रहा है, और हम बाहर से कोशिश कर रहे हैं हम इसके लिए और एक्सपर्ट लाएं, और इसमें एक अपनी बिहार में एक अलग तरह के मतलब कार्य करें।
1: तो साथियों, अभी हमारे साथ बुनियाद कार्यक्रम में कुमार आलोक प्रताप थे, जानकारियां दे रहे थे, रजिस्ट्रार हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के। नंबर नोट करें, 9431899002, 9431899002, और 1800121051 ये नंबर है। टेक्निकल पढ़ाई कीजिए, राजेश चलते चलते यही कहेगा। आज के बुनियाद कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ चाहता है, अगली मुलाकात होगी सोमवार को, तब तक के लिए नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार। अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। श्रोताओं, हम कुछ ही पलों में लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग, तो बने रहें हमारे साथ।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम के शुरुआत में फिल्म ये जवानी है दीवानी के इस गाने को बेनी दयाल शेफाली अलवारिस की आवाज़ में, प्रीतम के संगीत है अमिताभ भट्टाचार्य के बोल। फिल्म का नाम है ये जवानी।

अभी आपने सुना फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे कि इस गाने को सोनू निगम और अरविंद सिंह और स्नेहा पंडित की आवाज़ में, शैलेश राशिद के बोल थे, साजिद वाजिद के संगीत। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग।

श्रोताओं, भी आपने सुना फिल्म शिकारी के इस गाने को उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ में, आनंदराज आनंद के संगीत, देव कोहली के बोल थे। आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:58 हो चुके हैं। हम कुछ ही पलों में लेकर हाजिर होंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से जुड़ेंगे संसद समीक्षा के लिए। बस कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर।

आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। अभी आपने सुना फिल्म कहीं ना प्यार हो जाए कि इस खूबसूरत से नगमे को अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ में। सुधाकर शर्मा के बोल थे और सुरेश लालवानी के संगीत। और आइए सुनते हैं फिल्म चोरी इतिहास के इस गाने को अलका याग्निक कुमार शानू की आवाज़ में। दिलीप सेन समीर सेन के संगीत हैं, समीर के बोल।

आप सुन रहे फिल्म संगीता कार्यक्रम चित्रपट से। अभी आपने सुना मोहम्मद इरफान, अरिजीत एवं समीम भट्ट की आवाज़ में फिल्म मर्डर 2 के इस गाने को। मिथुन के संगीत थे, शाहिद वर्दी के बोल थे। आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। और अब आइए सुनते उदित नारायण, साधना सरगम की आवाज़ में फिल्म मोहरा के इस खूबसूरत से नगमे को। आनंद बख्शी के बोल हैं, बिजू शाह के संगीत।

अभी आपने फिल्म मैं हूं ना के गाने किसको आपने सुना, अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक की आवाज़ में। जावेद अख्तर के बोलते हैं अनु मलिक के संगीत। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्र।

श्रोता, आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चितपट से, आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं 103 मेगाहर्ट्ज पे। अभी आपने सुना फिल्म लाल दुपट्टा मलमल के इस गाने को पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे आनंद मिलिंद के संगीत। इसी गाने के साथ आज का चितपट संगीत यहीं समाप्त होता है। रात्रि 8:45 पर हम जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में हिंदी समाचार के लिए। 9:00 अंग्रेजी में समाचार, 9:15 में उर्दू में समाचार और 9:30 पर हम सुनेंगे विविध भारती की प्रसारण सेवा आज के फनकार। रात्रि 10:00 हम लेकर हाजिर होंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा और 11:00 सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, 11:05 में अंग्रेजी में समाचार और अपनी सभा का समापन हम करेंगे रात्रि 11:00। तो आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में हिंदी समाचार के लिए।

0: लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। वहीं राज्यसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान कर विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंक कर बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जब मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते।
3: सुप्रीम कोर्ट ने जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था कम से कम बिल में हिस्सा तो ले, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है।
0: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की।
4: लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज FIR को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
5: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत FIR बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 13 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
0: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया।
6: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उधर बिहार में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन सुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया।
7: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सीट अपने नाम कर ली है। मतगणना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की समीक्षा करेगी। उन्होंने चुनाव में भीतरघात का भी आरोप लगाया और कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की भावना के साथ काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और भरोसे के पक्ष में मतदान किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांति गौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की नींव है। ओडिशा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से नैतिक, कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया।
8: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम उड़ीसा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि यह चरित्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की नींव है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से लड़कियों, आदिवासी छात्रों और समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित उड़ीसा के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
9: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
9: AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है। और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री सिनर्जी को सुदृढ़

0: सुदृढ़ करने में भी AFHQ एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज की भूमिका का निर्वाह करता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग तथा व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि व्यापार, निवेश, दवाइयों, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में बातचीत हुई है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगी और साझा समृद्धि में योगदान देगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। POJK से मिली रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
2: खुफिया ब्यूरो की एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनयिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबा।
1: उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही किसी बैठक की तैयारी है। ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ मध्यस्थों के जरिए बातचीत होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने इस दावे को गलत बताया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में 2D फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा विषय पर परिचर्चा के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद

0: इन्वेस्टर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: भारतीय रेलवे ने इस साल जुलाई के महीने में पिछले साल इसी महीने के मुकाबले में माल बर्दारी में 9% की नमो रिकॉर्ड की है। जुलाई 2026 के दौरान रेलवे ने 141.3 मिलियन टन की माल बर्दारी की, जो कि पिछले साल जुलाई में 129.7 मिलियन टन थी। ये कारकर्दगी मईशत के कलीदी शोबों में पायदार मुतालबे, नीज माल बर्दारी की लॉजिस्टिक और ऑपरेशन जाती कारकर्दगी को बेहतर बनाने की जारी कोशिशों की अक्कासी करती है। ईरान ने आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान की तर्दीद करते हुए कहा है कि अमरीका के साथ कोई बातचीत जारी नहीं है और किसी तरह की मुलाकातों का कोई मंसूबा नहीं है। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सालिसकारों के जरिए आज ईरान के साथ मुजाकरात का प्रोग्राम है। अपने सरकारी तैयारे एयरफोर्स वन पर सवार सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जनाब ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और ईरान के साथ सिफारती मसरूफियात की वजह से उन्होंने अपने असल मंसूबे को रोक दिया। इससे पहले जनाब ट्रंप ने इंतहाई शदीद हमले का इंतबाह दिया था। इस दौरान ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमरीका के साथ कोई बातचीत जारी नहीं है और किसी तरह की मुलाकातों का कोई मंसूबा नहीं है। बकाई ने मजीद कहा कि वजीर खारजा अब्बास अराकची को छोड़कर, जो मजहबी दौरे पर इराक गए हैं, के अलावा सभी ईरानी मुजाकरातकार फिलहाल मुल्क में ही मौजूद हैं। जनाब बकाई ने मजीद कहा कि फिलहाल सिर्फ ओमान के साथ आबनाए हुरमुस के इंतजाम से मुतालिक मुजाकरात जारी हैं। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आसाम, मेघालय, जेली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है और रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले दो दिन तक ऐसी ही सूरत हाल के कायम रहने की पेशगोई की गई है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले दो से तीन दिनों तक शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, साहिली कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, वस्ती महाराष्ट्र, उड़ीसा और जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक में जुमेरात तक शदीद बारिश होने का इम्कान है। आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, लक्षद्वीप, शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, विदर्भ और शिमाल मशरकी खित्ते में कल गरज चमक के साथ तेज हवाओं के चलने की भी पेशगोई की गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सूरतेहाल रात में अबतर हो गई, क्योंकि एहतजाजियों ने तितर बितर होने से इनकार कर दिया और सिक्योरिटी फोर्सेज ने एहतजाज करने वालों पर गोली चला दी। POJK से आने वाली रिपोर्टों के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने आधी रात में एहतजाजियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया, जिसमें रावलकोट में गोली चलने की खबर दी गई है। नौ उम्र भारतीय साइकिलिस्ट हर्षिता झाकड़ ने स्विट्जरलैंड के टूर डी फ्रांस फेम्स का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय खातून बनकर तारीख रकम की। 19 साल हर्षिता ने कल दूसरे मरहले के रस्मी आगाज के दौरान सब्र आजमा रेस में अफगानिस्तान, अल्जीरिया, चिली, एथियोपिया के दो साइकिलिस्ट, नामीबिया और युगांडा के खिलाड़ियों समेत 8 होनहार खिलाड़ियों में जगह बनाई। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने के बिल को मंजूरी दे दी है। बहुत छोटी छोटी और दरमियाना दर्जे की सनतों की तरक्की के तरमीमी बिल को राज्यसभा ने पास कर दिया है। असेंबली जिमनी इंतखाबात में जन स्वराज के लीडर प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर सीट पर जीत हासिल की है। BJP ने गुजरात के वडोदरा की मंजलपुर सीट पर अपनी जीत बरकरार रखी है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दातिया सीट पर फिर जीत हासिल की। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: की ताल पर आप हैं विविध भारती के संग। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है

0: वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प मोड शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। शकील दिल का हूँ तर्जुमा कि मोहब्बतों का हूँ राजदान, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। इस बेमिसाल शेर के शायर शकील बदायूनी के नाम है आज के फनकार कार्यक्रम।

किसी ने क्या खूब कहा है कि शायर की दास्तान उसकी पैदाइश से शुरू तो जरूर होती है पर उसकी मौत पर खत्म नहीं होती। उसके अशार वक्त और जमाने की हदों के पार जाकर

0: जिसे किया है।
1: शकील शायरी की दुनिया से फिल्मों में आए थे, यानी फिल्मों में आने से पहले वो शायरी के आसमान का एक चमकता हुआ सितारा बन चुके थे। वो मुशायरों की जान हुआ करते थे। उस दौर में तरक्की पसंद शायरी पूरे उफान पर थी। जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही थी। गरीबों और लाचारों को जगाने के लिए शायरी की जा रही थी। ऐसे तूफानी दौर में भी शकील बदायूनी उर्दू शायरी की गहरी रवायत को पकड़े रहे और मोहब्बतों के शायर बने रहे। वो मुशायरों को लगातार लूटते चले गए। गृहस्थी चलाने के लिए शकील बदायूनी ने दिल्ली राज्य सरकार के सप्लाई विभाग में नौकरी कर ली। सन 1942 से 1946 तक दिल्ली में नौकरी करते हुए उन्होंने खूब शायरी की और खूब नाम कमाया। बात सन 1946 की है। एक मुशायरे में शिरकत करने के लिए शकील बदायूनी को मुंबई आना पड़ा। वो पढ़ने लिखने का जमाना था। फिल्म निर्माता भी मुशायरे सुनने के लिए जाते थे। नामचीन निर्माता निर्देशक A.R. कारदार ने जब शकील बदायूनी को मुशायरे में सुना तो उस वक्त बन रही अपनी फिल्म दर्द के गाने लिखने का मौका दिया। बस फिर क्या था, मुनव्वर सुल्ताना, श्याम और सुरैया की अदायगी से सजी इस फिल्म के जरिए शुरू हुआ एक सुरीला अफसाना। जी हाँ, उमा देवी ने गाया, शकील बदायूनी का लिखा ये गाना।

0: सुनाए।
1: जी, शकील बदायूनी के शुरुआती हिट गानों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि शायरी की दुनिया से आने के बावजूद शकील ने फिल्मी गीतों के व्याकरण को अच्छी तरह से समझ लिया था। उनकी पहली फिल्म के गाने एक तरफ तो सरल और सीधे सादे हैं, तो दूसरी तरफ उनमें शायरी की ऊंचाई भी है। 1946 से सीधे छलांग लगाते हैं और आ पहुंचते हैं सन 1949 में। एक बार फिर A.R. कारदार की फिल्म जिसका नाम दुलारी, नौशाद की धुन और एक बार फिर शकील का इंतजार की कशिश से लबरेज नगमा। इस गाने को नौशाद ने राग पहाड़ी में क्या खूब बनाया है। इस गाने में नौशाद ने वाद्य यंत्रों के मामले में बड़ी कंजूसी दिखाई है और इस कंजूसी ने बनाया आला दर्जे का ये गाना सुहानी रात ढल चुकी।

यूं तो मजरूह और साहिर जैसे गीतकारों ने कमाल के भजन दिए हैं, इसी तरह शकील बदायूनी भजनों के मामले में एकदम अलग नजर आते हैं। भक्ति की पावन ऊंचाई पर पहुंचकर शकील ने जो कुछ लिखा उसे दुनिया आज तक गुनगुना रही है। बैजू बावरा फिल्म का वो ऐतिहासिक गीत जो शकील, नौशाद और मोहम्मद रफी का संगम है, लोग कहते हैं कि ये सांप्रदायिक सद्भाव की एक अनूठी मिसाल है। इस गाने के बोल हैं मन तरपत हरि दर्शन को आज।

दिलचस्प बात यह है कि शकील के रचना संसार में कुछ ठेठ शास्त्रीय संगीत पर आधारित रचनाएं भी हैं, जैसे मुगले आजम फिल्म का ये गीत जिसे गाया उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने।

आपको ये जानकर हैरत होगी कि शकील बदायूनी ऐसे एकमात्र गीतकार हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सुपर हिट होली गीत दिए हैं और तीनों की लोकप्रियता कमाल की। सन 1952 फिल्म

इन तीनों गानों को सुने तो जिस दिन सुने उस दिन मन की होली मन जाती है। आपको याद होगा साहिर लुधियानवी ने ताजमहल के बारे में लिखा था, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। दरअसल ये शकील बदायूनी के एक नायाब नगमे का बेमिसाल जवाब है। फिल्म लीडर के लिए शकील ने ताजमहल पर आधारित ये रचना लिखी थी।

शकील बदायूनी की अनगिनत गजलें हैं जिन्हें कई नामचीन कलाकारों ने गाया है। बेगम अख्तर की गजलों की दुनिया में शकील बदायूनी की शायरी चमकती हुई नजर आती है, जैसे ये गजल।

नौशाद के साथ शकील बदायूनी का सबसे ज्यादा काम है, लेकिन अगर सिर्फ नौशाद के साथ की बात की जाए तो शकील बदायूनी की ये दास्तान अधूरी रहेगी।

ये उस दौर के सिनेमाई गीत हैं जब नायक पियानो पर गाकर अपना दिल टूटने का ऐलान करता था। और इस फहरिस्त में एक से बढ़कर एक गाने शामिल रहे हैं जिनमें से कुछ शकील बदायूनी के हैं। गमजदा गाने लिखने में शकील का कोई जोड़ नहीं था। बहरहाल 20 साल बाद फिल्म का ये गाना सुना जाए, संगीत हेमंत कुमार का।

फिल्म साहब बीवी और गुलाम के एक गाने में तो जैसे शकील बदायूनी ने तिलिस्म रच दिया है। इस गाने की विकलता के कहने ही क्या हैं? बस मीना कुमारी का चेहरा आंखों के आगे तैरता है और गूंजती है ये आवाज।

शकील शायरी की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा है और उनकी शायरी हमारे दिलों में उतरती है। और एक शेर मुलाहिजा फरमाइए कि मेरा अज्म इतना बुलंद है कि मुझे पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है, कहीं ये चमन को जला ना दे। शकील की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि वो फिल्मों में भी सक्रिय रहे और शायरी की दुनिया में भी सक्रिय रहे, यानी उन्होंने एक साथ दो नावों की सवारी की और दोनों में कामयाब रहे।

20 अप्रैल 1970 को शायरी की दुनिया का ये बेमिसाल सितारा बुझ गया। शकील ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह

लेकिन शकील बदायूनी के जाने के बाद भी शकील की ये दास्तान जारी है। जब जब हम उनके गाने सुनते हैं, हमें उनकी याद आती है, उनकी शायरी हमारी आंखों के आगे तैरती है और हम उन्हें सलाम करते हैं इस गाने के जरिए।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने शायर और गीतकार शकील बदायूनी को। शोध आलेख स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, 103 मेगाहर्ट्ज पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंध।

0: रुक।
1: श्रोता, आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी आपने सुना फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस के इस गाने को लता मंगेशकर, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शंकर जयकिशन के बोल संगीत और शैलेंद्र के बोल।

जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, ओ जानते हो।

0: कोई पा गया
1: सासों में।

0: जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, ओ जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम।
1: मोहब्बत की कसम,
0: मोहब्बत की कसम।

0: किसी ने देखा एक बार, हंस के किसी ने देखा एक बार है, दिल की मुरादें कोई पा गया।
1: सांसों में मीठी आ,

0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम,
0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम,
0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम।

श्रोताओं, भी आपने सुना फिल्म ब्रह्मचारी के इस गाने को सुमन कल्याणपुरी, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शंकर जयकिशन के बोल, शैलेंद्र के संगीत। आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा FM 103 में।

और अब आइए सुनते हैं फिल्म तुमसा नहीं देखा के इस गाने को। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले की आवाज़ में और ओपी नैयर के संगीत है मजरूर सुल्तानपुरी के बोल। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पे।

अभी आपने देखा, तुमसा नहीं देखा कि इस गाने को सुना। आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, ओपी नैयर के संगीत, मजरू सुल्तानपुरी के बोल। और अब आइए सुनते हैं आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शंकर जय किशन के संगीत और शैलेंद्र के बोल में फिल्म लाट साहब के इस गाने को।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा, और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम ही समाप्त होता है। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, और 11:05 में अंग्रेजी में समाचार कुछ ही पलों में।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बाकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत में विभिन्न देशों के 8 खिलाड़ियों के समूह का नेतृत्व किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Lok Sabha today passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. The Lok Sabha was adjourned several times today amid protests by opposition parties over several issues. Earlier, when the House began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated the athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protest. Mr. Birla expressed concern over the deliberate disruptions by some opposition members. Minister of Statistics and Programme Implementation Rao Inderjeet Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Bankers Books Evidence Bill 2026. The Rajya Sabha today passed the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill amid ruckus. The bill aims to further amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. It aims to address payment delays and simplify dispute resolution. In assembly by-elections, Jan Suraj leader Prashant Kishore has won the Bankipur seat in Bihar, while BJP has retained Manjalpur in Gujarat and Congress has kept Dhatia constituency in Madhya Pradesh. Prashant Kishore defeated BJP candidate Neeraj Kumar by a margin of 19,324 votes, securing 64,151 votes. RJD candidate Rekha Kumari finished third with 14,273 votes and forfeited her security deposit. In Gujarat, BJP candidate Satish Patel defeated his nearest rival Bhikhabhai Rabdi of Congress with a margin of over 30,000 votes. Congress has kept the Dhatia seat in Madhya Pradesh, with the party candidate Ghanshyam Singh defeating his nearest rival Ashutosh Tiwari of the BJP by over 6,000 votes in bipoll. Voting for the bipolls to the three constituencies was held on the 30th of last month. Bharatiya Janata Party National President Nitin Naveen has said that the party accepts the mandate received in today's three assembly by elections. In a social media post, he expressed gratitude to the people of Manjalpur Assembly constituency in Gujarat for expressing their faith in the BJP. He extended congratulations to all the dedicated workers and office bearers of the BJP for this victory. Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar expanded his cabinet today. Governor Thavarchand Gehlot administered the oath of office to 19 new ministers at a simple ceremony at Lok Bhavan in Bengaluru. D.K. Shivakumar assumed office as Chief Minister on June 3rd along with 13 other ministers. His cabinet size has now reached 33. The only woman legislator announced by All India Congress Committee, Gayatri Shanti Gowda, was not sworn in today, and another legislator, Mankala Vaidya, was replaced by S.S. Mallikarjuna at the last moment. Former Chief Minister Siddaramaiah was conspicuous with his absence at the swearing-in ceremony. The Tamil Nadu government has approached the Supreme Court seeking directions to the Karnataka government for immediate release of the share of Kaveri water to Tamil Nadu. Tamil Nadu government alleges that the quantum allocated to it by the Kaveri Water Regulation Committee as well as that released by its neighbour Karnataka was far less. A committee meeting held on 28th of last month directed Karnataka to release 3,500 cusecs for 15 days starting 29th of July, an order which was upheld by the Kaveri Management Water Management Authority later. Union Home Minister Amit Shah has said that Indian athletes have scripted joyous history by making India the fourth highest medal winning nation at the Glasgow Commonwealth Games 2026. In a social media post, Mr. Shah said that this meteoric success scales to an even greater height as India now officially takes over the proud host nation of Commonwealth 2030 to be held in Ahmedabad. The minister congratulated every athlete and all citizens on this moment of double delight. And that is the end of this news bulletin.
3: श्रोताओं, अभी आप आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे आपकी सेवा में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।